0: वंदे मातरम।
1: वंदे मातरम सुजलां सुफलां मलयजशीतलां शस्यशां।

एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के वैशाख माह की 18वीं तिथि तदनुसार 8 मई सन 2026 दिन के 11:58 हुए हैं। हमारी पहली प्रसारण सभा आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है और आप सुन रहे हैं हमारा प्रसारण एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 12 बजे हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

अभी आप सुन रहे थे अवतार तारिको, फिल्म का नाम था आजा नचले। अगला गीत आइए सुनते हैं उदित नारायण की आवाज में, फिल्म का नाम है और प्यार हो गया।

बाहों में हम जो मिले तो गाए सारी कोयले, महके सारा ये समा हवाएं महकी सी चले, तेरी खुशबू से भर जाए

0: अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम और कुणाल गांजावाला को। फिल्म का नाम था चुप चुप के।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे?
2: सो इजी।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: बदलो बदलो, आदत बदलो।
6: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
5: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और उदित नारायण को। फिल्म का नाम था दिल तो पागल है। इस गीत के साथ ही हमारा फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है, FM बैंड 101.8 MHz पर। दोपहर के 12:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
1: CIET प्रस्तुत करता है
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: सभी श्रोताओं को मेरा यानी विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम राजकोट से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
3: लिखते हैं, खुशी दुनिया में उपलब्ध सब दवाओं में सर्वोत्तम दवा है, इसलिए खुश रहो और खुशियां बांटो।
1: बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना भावना बिंदु गोलू और कुसुमबाई नागनपुरे।
3: अयोध्या धाम से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राज बाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनू शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा।
1: और पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू,
3: सिटी गोनियाना मंडी से गुरप्रीत सिंह जस्सल
1: और गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी।
3: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
1: अरे फिर से आप सबका स्वागत है ये भी जानिए श्रृंखला में। श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं समुद्र की,
3: इसके रहस्यों की और मानवता को दिए जाने वाले इसके अमूल्य योगदान की। आइए सबसे पहले जानते हैं कि भारतीय शास्त्रों में इसे किन किन नामों से पुकारा गया है। इन नामों से भी समुद्र की विशेषताओं का पता चलता है। अजीत जी, अब आपकी बारी है।
1: जी विमलेश जी, तो साथियों, समुद्र का सबसे प्रचलित नाम है सागर
3: जी,
1: लेकिन इसे जलधि भी कहा जाता है, यानी जल को धारण करने वाला। अब आपकी बारी।
3: दूसरा प्रचलित नाम है रत्नाकर, यानी बहुमूल्य रत्नों का भंडार। विष्णु पुराण और भागवत पुराण में समुद्र मंथन का उल्लेख है। इस प्रक्रिया में बहुत से अलग अलग प्रवृत्ति वाले रत्न निकले थे।
1: श्रोताओं, समुद्र को अर्णव भी कहा गया है, यानी विशाल और गर्जन करने वाला। इसे सिंधु भी कहते हैं, यानी जल का विशाल बहता भंडार। तो श्रोताओं, ये हैं समुद्र के विभिन्न नाम जो हम अपने शास्त्रों में पाते हैं। आज हम विशेषकर बात करेंगे समुद्र की गहराई और इसके एक खास रहस्य के बारे में।
3: वैसे तो समुद्र अपनी गहराई के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज हम जानेंगे कि दुनिया का सबसे गहरा समुद्र स्थल कहाँ है। जी जी जी, चर्चा को आगे बढ़ाएं।
1: जी श्रोताओ, मरियाना ट्रेंच दुनिया का सबसे गहरा समुद्री क्षेत्र है जो फिलीपींस के पास प्रशांत महासागर में है, और सबसे गहरे स्थान का नाम है चैलेंजर डीप।
3: यहाँ समुद्र 10,984 मीटर से भी अधिक गहरा है, यानी करीब 11 किलोमीटर गहरा।
1: विमलेश जी, इस तथ्य को और रोचक बनाते हैं एक प्रश्न।

0: क्या चैलेंजर डीप की गहराई माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से अधिक है?
1: जी बिल्कुल, इस बात को एक तुलना से समझते हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊपर है, जबकि समुद्र तल से नीचे चैलेंजर डीप की गहराई 10,984 मीटर है, यानी अंतर करीब 2 किलोमीटर का है।
0: 2 किलोमीटर का अंतर, अद्भुत सच में। यानी यदि माउंट एवरेस्ट को मारियाना ट्रेंच के चैलेंजर डीप में डाल दिया जाए तो यह पूरी तरह से डूब जाएगा
1: जी,
0: और ऊपर 2 किलोमीटर गहराई का पानी बचा रहेगा
1: जी।
0: अच्छा चलिए, वार्ता को कुछ और रोचक बनाते हैं। अभी हमने बात की माउंट एवरेस्ट की, सुना है कि समुद्र के अंदर भी पर्वत होते हैं।
1: जी बिल्कुल सही सुना है आपने। समुद्र के अंदर हमारी भूमि से अधिक पर्वत श्रृंखलाएं हैं, वहाँ बड़े बड़े ज्वालामुखी भी होते हैं। श्रोताओं को एक और रोचक बात बताऊं, समुद्र में भी एक ऐसा पर्वत है जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से भी अधिक मानी जाती है। नाम है माउना केया।
0: जी श्रोताओ, है ना रोचक बात। यदि पूरी पृथ्वी की बात करें तो इसमें समुद्र भी शामिल है
1: जी।
0: तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, ये यानी माउना केया
1: जी।
0: और ये पर्वत प्रशांत महासागर में स्थित है
1: जी।
0: समुद्र के ऊपर दिखाई देने वाली ऊंचाई लगभग 4,000 मीटर है, लेकिन बाकी हिस्सा समुद्र के अंदर है। माउना केया की ऊंचाई आधार से लगभग 10,200 मीटर है, यानी जबकि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर है।
1: ये एक ज्वालामुखी द्वारा निर्मित पर्वत है जो लाखों वर्षों में लावा जमा होते रहने से धीरे धीरे बना और परत दर परत जमा होकर इतना विशाल हो गया। आज ये एक आकर्षक पर्यटन स्थल और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए जाना जाता है।
0: तो विमलेश जी, अब समाप्त करने से पहले श्रोताओं को समुद्र के बारे में कुछ और रोचक जानकारी दे दें
1: जी।
0: तो सबसे पहली जानकारी है, पूर्ण विकसित ब्लू व्हेल समुद्र का सबसे बड़ा जीव है। और मालूम है इसका दिल एक सामान्य कार के आकार से भी बड़ा होता है
1: जी। समुद्र की गहराई के 3 भाग हैं, सतही क्षेत्र, ये वो भाग है जहां अधिकतर जीव पाए जाते हैं, यहां सूर्य का प्रकाश पहुंच पाता है।
0: और दूसरा क्षेत्र है मध्य क्षेत्र, यहां समुद्र का प्रकाश बहुत कम पहुंचता है, इसलिए कई ऐसे जीव यहां पाए जाते हैं जो खुद चमकते हैं।
1: और तीसरा क्षेत्र है बहुत ही गहरा क्षेत्र, यहां पूरी तरह से अंधेरा रहता है और जल का दबाव लाखों टन से भी अधिक होता है। सामान्य स्थिति में हम वहां कुचल जाएंगे, लेकिन फिर भी इस क्षेत्र में बहुत से जीव पाए जाते हैं। ये प्रकृति का चमत्कार नहीं तो और क्या है।
0: सच में ये प्रकृति का अद्भुत चमत्कार है। तो श्रोताओं, अब करते हैं समाप्त आज की चर्चा और अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम बताइए।
0: 8800440559 यानी हमारे IBRS नंबर पर और audio@cit.nic.in पर आप अपना संदेश भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो करना मत भूलिएगा।
0: और अब सुनते हैं आज का विशेष शैक्षिक कार्यक्रम, शीर्षक है रविंद्रनाथ टैगोर।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा कविवर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन, उनकी साहित्यिक रचनाओं और कविताओं के बारे में जानकारी दी गई है। उनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को भी शामिल किया गया है और बताया गया है कि उनका व्यक्तित्व कितना बहुआयामी और विलक्षण था। रविंद्र संगीत के बारे में भी इसमें चर्चा की गई है।
0: विश्व शिक्षक रविंद्रनाथ टैगोर।
2: যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো,
3: একলা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কে ইস গীত মে হে নিরন্তর আগে বড়নে কি প্রেরণা, চাহে কোই সাথ দে ইয়া না দে, আজ ভি রবীন্দ্র সঙ্গীত মে वही ऊर्जा, वही शक्ति और वही प्रेरणा है। रविंद्र संगीत हमारे दिलो दिमाग पर छा गया है, हमारी संस्कृति में रच बस गया है। बंगाल की माटी के कवि रविंद्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि काव्य कृति को 10 दिसंबर सन 1913 में एशिया में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये संसार का सर्वोत्कृष्ट और दुर्लभ पुरस्कार है।
4: इस अवसर पर स्वीडिश अकादमी की नोबेल कमेटी के चेयरमैन हेरल्ड हर्जन ने कहा था, भारतीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने

श्रेष्ठ आध्यात्मिक कविताओं की रचना की है। गीतांजलि ने बहुत से आलोचकों का ध्यान अपनी तरफ मोड़ा है और अब ये अंग्रेजी साहित्य में ही नहीं, अमेरिका और समस्त पश्चिमी दुनिया के साहित्य में भी उपलब्ध होगी। इसकी विशेषताएं हैं, कवि के विचारों में संपूर्णता, कविताओं में लयात्मक संतुलन, शब्दों का चयन, और किसी अन्य भाषा में इसका अनुवाद करना मुश्किल होगा।

0: गीतांजलि के गीतों में भारत के प्रति अगाध प्रेम और श्रद्धा है।
1: হেমূর্চিত্তু পুণ্যতীর্থ জাগরে ধীরে এই ভারতের মহামানবীর সাগর তীরে।
2: इस गीत में कवि ऐसी भारत की कामना करता है जहां हमारा मन निर्भय और मस्तक ऊंचा हो।
0: वे मनुष्य के कर्म को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। भजन कीर्तन कंठीमाला सब बेकार। किसे पूछते हो अंधियारे मंदिर में तुम बंद किए सब द्वार। कृषक जहां खेती करते हैं ईश वहां है।
2: गीतांजलि में प्रतीक्षा का भाव अनेक रचनाओं में है, चाहे वो ईश्वर की हो या ऋतुओं की। इसमें कुछ गीत भावात्मक हैं, कुछ सोनेट शैली में लिखे गए हैं। सोनेट 14 पंक्तियों के प्रगीतों को कहते हैं जो मुक्त छंद में लिखे होते हैं। कवि रविंद्रनाथ ने इन्हीं दिनों हमारे देश का राष्ट्रगान जन गण मन लिखा और स्वयं उसे गाया भी।
3: जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध हिमाचल जमुना गंगा उत्थल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे।
2: बंगाल ही नहीं, उनके गीत देश विदेश गांव शहर हर जगह गाए और सराहे जाते हैं। भारत के सुप्रसिद्ध जाने माने साहित्यकार रविंद्रनाथ ठाकुर एक सशक्त गीतकार और संगीतकार ही नहीं, साहित्य की अनेक विधाओं में उन्हें महारत हासिल है। वे एक सुविख्यात कवि, नाटककार, उपन्यासकार, कथाकार, गद्यकार, निबंधकार, व्याख्याता, कुशल गायक, चित्रकार और नाट्य अभिनेता होने के साथ साथ विश्व के एक महान शिक्षक हैं।
0: देश ने मनाई रविंद्रनाथ ठाकुर की 150वीं जयंती। इस अवसर पर तेलुगु के प्रसिद्ध कवि समालोचक एन गोपी ने ठाकुर बाड़ी कविता लिखी। प्रस्तुत अंश उसी कविता का है। जोड़ा सांकों की एक पतली गली में है ठाकुर बाड़ी। उस गली ने खोल दिए हैं विशाल विश्व के प्रवेश द्वार। द्वार छोटे भले ही क्यों ना हो पर विहरण है दिगंतों तक। सात मई सन 1861 को इसी ठाकुरबाड़ी में पिता देवेंद्रनाथ की 14वीं संतान रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म हुआ। ये जगह

0: कलकत्ता में है। कलकत्ता जो अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के राज में इसे बनाया गया था। बचपन में रविंद्रनाथ ने बहुत से स्कूल बदले। स्कूल के बंधन उन्हें कारागार जैसे लगते। घर पर ही उन्होंने बांग्ला, संस्कृत, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, संगीत, चित्रकला आदि विषयों का अध्ययन किया। मगर घर में नौकरों का शासन भी था, जिसे रवि ने सेवकशाही तंत्र का नाम दिया। ये नौकर बच्चों को रामायण महाभारत की कथाएं सुनाते, उन्हें घेरे रहते और दंड भी देते।
1: रविंद्रनाथ ने लगभग 7-8 वर्ष की उम्र से लिखना शुरू किया। उन्हें नए शब्दों को गढ़ने में बहुत आनंद मिलने लगा और फिर नीले कागजों की बही पर गढ़ी जाने लगी कविता। उनकी प्रारंभिक रचनाओं में बनफूल तथा कवि काहिनी विशेष महत्वपूर्ण है।

0: और फिर वो दिन भी आया जब पिता 12 वर्ष के रविंद्रनाथ को अपने साथ हिमालय यात्रा पर ले गए। प्रकृति के प्रति लगाव को देखते हुए पिता ने उन्हें वहां घूमने और अपने विचारों को व्यक्त करने की आजादी दी। यहीं रविंद्र ने प्रकृति को जाना पहचाना और उसे महसूस किया।
1: कविंद्र रविंद्र को नदी का कवि भी कहा जाता है।
0: यही प्रकृति आगे चलकर उनके काव्य सृजन का सशक्त आधार बनी। 12 वर्ष की उम्र में ही रविंद्रनाथ ठाकुर की पहली कविता अभिलाष सन 1874 में तत्व बोधिनी पत्रिका के नवंबर दिसंबर अंक में छपी। फिर दूसरी रचना भारत उस समय की अमृत बाजार पत्रिका में प्रकाशित हुई। उनका मन संगीत में रचा बसा था। उन्होंने भक्ति, प्रकृति, देश प्रेम, ऋतुओं, उत्सवों सभी के गीत गाए। उन्होंने बंगला में गीतों की स्वरलिपि साधने में कठिन साधना की थी। सांध्य संगीत और प्रभात संगीत संग्रह उनके गीतों के दो महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं। प्रभात संगीत संग्रह की एक चर्चित कविता है निर्झरेर स्वप्न भंग, जिसमें सूर्य किरण के स्वागत में झरना फूट पड़ता है, जो जिंदगी के उल्लास और आनंद का प्रतीक है।
1: बच्चों के लिए रविंद्रनाथ की पहली कविता है बृष्टि पड़े टापुर टुपुर। इसकी धुन लोकगीत जैसी है।
2: बृष्टि पड़े टापुर टुपुर आए दिए सुनर नुपुर।
1: शिशु भोलानाथ आदि काव्य संग्रहों में रविंद्रनाथ द्वारा रचित बाल कविताएं हैं। बच्चों के लिए लिखी एक कविता दोपहर बड़ी मार्मिक है। इसका अनुवाद सिने जगत के प्रसिद्ध गीतकार गुलजार ने किया। ओ मां, अब मेरी छुट्टी करो ना। सुबह से पढ़ रहा हूं मैं, तुम्हारे कमरे में जाकर मैं पढ़ना खेलूंगा। अभी दोपहर है बस, कह दिया तुमने। उन्होंने बच्चों के लिए नाटक और कथाएं भी लिखी।
0: सन 1877 के आसपास इन्होंने लघु कथा कहानी की एक नई विधा को जन्म दिया। इस समय की कहानियां गल्पगुच्छ के नाम से प्रसिद्ध थी। उनकी पहली कहानी है भिखारिणी, जो रविंद्रनाथ ठाकुर की साधना पत्रिका में प्रकाशित हुई।

इनमें उन दिनों के अनुभवों पर आधारित कहानियां हैं, जब रविंद्रनाथ ठाकुर जमींदारी की देखभाल के लिए शजादपुर सियालदेह गांव का दौरा कर रहे थे।

0: यही वे नदी के किनारे नौकाओं पर रहते और लोगों की समस्याएं सुनते। इनसे मिलने के लिए किसानों, मल्लाहों, केवटों, चरवाहों, कुम्हारों, यात्रियों, गायकों, बालकों, शिक्षकों, सभी का मेला लगा रहता। वे अपने स्नेह युक्त हृदय और उदारता के कारण बाबू मोशाय बन गए और इन्हीं में रविंद्रनाथ को मिलते गए अपनी कथाओं के पात्र भी।
1: जुलाई 1905, अंग्रेजी शासन ने भाषा और संस्कृति की दृष्टि से हिंदुओं और मुस्लिमों में भेद उत्पन्न करने के लिए बंग विभाजन किया। बंगीय जनता में तिलमिलाहट पनपी। रविंद्रनाथ ठाकुर ने इस अवसर पर अपने मातृभूमि से प्रेम और सांप्रदायिक एकता बनाए रखने के लिए बंगाल के लोगों का अपने गीतों द्वारा आह्वान किया।
2: আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি, চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।
3: আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি, চিরদিন তোমার।
1: এ বাঙাল, তোমারে আকাশ ওর বায়ু নে মেরে প্রাণ মে প্রবেশ কিয়া।

0: और फिर दिल दहलाने वाली नरसंहार की घटना घटी। अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग वाली त्रासद घटना के विरोध में उन्होंने नाइटहुड उपाधि लौटाई। इस संबंध में 30 मई 1919 को उन्होंने वॉइसरॉय को पत्र लिखा।
1: अपने देश के लिए मैं इतना तो अवश्य कर सकता हूँ, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो, कि मैं अपने करोड़ों देशवासियों के विरोध को वाणी दे सकूं। समय आ गया है, अब ये उपाधियों के तमगे हमारे अपमान के संदर्भ में लज्जास्पद लगते हैं।
0: रविंद्रनाथ ने नाट्य रचना के गुण विरासत में पाए। उन्होंने अपने नाटकों में बांग्ला यात्रा के लोक तत्वों और संस्कृत नाट्य परंपरा के तत्वों का सामंजस्य किया। इससे उस समय के रंगमंच को एक नया स्वरूप मिला। नाट्य से रविंद्रनाथ ने गीति नाट्यों की ओर रुख किया। उन्होंने संगीत को काव्य और नाटक का महत्वपूर्ण साधन माना है। रविंद्रनाथ ठाकुर एक शिक्षक हैं। वे जीवन और शिक्षा में सामंजस्य स्थापित करना चाहते थे। वे शिक्षा नीति अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़े रखना चाहते थे। साहित्य, संगीत एवं अन्य कलाओं को शिक्षा में स्थान दिलाने का श्रेय रविंद्रनाथ ठाकुर को जाता है। उनका मानना था कि बच्चा अपने परिवेश और पर्यावरण से जुड़कर बेहतर सीख सकता है और समझ सकता है।
2: आमादेर शांति निकेतन, यानी हमारा शांति निकेतन।
3: आमादेर शांति निकेतन, आमादेर
2: शांति। सन 1901 में शांति निकेतन आरंभ हुआ, जिसमें रविंद्रनाथ ने शिक्षा

0: रीतियों, पाठ्य पुस्तकों और पाठों से अधिक महत्वपूर्ण है।
1: शिक्षार हेरफेर निबंध में सशक्त निबंधकार रविंद्रनाथ ने मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने पर जोर दिया। सामान्य स्कूलों की तुलना उन्होंने कारखानों से की है। भारतीय औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था पर रविंद्रनाथ ने एक मार्मिक नीति कथा लिखी, तोते का प्रशिक्षण, जो पाठ्य पुस्तकों को बच्चों में जबरन ठूसने पर एक करारा व्यंग्य है। इस कहानी में तोते को ऐसी भयानक कष्टपूर्ण शिक्षा दी जाती है कि तोता मर जाता है। शांति निकेतन में बच्चों को पेड़ों के नीचे शिक्षा दी जाती थी और आज भी यही पद्धति जारी है। यहां बच्चों के बहुमुखी विकास के लिए अलग अलग प्रयोगशालाएं हैं, जहां सीखने की आजादी है। अब ये विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। रविंद्रनाथ ने कहा था,
0: विश्व से एकात्म होने का अर्थ अपनी पहचान खो देना नहीं है, बल्कि सीखने सिखाने के लिए एक सौहार्दपूर्ण वातावरण पैदा करना है।
2: उनका मानना था इस विश्व भारती में सभी देशों के शिक्षा संस्कृति के प्रतिनिधि शामिल हों, जिससे सारा संसार एक घोंसला बन जाए। और ऐसा हुआ भी। उनके प्रयासों से ही देश विदेश के विद्वानों को इस विश्व भारती में आमंत्रित किया जा सका।
1: वे स्त्रियों की शिक्षा के हिमायती थे। उस जमाने में भी उनकी कहानी, उपन्यासों के स्त्री पात्र, कविता लेखन और स्वतंत्र चिंतन के प्रतिरूप हैं। स्त्री शिक्षा निबंध में उन्होंने लिखा था,
0: विद्या यदि मनुष्यत्व प्राप्त करने का उपाय है और विद्या प्राप्त करना यदि मानव मात्र का जन्मजात अधिकार है, तो उसे इस अधिकार से वंचित न किया जाए। जो कुछ भी जानने लायक है वही विद्या है। पुरुष को भी जानना होगा, स्त्री को भी जानना होगा।
2: रविंद्रनाथ ठाकुर ने अनेक विधाओं में लिखा, पर स्वयं को मूलतः कवि ही माना। आमी कवि, मैं एक कवि हूं, उन्होंने अपने 70वें जन्मदिन पर लिखा।
0: मैंने एक तपोवन का संधान करना चाहा था, शहर के भयावह घरों में नहीं, आकाश के खुले वितान के नीचे सुबह से शाम तक मैं इन लड़के लड़कियों के खेल का साथी बनना चाहता था। यही मेरा सच्चा कार्य रहा है। मेरी जगह वही है, धरती की गोद, इन पेड़ों, इन जंगलों में, इस धूल, इस तृण दल में मैंने अपना जीवन उंडेला है। जो धरती की आत्मा के निकट है, जो उससे ही बने, उसी में ढले हैं, जो अपना अंतिम विराम उसी में पाएंगे, मैं उन सब का मित्र हूं, मैं कवि हूं।
1: स्पेनिश, जर्मन, अंग्रेजी और विभिन्न विदेशी भाषाओं में रविंद्रनाथ की कृतियों का अनुवाद किया गया है। उनकी कविताओं की अंग्रेजी में अनुदित कृतियां हैं, गार्डनर, फ्रूट गैदरिंग, द फ्यूजिटिव क्रेसेंट मून, न केवल भारत में अपितु जर्मनी, अमेरिका, इटली आदि अनेक देशों के पाठ्यक्रम में रविंद्र साहित्य शामिल किया गया है।

रेगिस्तानों में कोई साथ छोड़े तो भी क्या है, कांटों के पांव में चुभने से होता क्या है, रक्त सने पथ पर बढ़ लेना अकेले, तूफानी रातों में दीपक लेकर कोई खड़ा नहीं तो भी तुम चलो अकेले, तड़ित ज्योति पीड़ा की बनने दो एकाकी मन में, चलते चलो अकेले, चलते चलो अकेले।

0: तो श्रोताओ, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यही समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग।
1: यह आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 1 बजे हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी के जयपुर से हम रिले करेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
3: हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। दिन की 1 बजे हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
4: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 के तहत हैदराबाद में आज चौथी इन्वेस्टर मीट आयोजित की जा रही है। राज्य में कृषि, बागवानी और एग्री बिजनेस के क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए ये मीट रखी गई है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का इसमें भाग लेने का कार्यक्रम है। 23 मई से जयपुर में होने वाली ग्राम 2026 के लिए दिल्ली, बेंगलुरु और अहमदाबाद के बाद ये चौथी प्रमुख इन्वेस्टर मीट है। इसमें राजस्थान को एग्री हब बनाने और खेती के लिए नई तकनीक लाने सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को जयपुर सहित प्रदेश के अस्पतालों में पर्याप्त अग्निशमन सुरक्षा के बारे में रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। कार्यवाहक सीजी संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस विपिन गुप्ता की खंडपीठ ने स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिए। अदालत ने कहा है कि अगर किसी अस्पताल में समुचित अग्निशमन प्रणाली नहीं पाई जाती है तो संबंधित CMHO की ओर से तय टाइमलाइन के साथ उस अस्पताल को नोटिस जारी किया जाए। अदालत ने कहा कि प्रदेश के हर अस्पताल में नियमित रूप से फायर ड्रिल आयोजित की जानी चाहिए। रेल मंत्रालय ने कहा है कि रेलगाड़ियों को उन्नत यात्री आरक्षण प्रणाली में बदलने की प्रक्रिया इस साल अगस्त महीने में शुरू हो जाएगी। नई दिल्ली में कल एक समीक्षा बैठक में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 40 साल पुरानी यात्री आरक्षण प्रणाली को नई प्रणाली में बदलने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस दौरान यात्रियों को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। भारतीय रेलवे ने वर्ष 2002 में इंटरनेट आधारित टिकट सेवा शुरू होने के बाद से लगातार डिजिटल परिवर्तन को अपनाया है। इसके तहत पिछले साल जुलाई में रेल वन मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था। रेल वन ऐप में अब AI आधारित कंफर्मेशन की संभावना की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। ये नई सुविधा इस साल की शुरुआत से ही लागू की गई है। इसे लोगों ने काफी पसंद किया है। इस पर वेटिंग टिकट के कंफर्म होने के अनुमान की सटीकता पहले के 53% से बढ़कर अब 94% तक हो गई है। इंडिया AI और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तेजी से अपनाने के लिए एक समझौता किया है। नई दिल्ली में इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि ये साझेदारी AI के जिम्मेदार और व्यापक प्रयोग के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा बेहतर बनाने के लिए की गई है। मंत्रालय ने कहा कि इस सहयोग के तहत दोनों संस्थान AI समाधान के लिए अपनी क्षमताओं के साथ साथ परिषद की चिकित्सा अनुसंधान विशेषज्ञता का लाभ लेंगे। केंद्र सरकार ने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के एक वीडियो को फर्जी बताया है। इस वीडियो में उन्हें ये कहते हुए दिखाया गया है कि भारत ने पाकिस्तान के साथ संघर्ष में 4 राफेल विमान खो दिए। पत्र सूचना कार्यालय की

0: फैक्ट चेक यूनिट ने स्पष्ट किया है कि ये वीडियो एआई से बनाया गया एक डीप फेक है और इसे पाकिस्तान समर्थित सोशल मीडिया अकाउंट की ओर से गलत सूचना फैलाने के लिए प्रसारित किया जा रहा है। सरकार ने नागरिकों से इस तरह की सामग्री पर विश्वास नहीं करने और हमेशा सरकारी स्रोतों से इसकी पुष्टि करने का आग्रह किया है। इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत कल लगाई जाएगी। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से सभी अदालतों, उपभोक्ता मंचों और राजस्व न्यायालयों में लोक अदालत लगेगी। इनमें आपसी सहमति से ट्रैफिक चालान, मोटरयान दुर्घटना, चेक बाउंस, बैंक ऋण और घरेलू विवादों सहित अन्य राजीनामा योग्य मामलों का निपटारा किया जाएगा। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले जागरूकता कार्यक्रमों की शुरुआत हो गई है। इसके लिए प्रदेश में भी योग शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में कोटपुतली बहरोड जिले के पावटा के उच्च माध्यमिक विद्यालय में योग शिविर रखा गया। इसमें विद्यार्थियों को विभिन्न आसनों का अभ्यास करवाया गया, साथ ही उन्हें दिनचर्या में नियमित रूप से योग को शामिल करने के लिए प्रेरित किया गया। आज विश्व रेड क्रॉस दिवस है। इस साल की थीम मानवता में एकता रखी गई है। रेड क्रॉस एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो युद्ध और हर आपदा के समय लोगों की मदद के लिए तैयार रहती है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 1:05 हुए हैं। अब आप सुनेंगे महिलाओं का मनपसंद कार्यक्रम मूमल।

0: मुमल सुनने वाली सभी सखियों को आपकी रेडियो सखी शीतल
1: और आरती का प्यार भरा नमस्कार। इंसान घर बदलता है, लिबास बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी परेशान क्यों रहता है? क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता। मिर्जा गालिब ने कहा है, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। तो हर व्यक्ति को अपने आप में चेंजेस लाने पड़ते हैं, समय के साथ अपने आप को बदलना पड़ता है। और अगर हम एक ही तरीके के यानी कि रिगिड बने रहते हैं तो हमारा जीवन जो है वो अच्छे से नहीं चल पाता। तो चलने का नाम ही जिंदगी है, कहते ही हैं कि रुकना जो है वो मौत है। इसलिए अपने आप को समय के अनुसार बदलना और सबके साथ अपने आप को एडजस्ट जो कर लेते हैं वो ही लोग जो है जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो कई बार कई तरीके के संकट भी हमारे सामने आते हैं। तो उन संकटों से हमें अपने आप को किस तरीके से बाहर निकालना है, किस तरीके से उस संकट से अपने साथियों को, अपने दोस्तों को, अगर वो है उस संकट में तो किस तरीके से बाहर निकालना है, ये भी हमें आना चाहिए। और संकट तो देखिए कैसे भी हो सकते हैं, कई बार संकट जो है वो घर परिवार में आ जाते हैं, कई बार ऐसे होते हैं कि हम किसी तरीके की परेशानियों में फंस जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी एक्सीडेंट या कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है उसमें फंस जाते हैं। तो कई तरीके के संकट इंसान के सामने आ सकते हैं, चाहे वो मानसिक हो, चाहे आर्थिक रूप से हो, या कोई सामाजिक हो, कोई भी तरीके के संकट जीवन में हमें देखने को मिलते हैं। और देखिए, संकट से उबरने के लिए शीतल जो है समय पर बहुत से लोग काम करते हैं। तो आज एक संस्था के बारे में हम बात करेंगे, रेड क्रॉस संस्था जो है ये विश्व भर में कोई भी तरीके की जो आपदा आती है उसको दूर करने में मदद करने का काम करती है। जो तो रेड क्रॉस सोसाइटी जो है ये अंतर्राष्ट्रीय मानवीय और स्वयंसेवी संगठन है जो युद्ध, प्राकृतिक आपदाओं, महामारियों और आपातकालीन स्थितियों में मानव पीड़ा को कम करने और घायलों की सहायता करने के लिए कार्य करती है। और 1863 में हेनरी ड्यूनेट द्वारा स्थापित इसका मुख्य उद्देश्य बिना किसी भेदभाव के जीवन और स्वास्थ्य की रक्षा करना था।
0: एकदम आपने सही कहा, जो विश्व रेड क्रॉस सोसाइटी, आज 8 मई है और 8 मई को अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस आंदोलन के मानवीय प्रयासों को सम्मानित करने के लिए और इनके संस्थापक जैसा आपने बताया हेनरी ड्यूनेट की जयंती मनाने के उपलक्ष्य में विश्व रेड क्रॉस दिवस आज के दिन मनाया जाता है। और ये दिवस जो ऐसा आपने बताया कि पूरे युद्ध भी होते, कई तरह की प्राकृतिक आपदाएं होती है, तो ये दिवस मनाने का जो उद्देश्य वो यही है कि प्राकृतिक आपदाएं हुए, संघर्ष, स्वास्थ्य आपात स्थितियों के दौरान सहायता प्रदान करना और जो सहायता, जो स्वयंसेवक ये सहायता प्रदान करते हैं, अपना कार्य करते हैं, उनको सम्मानित करना, इसलिए ये ताकि लोगों को भी इस जो कार्य है इसके प्रति लोग जागरूक होए कि मतलब जैसे हम छोटी मोटी मदद तो करते हैं लेकिन रेड क्रॉस सोसाइटी के अंदर जो है वो युद्ध से, जो युद्ध हो रहा है, आप देखिए युद्ध में अभी कई जगह विश्व युद्ध हो रहे हैं तो वहाँ पे भी रेड क्रॉस सोसाइटी जो है वो अपना जो काम करती रहती है, स्वयं सेवक है वो, बिना निस्वार्थ भाव से जो है आरती अपना काम करते हैं। इसके साथ साथ आपदाग्रस्त क्षेत्र, संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में भोजन और चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए भी रेड क्रॉस सोसाइटी भरपूर कोशिश करती है कि किसी को भी मतलब इस समय चिकित्सा और भोजन से भी वंचित ना रखा जाए। तो घायल सैनिकों, नागरिकों और आपदा पीड़ितों की भी सहायता रेड क्रॉस सोसाइटी करती है। और इस साल आरती जो रेड क्रॉस सोसाइटी दिवस मनाया जा रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, उसकी थीम भी मानवता को जीवित रखना ही है।
1: तो जो रेड क्रॉस सोसाइटी है वो बहुत बड़ी जब आपदाएं आ जाती है, उस समय इंसान जब कुछ समझ में नहीं आता कि भाई हमारी मदद कौन करेगा, उस समय ये सोसाइटी जो है ये जाकर के वहां पर काम करती है और लोगों को इस मुसीबत से निकालती है। तो हमारे देश भारत में भी इसकी स्थापना की गई 1920 में और इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है, जबकि जो विश्व रेड क्रॉस सोसाइटी है इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो ये जो रेड क्रॉस सोसाइटी है शीतल, इसका प्रतीक चिन्ह क्या है तुम्हें पता है? इसका प्रतीक चिन्ह है सफेद पृष्ठभूमि पर लाल प्लस का चिन्ह, जो शांति और सहायता का प्रतीक है। और हर साल ये मनाने का मुख्य कारण ही यही है, रेड क्रॉस दिवस जो मनाया जाता है इसका मुख्य कारण ये है कि लोगों में एक जागरूकता फैलाई जाए कि भाई हमें सिर्फ अपने लिए नहीं जीना है, लोगों के लिए भी जीना है, किसी की मदद करने के लिए भी जीना है। क्योंकि देखिए, जीवन तो कोई भी जानवर भी जी लेता है, लेकिन अगर हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो इसीलिए हम इंसान कहलाते हैं, क्योंकि हम जो इंसान हैं वो जानवरों से कुछ अलग हैं। और ये हम तभी बता सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं जब हम किसी की मदद करें, किसी के भले के लिए काम करें। तो ये जो रेड क्रॉस सोसाइटी है, ये किसी बिना किसी यूं कहा जाए कि किसी भी तरीके की इनकी सेवा के लिए कोई भी तरीके का ये रेम्यूनरेशन नहीं लेते, ये सिर्फ निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करती है सोसाइटी। और बड़ी बड़ी आपदाओं के समय हमने देखा है कि लोगों को उन आपदाओं से इन्होंने बाहर निकाला है। और रेड क्रॉस सोसाइटी से बहुत से बड़े बड़े महान हस्तियां भी जुड़ी हुई हैं जिन्होंने बहुत काम किया है अपने देश के लिए, दूसरे देशों के लिए। तो आज ये जो रेड क्रॉस दिवस है, इस दिन हम उन सभी लोगों को नमन करते हैं। और रेड क्रॉस सोसाइटी जो है, इसके लिए भी हम चाहते हैं कि भाई ऐसी सोसाइटी जो काम कर रही है, ऐसी और भी संस्थाएं हमारे देश में बने और लोगों के भले के लिए काम करें। तो शीतल, बातें हमारी चलती रहेगी, आइए ले चलते अपनी सखियों को गीत संगीत की दुनिया में और सुनवाते प्यारा सा गीत।

0: सखियों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म आशिकी का ये प्यारा सा गीत। आइए सुनते हैं कुछ जरूरी संदेश।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: में आए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: आरती, अभी देखा जाए तो मौसम का मिजाज जो है बहुत ज्यादा ही गर्म हो गया है। इतना गर्म हो गया है कि अब सुबह सुबह 10 बजे से ही दोपहर का एहसास होने लग जाता है, और इतनी गर्मी हो गई है कि हम लोगों को सुबह घर से बाहर निकलने की भी इच्छा नहीं होती। और लेकिन सबसे ज्यादा जो देखा जाए तो इसके अंदर जो गृहिणियाँ होती है उनको बहुत ही ज्यादा देखी है कि सुबह से उनको नाश्ता बनाना है, फिर लंच बनाना है, पूरा टाइम उनका किचन में जो है वो निकल जाता है। तो आज हम हमारी गृहिणियों से कहना चाहेंगे कि गर्मी के समय आप कुछ ऐसे मतलब आहार को अपने खाने में शामिल कीजिए, या कुछ ऐसा मैनेजमेंट अपने घर के अंदर बना के रखिए कि आपको कम समय में आप अच्छा और हल्का फुल्का भोजन भी बना सके, साथ ही साथ आपको जो गर्मी है उसका एहसास भी कम हो।
3: गर्मी में खान पान का ध्यान रखना तो बहुत ज़रूरी होता है शीतल, क्योंकि ये जो खान पान है इसका इफेक्ट जो है वो हमारी बॉडी पर पड़ता है। और हम जानते हैं कि गर्मी में ज़्यादा भारी खाना अगर हम खाएं तो हमें पचता भी नहीं है, तो हमारा पाचन जो है वो अच्छा रहना चाहिए। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि गर्मी में जो खाना है हल्का होना चाहिए, और हल्के खाने में देखिए न सिर्फ रात को बल्कि सुबह का खाना भी ज़्यादा हैवी हमें, जैसे तला भुना ऐसा खाना हमें अवॉइड करना चाहिए इसमें। क्योंकि देखिए सर्दी में तो हम जैसे तले हुए पकोड़े हैं या कोई हैवी खाना जो भी है हम खाते हैं, जैसे सब्जियां काफ़ी ग्रेवी वाली हम खाते हैं या कुछ नान वगैरह इस तरीके के खाने जो भी हम खाते हैं, तो वो हमको आसानी से पच जाते हैं क्योंकि वो जो मौसम होता है उसमें खाने का जो पाचन है वो बहुत आसानी से होता है। लेकिन ये जो समय है इसमें पाचन बहुत मुश्किल होता है, और ऊपर से गर्मी की वजह से कुछ खाना पसंद भी नहीं आता। कई बार तो ऐसा होता है कि हम थाली पर बैठते हैं और खाने खाने की इच्छा ही नहीं करती। तो सबसे अच्छा तरीका तो है कि आप थोड़े थोड़े अंतराल पर कुछ ना कुछ खा लीजिए, और न सिर्फ खाइए बल्कि पिए, कुछ ना कुछ पिए बार बार, जैसे दिन भर आप कोई ना कोई लिक्विड जो है वो लेते रहें, चाहे घर में काम करने वाली हम लेडीज हैं, चाहे बाहर जाने वाले हमारे घर के लोग हैं, बच्चे हैं, हमारे हस्बैंड हैं, जो भी बाहर जाते हैं उनको जरूर कुछ लिक्विड पीने के लिए देते रहें ताकि उनको कोई भी तरीके की परेशानी नहीं हो। क्योंकि अगर हम जैसे कुछ भी पी के घर से निकलते हैं ना ठंडा, जैसे पानी ही पी लिया या मट्ठा छाछ या नींबू पानी है या बहुत तरीके के शरबत बनते हैं गर्मी के मौसम में, हम चाहें तो ये शरबत घर पर भी बना सकते हैं, बाजार से भी ला सकते हैं, लेकिन बाजार से लाने की बजाय यदि हम घर पर शरबत बनाते हैं तो उनका एक अलग ही स्वाद भी आता है और बहुत अच्छा भी रहता है। और शरबत की रेसिपीज हम अपने सखियों को कई बार बताते भी, तो बहुत ही आसान होता है, घर बैठे कई तरीके के शरबत हम बना सकते हैं। इसमें एक देखिए बेल का जो शरबत है ये ठंडा बहुत करता है पेट को, तो गर्मी के मौसम में बेल जो है वो आता भी खूब है, तो बेल का शरबत जो है वो जरूर पिए और अपने परिवार को भी पिलाएं ताकि हमारे शरीर में पानी की कमी नहीं हो, मतलब कि हाइड्रेशन जो है वो कम नहीं होना चाहिए। तो हमारा जो खाना नाश्ता सब कुछ जो है वो हल्का होना चाहिए।
2: एकदम आपने सही कहा, क्योंकि इस गर्मी में जितना हम गरिष्ठ या तला भुला खाना खाएंगे तो उससे गैस, अपच, एसिडिटी की जो समस्या है वो आमतौर पे तो होती है, वो गर्मी में ज़्यादा हो जाती है। और आपने देखी कि अभी जो लू लग जाती है, हीट स्ट्रोक हो जाता है गर्मी में ज़्यादा देर बाहर निकलने से, तो उसका भी जो है सखियों को, हमारी सखियों को ध्यान देना चाहिए कि अगर कोशिश हो तो 12 से 4 के बीच में आप भी बाहर ना जाए, बच्चों को भी ना भेजे। लेकिन अगर कोई, अब देखिए काम भी करना पड़ता है सभी को, बाहर भी निकलना है, तो जब यही है कि अपने साथ पानी की बोतल तो हमेशा कैरी करके रखना ही चाहिए, और साथ
3: अपना जो मुंह है उसको भी हम स्कार्फ से बंद करके जाए, चश्मा लगाएं धूप में। हाँ,
2: और साथ ही जैसे जो कॉटन होता है सूती कपड़े उसको अभी ज्यादा प्रिजर्व रखना चाहिए कि सूती कपड़े ही पहने। अगर शादियों का भी मौसम चल रहा है आरती, शादियों के मौसम में भी आप कोशिश कीजिए कि आप ऐसे कपड़े पहने कि जो ज्यादा मतलब जिससे आपको गर्मी नहीं हो, ज्यादा ही एकदम हैवी कपड़े या हैवी साड़ियां ना पहने, उसकी बजाय आप सिंपल कॉटन की शिफॉन की जो साड़ियां होती है वो पहने, जिससे आपको गर्मी का भी एहसास नहीं होगा, और मतलब जिसे कहते हैं ना
3: हवा भी
2: जो आसानी से आएगी, बच्चों को भी आप वैसे ही कपड़े पहनाए। और जैसा आपने कहा कि जो लिक्विड होता है वो बहुत लेना चाहिए, और अभी सीजनल सब्जियां मार्केट में बहुत आ रही है कि जैसे तुरई है, लौकी है, खीरा ककड़ी है, ककड़ी है, इसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो कोशिश यही करना चाहिए कि इन्हीं सब्जियों को अपने आहार में सुबह शाम में एक बार तो शामिल करें।
3: भाई देखिए सुबह का जो हम नाश्ता करते हैं वो हल्का, जैसे पोहा है, उपमा है, इस तरीके का नाश्ता हम कर सकते हैं। इस समय भी हम तले भुने ज़्यादा चीज़ें हम नहीं खा सकते, ज़्यादा है तो आप अपने टेस्ट के लिए जैसे कोई ढोकला बनाया या आप कोई तरीके का हल्का फुल्का चिलरा टाइप बना लीजिए जिसमें तेल कम यूज़ हो। और जो खाना है उसमें हमें कोशिश ये करना है कि दाल चावल, भाई बैलेंस डाइट तो खाने में चाहिए ही, तो दाल चावल

0: वगैरह सलाद है, और उस समय भी दही जरूर अपने खाने में रखें। और जो सीजनल सब्जियां हैं, सबसे देखिए जो सीजन में जो सब्जियां आती है वो ही हमेशा खाना चाहिए। आप ऑफ सीजन की सब्जियां यदि खाएंगे तो एक तो वो जबरदस्ती पकाई जाती हैं, उनमें कई तरीके के प्रिजर्वेटिव वगैरह डाले जाते हैं, तो ऐसी सब्जियों को अवॉइड करें। जो सीजन में सब्जियां मिलती हैं उन सब्जियों को हर समय खाएं, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। और उस समय भी आप कोशिश करें कि जैसे सुबह नाश्ते के साथ आपने दूध लिया है ठंडा, तो दोपहर में आपने छाछ ले ली, और शाम को कोई नींबू पानी पी लिया, रात को फिर आप ठंडा दूध ले सकते हैं। इस तरीके से लिक्विड जो है वो समय समय पर हमारे नाश्ता खाना स्नैक्स के समय हमें होना चाहिए। और
1: एकदम सही कहा आपने। और इसके साथ जो जैसे आपने जो ये कहा कि लिक्विड हमें लेना चाहिए, तो लिक्विड में सबसे ज़्यादा जो है कि छाछ जो होती है वो बहुत फ़ायदा करती है। और सीजनल सब्जियों के साथ साथ अभी जैसे सीजनल जूस भी होता है, गन्ने का रस बहुत फ़ायदा करता है। तो और गन्ने का रस ऐसा भी नहीं है, ईजिली आजकल सब जगह ताज़ा मिल भी जाता है पीने के लिए। तो अपने मतलब कोशिश करनी चाहिए कि हमें हफ्ते में 1 या 2 बार गन्ने का रस तो खुद भी पीना चाहिए और बच्चों को भी पिलाना चाहिए।
0: और कोई भी प्रोसेस फूड जो है इस समय नहीं खाएं, इससे बचें। चाय कॉफी इनसे बचें। आप एक बार हल्की चाय थोड़ी सी सुबह आप पी लें, फिर दिन भर बार बार चाय पीने से बचें, कॉफी पीने से बचें, तो ही हमारे लिए अच्छा रहता है। और अगर आपके घर से कोई भी काम पे जा रहा है तो उनको भी आप जो लंच बना के देते हैं कोशिश कीजिए कि वो भी हल्का हो, सादा खाना हो, और साथ ही साथ कुछ फल लिक्विड भी साथ में जरूर दें। तो इससे क्या होगा कि पानी की कमी शरीर में नहीं रहेगी, और जो बाहर जा रहे हैं उनको भी गर्मी वगैरह नहीं लगेगी। गर्मी में लू लगने का खतरा जो है बहुत ज्यादा बना रहता है। अगर किसी को लग भी जाए तो उसे बार बार ठंडे पानी की पट्टियां करनी चाहिए, और उसको कुछ मट्ठा छाछ इस तरीके का पिलाना चाहिए ताकि जो लू है इससे हम बच सकें। तो ये जो गर्मी है बहुत तेज है, तो इस गर्मी में अपने आप को भी बचाना है, अपने परिवार को भी बचाना है, इसलिए इस गर्मी में अपने आहार का प्रबंधन जो है वो बहुत ही सोच समझ कर हमें करना है, ताकि घर वाले जो है उन्हें अपचन भी नहीं हो और हम सब गर्मी से बचे भी रह सकें। तो शीतल, बातें हमारी चलती रहेगी, आइए अपनी सखियों को ले चलते एक बार फिर से गीत संगीत की दुनिया में और सुनवाते हैं प्यारा से गीत। लेकिन उससे पहले ये बताना चाहूंगी कि अभी शादियों का सीजन है, और शादियों में भी कई तरीके के गाने हम सुनते हैं, और शादियों में दूल्हा और जो लड़की की बहनें होती हैं इनमें अक्सर हम देखते हैं कि जूते के लिए बहुत लड़ाई होती है, जूता छुपाई होती है, उसके रुपए दिए जाते हैं। तो आज भी एक ऐसा ही प्यारा सा गीत जो है वो आपको हम सुनाने जा रहे हैं, सुनिए गीत।

0: झूठे तो पैसे लो, झूठे तो पैसे लो, झूठे तो पैसे लो, झूठे तो पैसे लो।
1: सखियों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म हम आपके हैं कौन का ये प्यारा सा गीत, जिसे गाया था लता मंगेशकर और उदित नारायण ने।

0: में आए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: आरती, हमने कार्यक्रम की जब शुरुआत की थी, जब उसके अंदर हमने बताया था कि आज संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व रेड क्रॉस दिवस भी मनाया जा रहा है, उसी तरीके से संयुक्त राष्ट्र का 8वां वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह भी 8 मई से 14 मई के बीच में मनाया जाएगा, और जिसका भी मुख्य उद्देश्य है कि दुर्घटनाओं की रोकथाम के बारे में लोगों को जागरूक करना। आप देखिए आजकल सड़क दुर्घटनाएं कितनी हो रही है, और छोटे छोटे बच्चों को बिना लाइसेंस के माँ बाप जो है गाड़ियाँ दे देते हैं, तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा यह अभियान सड़क यातायात दुर्घटनाओं में होने वाली जो मौतें होती है उनको कम करने के लिए, साथ ही साथ गति नियंत्रण करने के लिए और पैदल यात्रियों की सुरक्षा पर विशेष जोर से ध्यान देने के लिए ये सड़क सुरक्षा अभियान जो है ये मनाया जाता है।
3: शीतल, ये WHO द्वारा प्रायोजित जो ये सड़क सुरक्षा अभियान होता है, ये द्विवार्षिक अभियान होता है, मतलब ये 2 वर्षों में मनाया जाता है, और पहली बार ये 2007 में मनाया गया था, 2013 तक इसे नहीं मनाया गया, और उसके बाद से 2019 तक इसे हर 2 साल में मनाया जाता रहा है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा ये जो वैश्विक सड़क सुरक्षा अभियान है, इसका उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है कि भाई सड़क जो है उस पर कई तरीके के लोग भी चल रहे हैं, गाड़ियां भी चल रही है, आप और हम भी जा रहे हैं, तो जब कभी हम सड़क पर जाएं तो न सिर्फ हमें अपनी बल्कि लोगों की सुरक्षा का भी ध्यान रखना है। आप जब सड़क पर जाएं तो सड़क के जो नियम होते हैं कि भाई आपको तो अपने दोनों तरफ देखना है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, आपके सिग्नल क्या है, इन सब के बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और अक्सर हम देखते हैं हमारे शहरों में लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को वाहन दे देते हैं, बच्चों को जो सड़क सेफ्टी है इनके रूल्स भी नहीं पता होता है, लेकिन बच्चों को गाड़ियां दे दी जाती हैं। होता ये है कि कई बार बच्चे अपने लगा लेते हैं, नहीं तो कोई और के लगा कर आ जाते हैं। तो देखिए दोनों ही कंडीशन में किसी की जान भी जा सकती है, किसी बच्चे को अगर हम दे रहे हैं कभी उनको नहीं नॉलेज है तो बच्चे की भी जान जा सकती है, और उसके द्वारा किसी और का एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो जब तक बच्चे आपके लायक नहीं हो जाए गाड़ी चलाने की, यानी कि वो माइनर है जब तक उन्हें नहीं दीजिए, जब वो एडल्ट यानी 18 साल के हो जाए तभी उन्हें गाड़ी देना चाहिए। और गाड़ी तो स्कूटी बाइक तो चलिए है ही, कार भी लोग जो है 18 साल की उम्र से पहले ही बच्चों को चलाने के लिए दे रहे हैं, तो पूरी तरीके से गलत है। हम पेरेंट्स अगर ये सोचे कि भाई हमारा बच्चा चला लेता है तो क्या दिक्कत है, ये हमें नहीं सोचना है, बल्कि ये सोचना है कि भाई एक उम्र हर चीज की होती है और उसके अनुसार ही काम करना अच्छा है। अगर आपका बच्चा छोटा है तो आप उसको बड़ी क्लासेस में तो नहीं बैठा सकते ना, तो वैसे ही अगर बच्चा छोटा है तो आप उसे समय से पहले यदि गाड़ी वगैरह चलाने देंगे तो वो ये चीजों को समझ भी नहीं पाएंगे कि भाई हमें किसी और की जान का भी ध्यान रखना है और अपनी जान का भी ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चों में किसी भी काम को करने की बहुत जल्दी होती है, हड़बड़ी होती है, और वो गंभीरता उस उम्र के बच्चों में नहीं आ पाती। बच्चों को अगर गाड़ी दे दी जाती है तो उस गाड़ी को इस तरीके से चलाना चाहते हैं जैसे कि वो घोड़े पर सवार है, और या फिर वो एरोप्लेन में जा रहे हैं, वो ऐसा अपने आप को महसूस करते हैं और बहुत ही स्पीड से गाड़ी चलाते हैं। तो इसी बात को अगर हम ध्यान रखें कि भाई उम्र के हिसाब से अगर हम बच्चों को गाड़ी चलाने देंगे तो वो इस बात की गंभीरता को समझेंगे। और इसके अलावा जो दूसरे लोग भी गाड़ी चलाते हैं सड़क पे या हम पैदल जा रहे हैं, तो हमें भी इस बात का ध्यान रखना है कि भाई गाड़ियों के आने जाने की क्या जगह है, सिग्नल अगर नहीं है तो हमें रास्ता क्रॉस नहीं करना है, जब सिग्नल हो कि भाई आप रुक जाइए, गाड़ियों के रुकने का समय हो हमें रुकना है, ये सब चीज़ों का ध्यान रखकर अगर हम काम करेंगे तो कोई भी तरीके के एक्सीडेंट नहीं होंगे। तो ये जो सड़क सुरक्षा अभियान ये चलाया गया, इसका उद्देश्य ये है कि 50% तक जो ये सड़क पर एक्सीडेंट होते हैं इसको कम किया जाए, और काफ़ी हद तक इसमें हमें सफलता भी मिली है। तो इसी के द्वारा सब में जागरूकता फैले इसलिए दिवस मनाया जाता है।
2: एकदम आपने सही कहा आरती, और जैसे आपने ये कहा ना कि मतलब ये जो बच्चों को हम लोग दे देते हैं, तो ये हर पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए कि देखिए कि छोटे बच्चों का स्कूटी, तो आपने कहा स्कूटी कार, और मोस्टली जो एक्सीडेंट होते हैं रात के समय, बड़े बड़े शहरों में भी आपने देखे होंगे महानगरों में कि रात के समय बच्चे 12th पास आउट है 11th पास आउट है कार लेके निकल गए हैं और फिर उनसे एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो माइनर को सबसे पहले पेरेंट्स ही अगर दे देंगे गाड़ियाँ तो फिर लोग कैसे आगे बढ़ेंगे। और दूसरी बात जो आपने कही कि मतलब दुर्घटनाओं को रोकने के लिए, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि सड़क सुरक्षा अभियान तो सिर्फ 7 दिन का मनाया जाएगा, ये एक साप्ताहिक पखवाड़ा है, लेकिन आपको जो है कि अपना ध्यान खुद रखना चाहिए कि आप गाड़ी धीमी गति से चलाएं, स्पीड ब्रेकर आते हैं तब अपनी स्पीड को थोड़ा सा रोक के चले, सीट बेल्ट हमेशा कार में लगा के चले। अक्सर मैंने देखा है कि कई लोग गाड़ियाँ चलाते हैं तो सीट बेल्ट नहीं लगाते कि क्या हो जाएगा, लेकिन सीट बेल्ट लगाने का कारण ये नहीं है कि आपकी आपकी सुरक्षा है वो, अगर कभी भी कोई दुर्घटना हो जाए तो आपको कोई तकलीफ नहीं हो।
3: यहाँ तक कि देखिए शीतल की जो हेलमेट के लिए भी पुलिस वाले रोकते हैं तो उसमें हम गुस्सा होते हैं कि पुलिस वाले क्यों रोक रहे हैं, जबकि वो जो काम कर रहे हैं वो हमारे भले के लिए कर रहे हैं। हमें ये समझना है कि भाई हेलमेट पहनते हैं तो हमारे सर की सुरक्षा रहती है, और सर जो है हमारे हमारा सिर जो है वो हमारी बॉडी का सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है, अगर इसमें थोड़ी भी चोट लग जाए तो हमारी पूरी लाइफ खराब हो सकती है और कई बार तो जान भी चली जाती है। तो उसकी सेफ्टी के लिए हमें हेलमेट पहनाए जाते हैं और उसी के लिए चालान कटते हैं, लेकिन फिर भी हम गुस्सा होते हैं और पुलिस से बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी देखिए हमारी भारत सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना शुरू की है जिसमें 1.5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है, और भारतीय क्रिकेट के जो दिग्गज है सचिन तेंदुलकर इनको सड़क सुरक्षा के लिए वैश्विक चैंपियन के रूप में नामांकित भी किया गया है। तो इस तरीके से इन लोगों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपनी सुरक्षा हमारे अपने हाथ में है, इस बात का हम ध्यान रखेंगे तो ही हम सुरक्षित रह पाएंगे। तो सखियों बातें हमारी चलती रहेगी, एक बार फिर से चलते संगीत की दुनिया में और सुनते ही प्यारा संगीत।

0: एक दूजे के वास्ते।
1: दिल तो पागल है इस फिल्म का प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और हरिहरन की आवाजों में।
2: आरती अब देखिए, हमने गर्मी के बारे में हमें बताया कि हमारी सखियों को कि किस तरीके से गर्मी के अंदर उन्हें जो है कि एकदम गरिष्ठ खाना नहीं बनाना चाहिए, आहार प्रबंधन ऐसा करना चाहिए कि जिससे किसी की तबीयत भी खराब नहीं हो और हमारे घर में जो है नॉर्मल हल्का फुल्का खाना भी बना रहे। तो उसके साथ ही साथ गर्मी में जो शरीर को हाइड्रेट और ठंडा रखने के लिए आपको जो है पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए, जैसा हमने बताया हमारी सखियों को। तो उसके लिए कुछ ऐसे शरबत है जो गर्मियों में ही बनते हैं और इन्हें हमें बनाने से ना केवल ये हमारी प्यास बुझाते हैं शरबत, बल्कि ये शरीर को जो है विटामिन्स भी देते हैं, एक एक्स्ट्रा एनर्जी भी देते हैं और एकदम हाइड्रेट रखते हैं शरीर को, जिससे पानी की जो कमी है वो नहीं होती। तो उसी में जो सबसे ज़्यादा है कि अभी आम बहुत आ रहा है, कच्चा आम, और कच्चे आम के हम लोग अचार तो बनाते ही है, साथ ही साथ कच्चे आम का जो रस होता है जिसे पन्ना भी बोला जाता है, केरी पानी भी बोला जाता है, अगर इसे पीते हैं गर्मी में तो यह शरीर को ना सिर्फ ठंडक देता है बल्कि पेट की समस्याएं जो होती है उसको भी बहुत मददगार होता है। क्योंकि गर्मियों में देखिए कि अगर हम कुछ भी तला गला या कुछ ऐसा भोजन कर लेते हैं तो उससे हमारे पेट में समस्या हो जाती है, गैस, एसिडिटी,
1: और इससे हमें लू भी नहीं लगती शीतल।
2: हाँ, और इससे लू भी नहीं, और इसको बनाने का भी तरीका जो है बहुत ईजी है। केरी पानी, आम पन्ना जिसे हम बोलते हैं, तो कच्ची केरी को लाके आप अगर उसे उबाल दीजिए और उबालने के बाद जो उसका पल्प होता है उसे आप छान के मिक्सी में फेंट के उसके अंदर बर्फ, कुछ काला नमक, जीरा और ये डाल के आप पी लीजिए छान के।
1: तो और ये उसमें अगर पुदीना डालते हैं तो उसका

0: टेस्ट और भी बढ़िया आ जाता है।
1: बहुत अच्छा आता है।
0: और पुदीना देखिए ना शीतल की, हमारे पेट के लिए भी कितना अच्छा रहता है, गैस भी नहीं होती पुदीने से।
1: पुदीना, और ये सबसे कि ये ऐसा पुदीना तो हम घर पर भी अपने घर पे भी उगा सकते हैं बहुत इजीली तरीके से। पुदीने को, पुदीने की डंठल जो है उसे आप अगर अपने गमले में लगा दे तो थोड़े दिनों में 4-5 दिन बाद अपने आप ही पुदीना जो है वो घर पे भी उग सकता है। और आम पन्ना जो है बहुत इजी रेसिपी है, और मैं चाहती हूँ कि दोपहर के समय अगर घर पे कोई आ रहा है या कोई जा रहा है तो उसे आम पन्ना आप जरूर बना के पिलाइए, क्योंकि ये लू से तो बचाएगा ही, साथ ही आपकी पेट की जितनी भी समस्या है उन्हें भी दूर करेगा। तो ऐसे और भी बहुत सारे शरबत है, तो आप भी प्रिय आरती कोई हमारी सखियों को कोई एक ऐसे शरबत के बारे में बताइए जो उनको गर्मी में लू से भी बचाए और उन्हें शरीर को भी फायदा करे।
0: देखिए शीतल, हमारे बच्चे जो हैं बाजार के जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लाते हैं पीते हैं, तो ये देखिए बहुत नुकसान भी करते हैं, और रोज की आदत अच्छी नहीं, कभी कभार कोई पिए तो बढ़िया है, लेकिन अगर हम अपने घर के बने शरबत या आपने जैसे आम पन्ना बताया ऐसे अगर शरबत हम बना के रख देना, तो बच्चे घूमते फिरते थोड़ा थोड़ा पीते भी रहते हैं, उन्हें अच्छा भी लगता है ठंडा ठंडा पीना, और वो पेट के लिए भी बहुत बढ़िया होता है। तो ऐसे बहुत से शरबत भी हम घर पर बना सकते हैं, जैसे हम बाजार से शरबत लाते हैं, और एक तरीके से देखिए कि भाई घर पे बनाना काफी किफायती भी पड़ता है, करना कुछ नहीं है आपको, आप जितना भी शरबत बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से आपको पानी लेना है। जैसे मान लीजिए आप 1 लीटर शरबत बनाना चाहते हैं, तो आप 1 लीटर पानी लीजिए और 2 केजी जो है वो शक्कर ले लीजिए, डबल शक्कर आपको लेनी है, और इसको आप अच्छे से पानी के साथ घोल के मिला लीजिए, थोड़ा सा इसको गाढ़ा कर लीजिए। उसके बाद क्या कीजिए कि कई बार शक्कर में कचरा भी होता है, इसलिए थोड़ा सा हम दूध डालते हैं ताकि इसकी जो मैल है वो ऊपर आ जाती है, फिर उसको आप छान लीजिए और ठंडा कर लीजिए। जब पानी ठंडा हो जाए ये शक्कर वाला, तो आप इससे चाहे जैसा शरबत बना सकते हैं, चाहे तो आप गुलाब का शरबत बनाना चाहते हैं तो आप गुलाब का एसेंस डाल दें, रेड कलर डाल दें बाजार से लाके, अगर आप नहीं चाहते कि बाजार का रंग या ऐसा कुछ डाले तो आप केसर चंदन का शरबत भी बहुत बढ़िया इससे बना सकते हैं। चंदन का पाउडर आपको बाजार में पीने के लिए शरबत के लिए मिल जाता है स्पेशली, वो आप ले आइए, वो इसमें आप मिक्स कर दीजिए, और केसर जो है उसे थोड़ा भिगो करके आप इसमें मिला दीजिए, और अच्छी क्वांटिटी डालेंगे तो रंग अपने आप ही बहुत बढ़िया आ जाएगा। और काफी लोगों को भी कलर का रहता है, तो आप इसमें हल्का सा येलो कलर डाल सकते हैं, जो कलर हम केक वगैरह बनाते हैं या कुछ घर पे इस तरीके की खाने की चीजों में जो कलर डालते हैं वो हल्का येलो कलर आप इसमें डाल सकते हैं। और भी बहुत तरीके के शरबत बन सकते हैं। एक देखिए सर्दी में, गर्मी में तो सर्दी में तो हम देखिए गोंद खाते हैं जो शरीर के लिए बहुत अच्छा रहता है, लेकिन गर्मी के मौसम में गोंद कतीरा खाया जाता है। गोंद कतीरा भी बर्फ के टुकड़े जैसे छोटे छोटे टुकड़े के रूप में बाजार में मिलता है, इसे आप ले आइए, और इसके सिर्फ 1-2 टुकड़े जो होते हैं वो एक आदमी के लिए बहुत है। तो अगर घर में 5-6 लोगों के लिए आप भिगो रहे हैं तो कम से कम 5-6 टुकड़े जो है इसको पानी में भिगो दीजिए, इसके अंदर कम से कम 1-1.5 कप जितना पानी डाल के आप भिगो के छोड़ दीजिए। 3-4 घंटा जब ये भीगता है तो आप उसको चेक करेंगे तो जैसे ऐसा लगेगा जैसे कुटी हुई बर्फ हो, उस तरीके का ये बाउल में हमको दिखाई देता है। अब ये जो गोंद कतीरा है इसको आप किसी भी शरबत के साथ मिक्स करके पी सकते हैं, और जब ये हमारे शरीर में जाता है तो शरीर में बहुत ठंडक करता है। अभी शीतल हाल ही में मुझे भी बहुत गले में जलन का एहसास हो रहा था, और जब गोंद कतीरे का मैंने शरबत बना के पिया तो एक दिन में इसका फर्क जो है मुझे महसूस हुआ। तो अगर गोंद कतीरा पिया जाता है तो इससे काफ़ी ठंडक हमारे पेट में हमारे गले में मिलती है, और गोंद कतीरे को आप दूध के साथ भी पी सकते हैं, आप चाहें तो कोई शरबत के साथ पी सकते हैं। आप मिक्सी में शरबत को और गोंद कतीरे को डाल के घुमा लीजिए और पानी अपने अनुसार डाल लीजिए, या फिर आप घर के भी जैसे आप पुदीने का पाउडर रखिए वो डालिए, थोड़ा जीरा डालिए, पिसा हुआ नींबू डाल दीजिए, इस तरीके का जूस भी आप बना के अगर इसके साथ पियेंगे तो उससे आपको बहुत ठंडक मिलेगी। तो गर्मी में जरूर पिए ताकि आपके पेट को आपके गले को आराम मिले। और हम एक बार फिर से चलते हैं गीत संगीत की दुनिया में और सुनते हैं गीत।

ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है कुल किले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले

सखियों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म सिलसिला का ये प्यारा सा गीत, जिसे गाया था लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। आरती, हमने हमारी सखियों को गर्मियों के पेय के बारे में बताया, उसी तरीके से हमें हमारी सखियों, मतलब अब जाते जाते सखियों को हम ये भी बताना चाहते हैं कि जो कुछ किचन टिप्स बता देते हैं कि जो गर्मियों के अंदर अगर वो टाइम मैनेजमेंट करके करें तो उससे उनको गर्मी के अंदर जो है ना फटाफट उनका काम भी हो जाएगा और उन्हें ज़्यादा गर्मी के अंदर परेशानी भी नहीं होगी।

नहीं कि आप कुछ कांट वगैरह के भी रख नहीं सकते, क्योंकि चीजें खराब बहुत जल्दी हो जाती है और बाहर तो चीजों को रखना बहुत मुश्किल है। तो अगर आपने कोई सब्जी वगैरह सोचा कि भाई हम काट के भी रख दें तो उसको आपको फ्रिज में ही रखना पड़ेगा, लेकिन ये भी ऐसी सब्जियां हम काट सकते हैं जो खराब नहीं हो। हर तरीके की सब्जी हम काट कर फ्रिज में नहीं रख सकते। हम ये कर सकते हैं कि जैसे कोई ग्रेवी बनानी है तो आप टमाटर पीस कर फ्रिज में रख दें, इस तरीके की छोटी मोटी तैयारी हम करके रात को रख दें तो सुबह हमारा काम जो है वो बहुत ही आसानी से हो जाता है। या आप देखिए कि हमें नाश्ता बनाना है सुबह फटाफट और हम उपमा बनाना चाह रहे हैं, तो हम जो सूजी है उसको अगर हम सेक के डब्बे में भरते हैं ना तो बहुत जल्दी उपमा बन जाती है, क्योंकि सेकी हुई रहती है। सिर्फ हमें राई वगैरह डाल के जो कुछ भी हम उसमें डालना चाहते हैं बस उसको छौंकना है और जो रवा है उसको डाल के हमको उपमा बनानी है। तो इस तरीके से हमारे किचन का काम बहुत आसानी से हो जाता है। तो आप भी अपनाइए इन किचन टिप्स को और हमें ले चलते हैं आपको एक बार फिर से गीत संगीत की दुनिया में, और सुनवाते हैं इस कार्यक्रम का आखिरी और ये गीत।

0: तो इस प्यारे से गीत के साथ ही दीजिए आगे अपनी सखी आरती
1: और शीतल को अगले कार्यक्रम में आप

अभी आप सुन रहे थे महिलाओं का कार्यक्रम मोमल FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। दोपहर के 2 बजे हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम रिले करेंगे पहले अंग्रेजी में फिर हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए आज कोलकाता में बैठक। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी ग्लाइड हथियार तारा का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की दृढ़ता, एकता और सभ्यतागत शक्ति का शाश्वत प्रतीक बताया। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत तथा अन्य देशों से आयात पर लगाए गए 10% शुल्क को अवैध घोषित किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट है कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला आज शाम दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल आज अपने नेता का चुनाव करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंच गए हैं।
1: पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के लगभग डेढ़ दशक के शासन का अंत हो चुका है। कल नवनिर्वाचित सरकार की शपथ ग्रहण के साथ ही बंगाल में राजनीतिक इतिहास में एक नई कड़ी का शुरुआत होगी। कल रविंद्र जयंती के दिन ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पश्चिम बंगाल की पहली बीजेपी सरकार शपथ लेगी। बीजेपी के विधायक दल का नेता चुनने का प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए पार्टी के नियुक्त पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही कलकत्ता पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में वो नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। इसी बैठक में बीजेपी विधायक दल की नए नेता का चयन किया जाएगा। इसके बाद राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य, आकाशवाणी के लिए।
0: शपथ ग्रहण समारोह कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलक वेत्री कड़गम को समर्थन देने के मुद्दे पर विद्युत लाई चिरु थैगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक आज होगी। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक अपने नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता का निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा केरल में पार्टी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर लिया जाएगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने कल ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल

0: निरीक्षण किया गया है। हैदराबाद स्थित डीआरडीओ की रिसर्च सेंटर इमारत ने डीआरडीओ के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए डीआरडीओ, वायुसेना, डीसीपीपी और उद्योग जगत को बधाई दी है। श्री सिंह ने इसे भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 में पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज एक राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में ये जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की सभ्यतागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर की यात्रा विध्वंस से सृजन की तरफ बढ़ने का प्रतीक है और ये दिखाती है कि कैसे विश्वास और संस्कृति बार बार हुए आक्रमणों तथा मुश्किलों के बाद भी अस्तित्व में रह सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वाधीनता के बाद मंदिर के पुनर्निर्माण में देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका का स्मरण किया। श्री मोदी ने कहा कि मंदिर के इतिहास से जुड़े शौर्य और बलिदान को सम्मान करने के लिए अगले 1000 दिनों तक विशेष पूजा आयोजित होंगी। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
1: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि प्रवासन को लेकर भारत का दृष्टिकोण प्रवासियों की सुरक्षा, देश छोड़ने से लेकर उनकी संभावित वापसी तक व्यापक शासन व्यवस्था और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के मुख्य संचालन सिद्धांतों पर आधारित है। उन्होंने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय पलायन समीक्षा मंच को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि भारत प्रवासियों की आवाजाही को सुचारू बनाने के प्रयास कर रहा है।
3: अप्रोच टू माइग्रेशन गवर्नेंस।
4: भारत ने 23 देशों के साथ प्रवासियों की आवाजाही के लिए व्यापक द्विपक्षीय समझौते और समझौता ज्ञापन किए हैं तथा निष्पक्ष और नैतिक आवाजाही के लिए कई और अन्य समझौतों पर विचार किया जा रहा है। भारत का लक्ष्य अवैध पलायन, तस्करी और सामाजिक सुरक्षा में मौजूद कमियों जैसी चुनौतियों से निपटते हुए समावेशी, मानवीय और भविष्य के लिए तैयार ढांचे का निर्माण करना है।
1: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि भारत विश्व के सबसे तेजी से बढ़ते विमानन बाजार के बाद अब विमान पट्टे पर देने और वित्तीय सहायता के मामले में एक प्रमुख वैश्विक स्थान बन रहा है। श्री नायडू ने ये बात गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में भारत विमान लीजिंग और वित्त पोषण के दूसरे चरण में मुख्य भाषण देते हुए कही। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वैश्विक आर्थिक स्थिरता के स्तंभ के रूप में भारत की बढ़ती भूमिका का जिक्र करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समृद्धि में देश के महत्वपूर्ण योगदान का उल्लेख किया। श्री जयशंकर ने सुरीनाम में विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस वर्ष वैश्विक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान के अनुसार भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान देता है।
5: इंडिया कंट्रीब्यूट्स।
4: भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान देता है। हम अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के जोखिम को कम करने में मदद कर रहे हैं। हम अधिक अवसर पैदा करने में सहायक हैं। हम आज और अधिक विकल्प तैयार कर रहे हैं। हम आज विभिन्न देशों के लिए ऐसे और अधिक मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहे हैं और उन्हें अंतिम रूप दे रहे हैं ताकि वे इनका लाभ उठा सके।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के 10% के नए टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति

0: ट्रंप ने व्यापार कानून के तहत अमरीकी संसद से प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन किया। छोटे व्यवसायियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क संबंधी फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। पिछले वर्ष लगाए गए वैश्विक टैरिफ को अदालत द्वारा स्थगित करने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने नए शुल्कों की घोषणा की थी। अमरीकी प्रशासन ने इसके बाद व्यापार अधिनियम 1974 की धारा 122 का इस्तेमाल कर 24 जुलाई 2026 तक अस्थायी 10% टैरिफ लागू करने का फैसला किया था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार ना हो। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ सार्थक बातचीत की और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। श्री ट्रंप ने कहा कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि अपने लोगों की हत्या करने वाले ऐसे शासन को हथियार प्राप्त करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए जिससे लाखों लोगों की जान जा सकती हो। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन ने भी सोशल मीडिया पर बातचीत की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया से जुड़े घटनाक्रमों और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ समन्वय पर बातचीत की। आकाशवाणी ने राष्ट्र के प्रति अपनी विशिष्ट सेवा के 90 वर्ष के उपलक्ष में आज राष्ट्रीय राजधानी में मैराथन का आयोजन किया। लगभग 3.5 किलोमीटर की मैराथन की शुरुआत आकाशवाणी भवन से हुई। ये मैराथन कृषि भवन, रेल भवन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से गुजरते हुए आकाशवाणी भवन पर समाप्त हुई। मैराथन पूरा करने वाले सभी प्रतिभागियों को पदक प्रदान किए गए। वहीं पुरुष और महिला दोनों वर्गों में शीर्ष 3 प्रतिभागियों को ट्रॉफी प्रदान की गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने इस मैराथन को रवाना किया।
1: आकाशवाणी के व्यापक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क में इसी प्रकार के मैराथन और वॉकाथॉन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है जिससे 90वीं वर्षगांठ के समारोह के दौरान व्यापक जनभागीदारी और जागरूकता सुनिश्चित हो सके। इस अवसर पर प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी ने कहा कि मैराथन के माध्यम से फिटनेस का संदेश जनता तक पहुँचाया जा रहा है।
2: इस साल 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आकाशवाणी में आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे पूरे देश में जितने भी स्टेशन हैं, जो देश में फिटनेस की एक मूवमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आरंभ हुई, उसका संदेश भी लोगों तक ले जाने के लिए ये उस कड़ी में एक कदम था।
1: आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने बताया कि आयोजन सार्वजनिक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी द्वारा देश की सेवा में किए गए योगदान को दर्शाता है।
3: ब्रॉडकास्टर होने के नाते जब इस तरह का कार्यक्रम हम करते हैं तो इसका संदेश दूर दूर तक, सुदूर प्रदेश तक पहुँचता है और ये बहुत बड़ा उदाहरण होगा।
4: देश भर में जो हमारे 232 मुख्य केंद्र हैं उन पर ये आयोजन इस महीने आयोजित होगा।
1: अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के अंतर्गत 6ठे युवा संगम का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के युवाओं में सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा देना तथा लोगों के बीच संपर्क को सशक्त बनाना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश के विभिन्न हिस्सों के युवा प्रतिभागी जीवन, विकास, संस्कृति, विरासत, शिक्षा, पर्यटन, नवाचार और श्रेष्ठ कार्य प्रणालियों के विभिन्न पहलुओं का अनुभव करने के लिए सहयोगी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा कर रहे हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ। 213 रन के लक्ष्य के जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु निर्धारित 19 ओवर में 6 विकेट पर 203 रन ही बना सका। मिशेल मार्श को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.7% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 527 अंक गिरकर 77,318 पर, जबकि निफ्टी 153 अंक की गिरावट के साथ 24,173 पर था। मौसम विभाग ने 10 से 13 मई के बीच देश के उत्तर पश्चिमी भागों के विभिन्न स्थानों पर बिजली चमकने, बादल गरजने और तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। केरला, माहे, दक्षिण आंध्रीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और कराईकाल में तेज बारिश की संभावना है। रविवार तक उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है।

0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए आज कोलकाता में बैठक। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी ग्लाइड हथियार तारा का सफल उड़ान परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की दृढ़ता, एकता और सभ्यतागत शक्ति का शाश्वत प्रतीक बताया। अमरीकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत तथा अन्य देशों से आयात पर लगाए गए 10% शुल्क को अवैध घोषित किया। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमरीका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट है कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला आज शाम दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का अमेर चैनल आप सुन रहे हैं। मीडियम वेव 470
2: ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 2:30 हुए हैं। अब से लेकर शाम 5 तक आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम, जिन्हें हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले करेंगे।

बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है जाने।

आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की ओर बढ़ रहा है। इस मौके पर आज यानी 8 मई को विविध भारती

0: एक वॉकथॉन आयोजित कर रहा है।
1: तुम भी चलो हम भी चले चलते रहे।
0: तो आज शाम 5 बजे मिलिए गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर। और चलिए हमारे साथ वॉकथॉन पर।
1: चलो चले मितवा।
0: आकाशवाणी के 90 बरस के जश्न में हिस्सा लीजिए विविध भारती के सदस्यों के साथ। वॉक कीजिए
2: चलते चलते
0: आज शाम 5 बजे गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर।
1: आजा शाम होने आई।
3: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आह फिल्म का गाना अब आपको सुनवाएंगे हम। लता मंगेशकर की आवाज, गीतकार हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन।

शैलेंद्र का लिखा और शंकर जय किशन का संगीतबद्ध किया। ये गाना लता मंगेशकर की आवाज में अब आपको सुनवाते हैं। फिल्म का नाम पतीता।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी तरसती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: सदाबहार नगमे कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं मदारी फिल्म का गाना। लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ें, फारूक कैसर के बोल, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई गांवों में
0: चलियां। आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज। सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताती
0: है। हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में अब आपको सुनवाते हैं इंदिवर का लिखा हुआ गाना, कल्याण जी आनंद जी का संगीत, फिल्म का नाम पारस।

पोस्ट बॉक्स नंबर 999 ये फिल्म का नाम है। हेमंत कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें, पीएल संतोषी का लिखा हुआ गाना और संगीत है कल्याण जी वीरजी शाह का।

0: आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की ओर बढ़ रहा है। इस मौके पर आज यानी 8 मई को विविध भारती एक वॉकथॉन आयोजित कर रहा है।
1: तुम भी चलो हम भी चले चलती रहे।
0: तो आज शाम 5 बजे मिलिए गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर। और चलिए हमारे साथ वॉकथॉन पर।
1: चलो चले मितवा
0: आकाशवाणी के 90 बरस के जश्न में हिस्सा लीजिए। विविध भारती के सदस्यों के साथ वॉक कीजिए।
2: चलते चलते
0: आज शाम 5 बजे गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर।
1: आजा शाम होने आई।
3: सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाते हैं बड़ा भाई फिल्म का गाना। आशा भोसले की आवाज, एहसान रिजवी के बोल, संगीत नाशाद का।

0: इस गीत के साथ ही आज का सदाबहार नगमे ये कार्यक्रम संपन्न होता है।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम हेलो सहेली बस कुछ ही पलों में।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों की दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: सखियों, हौसला हमारी जिंदगी को आगे बढ़ाता है। मुश्किलें बार बार राहें रोकती हैं, लेकिन उम्मीद की किरण लक्ष्य तक पहुंचा ही देती है। और हर मुश्किल हो जाती है दूर जब बातें करके मन हो जाए हल्का। और बातें करने के लिए सखियों से बेहतर और क्या है, है ना? तो बस आज अपनी सखियों से बातें करने के लिए, उनका मन हल्का करने के लिए विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हूँ मैं, आपकी दोस्त सहेली दीपा माहेश्वरी। आज आपकी सखी से होंगी बातें बहुत सारी। तो पहले कॉल की आशा लिए हम बैठे हैं और ये हुआ हमारा इंतजार खत्म। बजी फोन की घंटी और देखते हैं किस सखी का है ये पहला कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, फोन के उस तरफ। आज कौन से सखी से बात हो रही है हमारी, क्या नाम है आपका?
1: जी मेरा नाम संगीता अग्रवाल है।
0: कहाँ से बात कर रही हैं आप संगीता जी?
1: मैं गुड़गांव मुंबई से बात कर रही हूँ।
0: अच्छा, मुंबई में रहती हैं आप तो।
1: हाँ जी।
0: जीवन में इन दिनों क्या चल रहा है संगीता जी, कैसी हैं आप?
1: हाँ एकदम बढ़िया, जीवन भी अच्छा चल रहा है।
0: तो आप बढ़िया बात है। और आप घर पर ही रहती हैं, गृहिणी हैं या किसी तरह का कोई काम करती हैं, क्या करती हैं आप?
1: वैसे तो गृहिणी हूँ, लेकिन थोड़ा पार्ट टाइम में मैं अपना इंडियन हैंडीक्राफ्ट का मेरा छोटा सा बिजनेस है।
0: अरे वाह, बहुत बढ़िया। इंडियन हैंडीक्राफ्ट मतलब कि हस्तकला, कहाँ से लेती हैं? घर पर ही कुछ बनाती हैं या कहीं से मंगवाते हैं आप, किस तरह से होता है ये सब?
1: हाँ जी, मैं मतलब थोड़ा सा ट्रेडिंग जैसे आप समझ सकते हैं उसे, जयपुर से रिलेटेड है मेरे सारे हैंडीक्राफ्ट आइटम।
0: अच्छा, तो ये
1: वहीं से कर।
0: अच्छा, तो ये जो सामान होते हैं आप जयपुर से मंगाती हैं सारी चीजें, तो गिफ्ट आइटम्स होते हैं या इनको फिर किस तरह से बेचती हैं? और ये भी बताइए कि आप कैसे पसंद करती हैं, क्योंकि आप तो रहती हैं मुंबई और आपका अधिकतर जो सामान है वो आता है जयपुर से, तो किस तरह से ये जो चुनाव आप करती हैं कि क्या पसंद आएगा आपके कस्टमर को, ये सब कैसे होता है?
1: आजकल तो व्हाट्सएप का जमाना है, तो व्हाट्सएप पे सारे पिक्स आ जाते हैं हमारे होलसेलर के यहाँ से, मैन्युफैक्चरर।

0: करके यहाँ से, तो उसमें भी सेलेक्ट करते हैं, और साल में दो बार हमारा विजिट रहता है जयपुर में।
1: अच्छा,
0: तो वहाँ पे सिलेक्शन करके आते हैं ज्यादातर।
1: अच्छा, तो बहुत बढ़िया बात है। और किस तरह का लोग आपके अनुभव के अनुसार किस तरह की चीजें लोग ज्यादा पसंद करते हैं?
0: मोस्टली ना जैसे पेंटिंग्स है, टेबल के ऊपर रखने के जो आर्टिफैक्ट्स रहते हैं वो रहते हैं, और थ्रोज वगैरह वगैरह रहते हैं, तो उस तरीके के आइटम लोग बहुत पसंद करते हैं
1: जी।
0: ज्यादातर टेबल वेयर आइटम जो रहते हैं
1: वो ज्यादा पसंद किए जाते हैं। तो ये कितनी अच्छी बात है ना कि आप रहती हैं मुंबई और जो आजकल का डिजिटल जमाना है इसका पूरा इस्तेमाल कर रही हैं आप, और जयपुर से सामान मंगवा करके यहाँ मुंबई में बेचती हैं, मतलब आप सेल आउट करती हैं। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप बताइए आज आपको कौन सा गीत सुनवाए?
0: गीत तो वैसे मुझे पुराने काफी पसंद है, उसमें से एक मेरा पसंदीदा गीत है ओ मेरे दिल के चैन, जो कि फिल्म है मेरे जीवन साथी से
1: जी,
0: और मुंबई की भागदौड़ में चैन तो कम ही है, इसलिए गीत सुनकर मैं थोड़ा चैन मिल जाता है
1: जी। तो आपकी पसंद का ये गीत आपको प्रस्तुत करते हैं, और लीजिए चैन के थोड़े से लम्हे।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, आज किससे बात हो रही है हमारी?
1: जी मैं पूनम मंडोवरा जबलपुर मध्य प्रदेश से बोल रही हूँ।
0: मध्य प्रदेश जबलपुर से क्या बात है? तो पूनम जी, क्या चलता है आपके जीवन में और क्या कर रही हैं आप इस वक्त?
1: शिक्षिका हूँ केंद्रीय विद्यालय में।
0: अरे वाह, आप एक शिक्षिका हैं, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाती हैं, तो कौन से क्लास के बच्चों को पढ़ाती हैं आप?
1: कक्षा

0: टेंथ तक मैं विज्ञान की शिक्षिका,
1: विज्ञान की शिक्षिका कक्षा 6 से कक्षा 10वीं तक।
0: दसवीं
1: तो ये आप कितने सालों से पढ़ा रही हैं?
0: मुझे 14-15 वर्षों का अनुभव।
1: 14-15 वर्षों का, यानी कि बहुत सारा एक अनुभव आपके साथ इकट्ठा हो गया होगा, तो काफी सारा समय आपको पढ़ाने में निकल जाता होगा।
0: जी बिल्कुल, अभी नया सिलेबस भी आपने सुना भी होगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो हम लोग का सिलेबस की बुक्स भी हर साल लगभग बदल रही है।
1: अच्छा अच्छा, तो इसके लिए तो आपको भी तैयारी करनी होती होगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, हमें भी कई वर्कशॉप अटेंड करनी पड़ती है। कई बार हमें घर से सप्ताह भर 10 दिन के लिए बाहर रहना पड़ता है, घर में भी हमें करीब 1 या 2 घंटा पढ़ाई करनी पड़ती है।
1: जी देखिए, सब जानते हैं कि पढ़ाने के लिए खुद पढ़ना होना या शिक्षित होना बहुत ज्यादा जरूरी तो है ही, लेकिन हमेशा लगातार पढ़ते रहना पड़ता है। तो आप फिर खुद भी पढ़ती हैं और अपने बच्चों को भी पढ़ाती हैं, कैसे ये सब चीज आप मैनेज करते हैं?
0: जी सहेली, आपने बिल्कुल सही बोला, ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि हमें ना समय का प्रबंधन बड़े अच्छे से करना पड़ता है।
1: जी ये बात तो बिल्कुल सही कही,
0: अपने दोनों बच्चों पर भी ध्यान देना है, साथ ही मुझे विद्यालय के बच्चों पर भी बराबरी से ध्यान देना है, तो मुझे समय का प्रबंधन बड़े सकुशलता से करना पड़ता है।
1: जी बिल्कुल
0: सही कहूँ तो मैं कुछ टीवी वगैरह ज्यादा मोबाइल वगैरह नहीं देखती हूँ। अच्छा, आपकी विविध भारती के गाने और विविध भारती की जो मुझे न्यूज है
1: जी जी
0: वो बड़ी अच्छी लगती है, तो अपने रिक्रिएशन या अपने एंजॉयमेंट के लिए वो जरूर मैं सुनती हूँ।
1: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। और दोनों बच्चे सिर्फ पढ़ाई ही करते हैं या किसी और भी अलग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी वो सब पसंद करते हैं भाग लेना?
0: हाँ जी बिल्कुल, आपने सही बोला, मेरे दोनों बच्चे चेस के बड़े शौकीन हैं।
1: चेस खेल के शौकीन है, क्या बात है। घर में खेला जाता है या स्कूल में ही सिखा रहे हैं आप बच्चों को?
0: नहीं, स्कूल में सिखाते हैं, साथ में मैं उन्हें बाहर चेस क्लब मैंने ज्वाइन करा रखा है, और अभी रिसेंटली वो दोनों रीजनल चेस स्पोर्ट्स मीट में गए थे
1: जी,
0: और दोनों का सिलेक्शन नेशनल्स के लिए हुआ है।
1: क्या बात है, बहुत बहुत बधाई आपको। पूनम जी बताइए, इस बात पर कौन सा गीत सुनना चाहेंगी आप?
0: जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे यादों की बारात मूवी का कोई सा भी गाना सुना दीजिए।
1: तो चलिए सुनते हैं फिल्म यादों की बारात से ये गीत।

0: अंतराल हुआ खत्म और चलिए देखते हैं कि सहेली का लगा है कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी आज?
1: बड़ौदा से।
0: बड़ौदा से? बड़ौदा से कौन से की बात कर रही है? क्या नाम है आपका?
1: रमीला बेन बोल रही हूँ।
0: बड़ौदा से रमीला बेन? कैसा है बड़ौदा रमीला बेन?
1: बड़ौदा तो बहुत बड़ा है, मगर हम तो बड़ौदा में छोटा सा गाँव है सुंदरपुरा, वहाँ से बोल रही हूँ।
0: अच्छा, ये बड़ौदा से पास में है सुंदरपुरा?
1: सुंदरपुरा गाँव है
0: जी। तो इन दिनों तो बहुत गर्मी होगी वहाँ?
1: बहुत सारी गर्मी है, रहने को भी कहाँ जाए कहाँ जाए, ऐसा लगता बर्फ गिरे तो अच्छा है।
0: लेकिन आम के भी तो मजे ले रही होंगे आप?
1: हाँ हाँ, आम हमारे पास में बगीचे है बहुत सारे, आम के नए नए कितने भी सारे आम है।
0: अच्छा,
1: मेरी शादी हुई थी 1990 में, अभी 36 के उतर के 37 में हो जाएगी।
0: 36 वर्ष पूरे हो गए आपके शादी के? तो ये तो बहुत बड़ा एक साथ आपका आपके पति के साथ है, तो इतने सालों का क्या अनुभव रहा आपका, क्या कहना चाहेंगी आप हमारे सखियों को?
1: हमारे 3 बच्चे हैं।
0: 3 बच्चे? अरे वाह। तो बहुत सारे जी।
1: और प्रियंका।
0: अच्छा, तो जीवन के बहुत उतार चढ़ाव देखे होंगे आपने इतने सालों में?
1: अरे बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं।
0: आपके आने वाले जिंदगी में सुखद और खुश भरे दिन आए, ये शुभकामना करते हैं। रमीला बहन, आज आप बताइए कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मेरे पति को तो क्रांति पिक्चर का गाना बहुत अच्छा लगता है।
0: तो क्रांति फिल्म का एक गीत आपके लिए, ये हम विविध भारती की ओर से सुनिए।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है आज हमारी?
1: इस गर्मी में थोड़ी सी ठंडक का एहसास हुआ जब आपकी आवाज का दीपा जी हमारे कानों में आगाज हुआ।
0: जी आपने अपना नाम नहीं बताया, आपने हमारा नाम तो पहचान लिया।
1: हसीना भी मंसूरी बोल रही, पालदा नाका इंदौर से।
0: हसीना भी तो बताइए, क्या हाल है इंदौर के? और इंदौर का तो जो भोजन है, खाना वहाँ का बहुत मशहूर है, सराफा, 56 दुकानें।
1: जी, बहुत मशहूर है मैडम यहाँ पर, वो साफ सफाई में नंबर वन है।
0: जी हाँ, ये तो नंबर वन है हमारे देश का, साफ सफाई में इंदौर शहर। तो क्या चल रहा है इन दिनों आपके जीवन में?
1: अभी तो जॉब पे थे मैडम, तो आपको कॉल कर रहे थे। और गर्मी बहुत ज्यादा है गर्मी।
0: जी तो आप जॉब करती हैं?
1: जी, सिलाई करते हैं।
0: सिलाई का काम करती हैं, तो घर से करती हैं या कहीं जाती हैं आप?
1: दुकान पे जाना पड़ता है।
0: अच्छा, इन दिनों में आप अपना ध्यान रखिएगा, गर्मी बहुत ज्यादा है, तो सर पे कपड़ा वगैरह बांध के निकलती है ना?
1: हाँ, 9 बजे निकल जाते, इतनी ज्यादा 9 बजे इतनी गर्मी नहीं रहती है, मगर फिर भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है।
0: हाँ, ये बात तो सही है। और जब काम से आप फुर्सत पाती हैं तो आप क्या करती हैं अपने फुर्सत के?
1: मैडम रेडियो के बिना तो हम लोग एक पल नहीं रह पाते, कहीं कभी फोन इन का भी काम आता ना, सब दूर लगाते रहते।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। और देखिए, आज आपका कॉल लग भी गया, तो आज हसीना भी आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
1: इनका नाम है अपना बना लो, और गाने के बोल हैं, इस दिल का नहीं कोई, इस दिल से प्यार करना, देखो कोई प्यार न करना, मरना लेकिन प्यार न करना, ये सुना दीजिए।
0: चलिए लीजिए, पेश है आप ही की पसंद का गीत विविध भारती की ओर से।

0: हेलो सहेली।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, किस सहेली से बात हो रही है हमारी?
1: साधना प्रतापगढ़ से।
0: साधना जी प्रतापगढ़ से, कैसी है साधना जी?
1: बहुत अच्छा, अपना सही
0: है। बस हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। और कैसा चल रहा है मौसम प्रतापगढ़ में?
1: बहुत ही अच्छा मौसम है, पितृपक्ष का मौसम है।
0: अच्छा
1: जी, आज मुझे गाना सुनना।
0: हाँ बताइए, कौन सी फिल्म का गाना सुनना चाहती हैं आप?
1: मिलन फिल्म का गाना है।
0: तो चलिए सुनते हैं पिया मिलन का गोरा मुखड़ा गुलाबी चुनरिया, आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, मैं रजनी रावत बोल रही हूँ।
0: रजनी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: जी, मैं एमपी भिंड जिले से बोल रही हूँ।
0: एमपी भिंड से। रजनी जी, क्या करते हैं आप? गृहिणी हैं या कुछ किसी तरह का काम करते हैं?
1: जी, वैसे तो मैं गृहिणी ही हूँ और घर में ही काम करती हूँ जो कुछ करना है। बाकी फिल्मी गाने सुनने का बहुत शौक है पुराने गीत
0: जी,
1: और आपके प्रोग्राम सुनने का शौक है पूरे विविध भारती के।
0: क्या बात है, विविध भारती के आप कौन कौन से कार्यक्रम सुनती हैं?
1: विविध भारती का एक गीत मालिका है
0: जी,
1: सबसे अच्छा लगता है मुझे छाया गीत
0: जी। हाँ
1: जी हाँ, और वो कम से कम मैं 15-20 सालों से मतलब वो कार्यक्रम सुन रही हूँ। मैं छोटी से मतलब मैंने विविध भारती सुना है बचपन से और मेरी उम्र मतलब लगभग 43 साल होगी
0: जी।
1: मैंने कम से कम 20-25 साल हो गए विविध भारती सुनते सुनते।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है।
1: जी हाँ, और सखी सहेली सुनती यही में
0: जी।
1: सखी सहेली तो बहुत बाद में शुरू हुआ था प्रोग्राम।
0: तो आज रजनी जी कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: जी, मुझे आशा भोसले के बाद में तीसरी किस्म फिल्म का गाना है पान खाए सैया हमारे।
0: तो आशा जी को याद करते हुए सुनते हैं ये आपकी पसंद का गीत।
2: पान खाए सैया हमारो सौंधी सूरतिया होठ लाल लाल

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: हम झनकार बोल रहे हैं, मुंबई से।
0: झनकार मुंबई से, क्या बात है, आपकी तो आवाज में ही एक झनक सुनाई दे रही है झनकार जी।
1: जी बहुत धन्यवाद।
0: तो क्या करती हैं झनकार आप?
1: आजकल तो मेरी एक कथक टीचर है और श्रीमती नूतन पशुवर्धन, मैं उनको असिस्ट करती हूँ, बच्चों को कथक सिखाती हूँ उनके साथ।
0: क्या बात है, तो आप कथक सिखाती हैं, इसका मतलब है कि आपने भी पहले सीखा होगा।
1: मैं बहुत साल से उनके साथ हूँ और अभी भी सीख ही रही हूँ, क्योंकि ये ऐसी विद्या है जो चलती रहती है, हम कभी कह नहीं सकते कि हम परांगत हो गए हैं। तो अभी भी उनके साथ सीख ही रही हूँ, कुछ आया नहीं है ज्यादा, पर हाँ ये उन्होंने कहा कि थोड़ा मेरी हेल्प करो, साथ महसूस करो, तो मुझे तो बहुत गौरव महसूस हुआ, तो मैं उनके साथ बच्चों को आजकल कथक थोड़ा सिखाती हूँ।
0: बहुत सुंदर बात है,
1: शायद आपको पीछे घुंघरू सुनाई पड़े होंगे क्योंकि मैं उसी क्लास में हूँ।
0: अच्छा, आप उसी क्लास में हैं और सिखा रही हैं?
1: सीख रही हूँ इस वक्त तो,
0: सीख रही हूँ
1: अपनी।
0: अच्छा, बहुत सुंदर बात है। और जब सिखाती हैं आप, आपने जो सीखा उसी तरीके से आप सिखाती हैं या अपने आपने कोई अपना ही एक तरीका अपनाया है बच्चों को सिखाने?
1: नहीं, शास्त्रीय संगीत भी सीखती हूँ मैं और कथक में भी। एक हम गुरु जो प्रणाली होती है, शिष्य, हम उसी को फॉलो करते हैं, तो इसमें आपको अपना बिल्कुल नहीं डालना होता है
0: जी।
1: ये बहुत संभाल के दी गई विद्याएं होती हैं जो गुरु से शिष्य में जाती है, तो उसको थोड़ा सा संभालना पड़ता है और अपने को थोड़ा पीछे रखना पड़ता है।
0: ये बात
1: हम कुछ भी करते हैं, सिखाते हैं, हमको हमारे दिमाग में पता है। दीपा जी, मैं आपको बात कर रही हूँ, मैं जब बोलती हूँ ना बच्चों के साथ है, तो मेरे दिमाग में मेरी ताई की आवाज होती, गुरु की।
0: क्या बात
1: कि
0: है,
1: वो जैसे बोलती थी ताई जोर से मारो, तक लगाओ, तो वो अपने आप मेरे अंदर से मेरे गुरु ही बोल रहे होते हैं, वो ही कोशिश करती हूँ।
0: बिल्कुल सही कहा।
1: तो अपूर्णता है, थोड़ा तो है, तो गलती होती होगी, लेकिन ये हम वैसे ही चाहते हैं जैसे है, कम से कम पहले थोड़ा आ जाए तब हम शायद कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं
0: जी। बिल्कुल
1: पर
0: सही,
1: योग्य हो जाए तब कर सकते हैं, अभी मुझे नहीं लगता मैं उस योग्य हुई।
0: देखिए, गुरु शिष्य परंपरा की यही खूबसूरती है कि कभी भी जो सीखता है विद्यार्थी हमेशा अपने आप को विद्यार्थी ही समझता है और कहीं वो अहम या अहंकार की भावना पनप ही नहीं पाती।
1: इसलिए हमारे यहाँ तो शुरू में नमस्कार किया जाता है
0: जी,
1: जिस जगह हम हैं उस जगह को अपने गुरु को सबको नमस्कार करके ही हम क्लास शुरू करते हैं
0: जी। तो आप कोई छोटा सा तोड़ा टुकड़ा अगर इस वक्त आपको याद है तो बोल के बताएंगी?
1: कोशिश कर सकती हूँ
0: जी।
1: और चलिए मैं आपको एक टुकड़ा बोलती हूँ
0: जी,
1: जो तीन ताल में है और मैं बोलती हूँ, तो तीन ताल में 16 मात्रा होते हैं और मैं वो आपको टुकड़ा बोलती हूँ। तत तत थुन थुन टिक दा दिक टिक थई, तत तत थुन थुन टिक दा दिक टिक थई, टिक दा दिक टिक थई, टिक दा दिक टिक थई, ता थई तत तत थई, तत तत थई, तत तत थई। इसे सादा तोड़ा बोलते हैं और कथक में जो कई अंग होते हैं जैसे ठाट है, आमन है, तोड़े हैं, टुकड़े हैं, परन है, तो ऐसा ही ये एक सादा तोड़ा है। और ये बहुत ही शुरू में 2-1 साल बच्चे जब सीखते हैं तो फिर उनको सिखाया जाता है।
0: क्या बात,
1: और आपने एकदम से बोला तो बस मेरे को ये मैंने बोल दिया
0: जी। तो देखिए, लेकिन आप क्योंकि हमेशा सीख भी रही हैं, सिखा भी रही हैं, तो आपको वो मुंह जबानी अच्छे से याद है। तो बताइए झनकार जी, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैं वो एक स्वामी पिक्चर का है, पल भर में ये क्या हो गया, मुझे
0: जी,
1: बहुत
0: जी, जी, जी, बहुत सुंदर गीत है, तो सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: मेरा नाम सीमा है।
0: सीमा जी कहाँ से बात कर रही हैं? सीमा जी
1: मैं उज्जैन, उज्जैन के पास गांव है पान बिहार।
0: अच्छा सा नाम है, पान बिहार है ना सुनने में।
1: अच्छा सा और बड़ा भी।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या करती हैं सीमा जी आप?
1: कुछ नहीं मैडम, मैं तो खेती का काम करती हूँ।
0: खेती का काम? तो ये कोई छोटा काम नहीं है, ये तो बहुत बड़ा काम है और बहुत महत्वपूर्ण भी है ना।
1: महत्वपूर्ण भी, मतलब खेत पे ही शुरुआत खेत से ही होती है हमारी तो सुबह की।
0: तो किस तरह का काम आपका खेत पे रहता है? कोई
1: निंदाई खुदाई है, तो कोई चारा वारा डालना है
0: जी,
1: इसमें पानी देना है।
0: तो वहाँ पे पशु भी है?
1: हाँ है ना,
0: क्योंकि आपने चारे की बात की ना, तो वहाँ पे पशु भी है
1: ना। है भैंस है।
0: क्या है वहाँ पर पशुधन में? भैंस है। कितनी भैंसे हैं?
1: दो भैंसे हैं और दो गाय हैं।
0: दो गाय दो भैंसे, तो भाई इन्हें भी बहुत ध्यान से रखना होता है ना, बिल्कुल अपने परिवार अपने बच्चों की तरह।
1: बच्चों की तरह रखना पड़ता है उनको, टाइम से पानी पिलाना।
0: जी, तो इन दिनों गर्मी भी बहुत है, तो उनके भी चारा देने का
1: उनको छाया की व्यवस्था भी की है ना।
0: जी अच्छा, बहुत सुंदर बात कि उनके, आप खुद का तो ध्यान रख ही रही हैं, उनके लिए भी छाया की एक अलग से जगह बनाई है जहाँ पे वो छाव में रह सके, बैठ सके।
1: बंदे रहते हैं और उनको चारा पानी पानी वानी टाइम टाइम तो पिलाते हैं।
0: जी, तो थक कर जब शाम को घर पे आती हैं, फिर से आपको भोजन बनाना होता है?
1: वहाँ पे घर रहे, इसमें घर में अंदर बांध के खिला देते हैं।
0: अच्छा अच्छा, तो बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे सीमा जी। आप बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगी आज?
1: जी मैडम, मेरे को सुनना है माँ तो कितनी अच्छी है कितनी भोली है।
0: तो कितनी अच्छी है तो कितनी भोली है, तो चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।
2: तो कितनी अच्छी

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, इस वक्त किससे बात हो रही है हमारी?
1: मैम, मैं मनीषा कौशल इंदौर से बात कर रही हूँ।
0: मनीषा जी इंदौर से। मनीषा जी जी, क्या कर रही थी अभी आप फोन लगाने से पहले?
1: मैम, मैंने अभी ब्लाउज कटिंग कर रही हूँ, सिलाई का काम करती हूँ।
0: सिलाई का काम करती हैं।
1: खुशी इतनी हो रही मुझे कि मेरी कॉल लग गई, पहली बार कॉल लगा मेरा
0: तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना,
1: क्योंकि मेरे हस्बैंड को मैं हमेशा बोलते थे कि एक बार मैं लगा के रहूंगी, क्योंकि वो हमेशा सच्ची सहेली सुनते हैं। दिन भर उनका प्रोग्राम चलता रहता है, उनको मतलब शौक है रेडियो सुनने का, तो वो वेडिंग का काम करते हैं, तो वो मतलब चलता रहता उनका डेली का, तो वो बोलते लगा के देखना एक बार तो लग ही जाएगा तेरा।
0: कि बहुत अच्छा लगा। आप बताइए, आज आपकी पसंद का कौन सा गीत सुनना चाहती है?
1: मैम, बहुत प्यार करते हैं तुमसे, चलो वाला गाना सुनवा दीजिए।
0: तो चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली दीदी, नमस्ते।
0: नमस्ते जी, बताइए किससे बात हो रही है हमारी आज?
1: दीदी मैं बोल रही हूँ कवाई शालपुरा जिला बारा राजस्थान से, प्रेमलता तिवारी साहब। और दीदी आज मेरा 7 सालों बाद कॉल लगा, इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है।
0: 7 सालों के बाद?
1: जी दीदी,
0: बहुत बहुत बधाई आपको प्रेमलता जी, तो बहुत खुशी हो रही होगी आपको।
1: हाँ दीदी, बहुत खुशी हो रही है।
0: रेडियो तो सुनती हैं, इसके अलावा आपको क्या पसंद है?
1: दीदी मेरे को तो रेडियो सुनना पसंद है, और मतलब कहीं अपन मतलब कोई मतलब धार्मिक कार्यक्रम होते हैं ना
0: जी,
1: उसमें जाना पसंद है मुझे।
0: बहुत अच्छी बात है, तो बताइए आज आपको कौन सा गीत सुनवाए हम?
1: दीदी फिल्म का नाम है गाइड, पिया तोसे नैना लागे रे।
0: तो चलिए सुनते हैं गाइड फिल्म का पिया तोसे नैना लागे रे, आप ही की पसंद का गीत।

0: हेलो सहेली में बातों का सिलसिला आज बस इतना ही। हेलो सहेली में रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार सुबह 11 बजे से। कॉल करने के नंबर नोट कर लीजिए। नंबर है 02240024662, अंग्रेजी में 02240024662। इसके अलावा 02228670288 यानी 02228670288 022 मुंबई का एसटीडी कोड है। हेलो सहेली कार्यक्रम में आज जिन सहेलियों के कॉल लगे हैं उनसे अनुरोध है कि आप अगले 2 महीने तक कॉल न करें ताकि अन्य हमारी सहेलियों को एक अवसर प्रदान हो सके। आज की हेलो सहेली में सहयोग दिया संपादन में नम्रता टिकोड़े ने, तकनीकी रूप से सहयोगी रही हमारी इंजीनियर किरण बंग, विविध भारती की ओर से प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। तो दीजिए दीपा माहेश्वरी को इजाजत। नमस्कार।
1: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत

0: आकाशवाणी
1: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
2: तक कुछ नहीं किया, डर लग रहा था कहीं इस बार भी मैं इसे खो न दूं। पता नहीं ये कैसी पीढ़ी है, इन्हें ज्यादा प्यार दिखाओ तो ये बिदक जाते हैं, पर इसके नजरिए से सोचती हूं तो इसका बर्ताव ठीक लगता है। इतनी छोटी सी उम्र में इसने कितनी बड़ी दुनिया देखी, दुखों के न जाने कितने रंग इसकी नाजुक हथेली में लगे। ऊपर वाला भी कभी कभी किसी के साथ बड़ी नाइंसाफी करता है। अनुष्का की आंखें मुझसे मिली और फिर सड़क की ओर देखने लगी। उसकी आंखों में बहुत सारे प्रश्न तैर रहे थे। अनुष्का ने अपनी आंखें मेरी आंखों पर चिपका दी। हाँ, कहने के साथ साथ वो सारे प्रश्न मेरे कानों में गूंजने लगे जो मुझसे पूछे गए थे। इस मशीनी युग में रिश्ते से ज्यादा कागज की अहमियत है। मम्मी, मेरी ज्यादातर किताबें वहीं पड़ी हैं, मैं एक बार फिर आऊंगी ले जाने के लिए। अनुष्का की आवाज बहुत मध्यम थी। बिल्कुल बेटा, तुम जब चाहोगे आ जाना, मैं तुम्हें लेकर आऊंगी। कहते कहते मेरे गले में जैसे कुछ अटक गया था, आवाज भर्रा गई थी। मैं डर गई थी कि कहीं इसी घर में अकेले रहने का ये फैसला न कर ले। इस ख्याल से ही मेरा दिल बैठ गया। 3 बरस मैंने अनुष्का के बिना कैसे बिताया ये मेरा दिल ही जानता है। उस पल दोनों के बीच एक पुल बन गया, बीते हुए दर्द और आने वाली उम्मीद के बीच।

अनुष्का पूरे रास्ते कार की खिड़की से बाहर देखती रही। कई बार उसने टिश्यू पेपर से आंखों को दबाया, शायद भर आए पानी को सुखा रही थी। उसकी आंखें गोलाई में ऐसे घूम रही थी जैसे सड़क के किनारे दुकानों पर लिखी हर इबारत को वो पढ़ रही हो, जबकि वो तो सिर्फ अपने आप से गुफ्तगू कर रही थी। मैं उसकी ओर देखकर कुछ कहना चाहती थी, पर जैसे जबड़ा लॉक हो जाता।

डर लग रहा था कहीं उसे कोई बात बुरी न लग जाए और वो मेरे साथ चलने से इनकार कर दे। इन 3 बरस में बचपन के सुनहरे रंग से अलग किशोरावस्था का चंपई रंग इसके गालों पर निखर आया है। हालात ने इसे जल्दी से सयानी बना दिया है। पार्किंग एरिया में गाड़ी रुकी और वक्त के उस एक पल से मैं बाहर आ गई। देखो बेटा अनुष्का, ये देखो, ये तुम्हारा कमरा है। अनुष्का ने जब दहलीज पार की तो एक अजीब सी गंध ने उसे घेर लिया। घर सजा धजा, दीवारों पर वही तस्वीरें टंगी थी, रस्किन बॉन्ड, रुडयार्ड की जंगल बुक और भी उसकी पसंद की तमाम किताबें कमरे में जस की तस सजी थी। उसकी आंखों के सामने पुराने घर की टूटी अलमारी, माँ के कपड़ों से भरी संदूक और रसोई में रखी चूल्हे की आंच पर खाना पकाती माँ का चेहरा घूम गया। लाचार, बेबस, जीर्ण माँ से वो असंख्य सवाल पूछना चाहती थी, लेकिन वो कोई सवाल वो पूछ नहीं सकी और माँ विदा हो गईं। वो इस दुनिया से चली गईं। कई बार अनुष्का ने पूछना चाहा, हर बार वो अपनी बीमारी का बहाना बनाकर टाल देती। वैसे भी कैंसर जैसी भयानक बीमारी से जूझते इंसान के प्रति दया भाव ज्यादा होता है, प्रेम कम। अनुष्का कभी अपने इस कमरे को देख रही थी जो उससे कहीं छूट गया था, कभी वो उस घर को याद कर रही थी जिसे अभी अभी छोड़कर आई थी। दरवाजे पर खड़ी उसकी आंखों में समंदर सा ज्वार था, आंखों में जंगल था जो उसके मन की वीरानी को बयां कर रही थी। चौखट के उस पार वही घर था, दीवारें, खिड़कियां, आंगन, सब कुछ वैसा ही, लेकिन उसका मन मानो हजार टुकड़ों में बटा पड़ा था। उसने गहरी सांस ली। क्या मैं सचमुच लौट आई हूं? लेकिन किस रूप में? कहीं फिर यहां से कहीं और तो नहीं जाना पड़ेगा मुझे? कब मेरी किसको जरूरत पड़ जाए और मैं उसके काम आ जाऊं? आखिर उस घर में अपनी मां की जरूरत बनकर ही तुम्हें गई थी ना। मां के लिए मैं सिर्फ जरूरत थी। उसकी आंखों में स्मृतियों का सागर उमड़ आया। ये वही घर था जिसे छोड़कर अनुष्का भटकती रही, कानूनी लड़ाइयों और अनचाहे सवालों के बीच अब फिर उसी चौखट पर आ खड़ी थी। उसका मन भारी

पास पर करो किनारे खूटे से बंदी है हवा में लिख छुड़ाओ सारे आ जाओ पतंग लेके अपनी ही रंग लेके आसमां का शामे आना आज हमें ही सजाना है क्यों इस कदर हैरान तो मौसम का है मेहमान तो दुनिया सजी तेरे लिए खुद को जरा पहचान तू धूप है

0: मेहमान।
1: यहीं लौट कर माँ ने मुझे अपनाने का दावा किया था, वही माँ जब चाहा छोड़ दिया, जब चाहा अपना लिया। किसी ने मेरे भीतर की ज्वाला को जानने की कोशिश ही नहीं की कि मेरे जज्बात का फैसला हर बार कानून करेगा। मैं कहाँ रहूंगी।

0: रहूंगी, कितने दिन रहूंगी। इसका निर्णय कानून ने किया। आखिर मुझे क्यों, माँ के अधूरेपन का बोझ मुझे क्यों ढोना पड़ा? आखिर मैंने क्या गुनाह किया था, क्या बात थी आखिर? मैंने उसके कंधे को सहलाया, उसने अपनी पलकें उठाई, मेरी ओर देखा, उसकी आंखों में अपनापन पाकर मुझे राहत मिली, सुकून मिला। अनुष्का की पनीली आंखों में टूटी हुई स्मृतियों का गुबार था जिसे मैं लगातार देख रही थी। फिर अचानक मैंने उसे खूब कस के सीने से लगा लिया और उसके भीतर का झरना फूटकर देर तक बहता रहा और मेरे भीतर की ममता देर तक उसे भिगोती रही। मैं उसे बहुत देर तक सीने से लगाए बैठी रही। फिर धीरे धीरे उसने दरवाजे के भीतर कदम रखा। हर कोना मानो उसकी चुप्पी सुन रहा था। एक मेज पर रखी पुरानी चादर, दीवार पर धूल जमी तस्वीरें और बंद खिड़की से आती ठंडी हवा, सब कुछ अपना सा लगा। वो सीधी खिड़की तक गई। उसने खिड़की खोली, धूप का एक सुनहरा टुकड़ा कमरे में भर आया। उसने सूटकेस का जिप खोला, उसमें से कुछ वो तलाशने लगी। कुछ किताबें उसी घर में छूट गई हैं, सोचते हुए उसने गहरी सांस ली और फिर धीरे धीरे अपने सामान सूटकेस से बाहर निकालने लगी वो। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा और मैं रसोई में चली गई। अनुष्का के लिए फ्रैंकी और ब्रेड टोस्ट लेकर लौटी तो देखा वो अपनी पुरानी ड्राइंग बुक पलट रही थी। वाटर कलर का डब्बा और ब्रश मेज पर रखा हुआ था। कितनी जुनूनी है ये लड़की। सचमुच अजीब है। सेकंड क्लास में पढ़ती थी तभी कितनी सुंदर पेंटिंग करने लगी थी। संस्कृति मंत्रालय के कला विभाग में एक पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित हुई थी। इतनी छोटी सी उम्र में इसने फर्स्ट प्राइज ले लिया था। जिंदगी का वो सबसे खुशगवार लम्हा था जब गोद में बैठी अनुष्का ने मुस्कुराते हुए अपने नरम हाथों का घेरा मेरे गले में डाल दिया था। उसे जब पहली बार घर लेकर आए थे तो घर पहुंचकर एक छोटी सी पार्टी दी थी हमने, और बस उसकी सारी थकान, कानूनी झंझट, समाज के ताने सब गायब हो गए थे। कितना सुनहरा समय था वो, आंखों के सामने जैसे अभी ठहर गया है।
1: तू कितनी अच्छी है।

उस रोज अनुष्का ने मुझे पहली बार माँ कहा था, तब जैसे घर में फूलों की बरसात हुई हो। वो पैदाइशी ही उम्र से दो कदम आगे थी। अनुष्का की ड्राइंग बुक मैंने अपने हाथ में ले ली और पलटने लगी। एक पन्ने पर मेरी निगाह अटक गई। आंखों के सामने कागज का वो पन्ना याद आ गया जिस पर मैंने हस्ताक्षर किया था। सर्दी की सियाह रात थी, मैं और नीरव किसी शादी में जा रहे थे। हम जंगल से गुजर रहे थे।

यूं कि जंगली जानवरों के डर से हम जंगल को जल्दी ही पार कर लेना चाह रहे थे। नीरव गाड़ी बहुत फास्ट चला रहे थे। ठंडी और कुदरती हवा खाने की गरज से मैंने खिड़की का शीशा नीचे किया हुआ था। एसी बंद था। गहन निर्जन सन्नाटे में झींगुरों की तेज आवाज के बीच अचानक झाड़ियों से आती रोने की पतली सी आवाज ने गाड़ी में ब्रेक लगा दिया और हम बड़े निर्भीक हो गए थे। उस समय रात के इस बीहड़ सन्नाटे में कराह भरी महीन महीन रोने की आवाज समझने में खासी परेशानी हो रही थी कि किसी इंसानी बच्चे की कराह है या कोई जंगली जानवर का बच्चा है या कोई छोटा मेमना जो बिल्कुल नवजात शिशु जैसा है। हम सड़क से थोड़ी दूर पेड़ों के झुरमुटों के बीच पहुंच गए थे। सामने कुछ सूखी डालियां पड़ी थी जिन्हें हटाया तो कंबल और सफेद कपड़ा जैसे कुछ दिखाई दिया। हम और नजदीक गए, उस आकृति के और करीब गए और करीब गए। अरे ये तो किसी बच्चे की रोने की आवाज लग रही है। नीरव ऐसा लग रहा है कोई बच्चा है, ये कपड़े में लिपटा कोई बच्चा लग रहा है, नवजात शिशु। ओह, हमने फौरन गाड़ी से टॉर्च निकाला और उसमें नहाए पेड़ों पर हम रोशनी फेंकने लगे इधर उधर। तभी टॉर्च जब उस झाड़ी पर पड़ी जहां कंबल और सफेद कपड़ा जैसा कुछ दिखाई दिया, उस पेड़ के नीचे नजदीक गए तो देखा कपड़े में लिपटी नवजात बच्ची कांप रही थी। उसका रोना अनवरत जारी था। मेरा तो कलेजा जैसे मुंह को आ गया था। सवालों का समुद्र जैसे मेरे भीतर समाकर पूरे जंगल को पानी पानी कर देगा। हमने उस नवजात शिशु को उठाया और इधर उधर देखा। फिर मैं सोचने लगी, आखिर समाज ने ऐसा कौन सा वितान रचा है जिसके चलते ये नवजात शिशु अभिशप्त कर दी गई है। ऐसा कौन सा प्रश्न रहा होगा जिसके तहत इसकी मां ने यहां उठाकर इस प्यारी बच्ची को फेंक दिया। उस मां का कलेजा कांपा नहीं होगा। हम संभल संभल के और डरते हुए उस बच्ची के नजदीक पहुंचे। हाथों में ग्लव्स पहने नीरो ने उसे झुककर उठाया और मेरी गोद में डाल दिया। उस बच्ची का स्पर्श पाते ही मैंने अपने पेट में 9 महीने का उभार सा महसूस किया। मेरी छाती में जैसे दूध उतर आया था। मैं ममता से भर गई थी। ऐसा लगा मैं मां बन गई हूं। सुनो, इस बच्ची को ना ऊपर वाले ने हमारी गोद भरने के लिए इन झाड़ियों में भेज दिया है। किस्मत की किताब का एक नया पन्ना लिखा जाने वाला था। कहते हुए मैंने अपना सिर नीरव के कंधे पर टिका दिया था। मेरी गोद की गर्माहट पाकर वो बच्ची थोड़ी देर के लिए जैसे चुप हो गई थी। फिर थोड़ी ही देर में उसके रोने का सुर और ज्यादा ऊंचा हो गया था। उसकी धड़कनों की रफ्तार बहुत तेज थी। समझ में नहीं आ रहा था उस नन्ही जान को पानी पिलाना ठीक होगा या नहीं। कितने दिन की बच्ची है ये भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा था।

उस फूल सी नरम नाजुक बच्ची की जान बचाने के लिए हमने फौरन एम्बुलेंस को फोन किया। एम्बुलेंस के सायरन से जंगल का वीराना शोर से भर गया। कुछ ही देर में वो मासूम अस्पताल की रोशनी में थी। फाइल पर लिख गया, अननोन गर्ल, उम्र एक दिन। उसकी नाम की जगह खालीपन था, पहचान की जगह एक सवाल, मां की गोद नहीं, कागज के पन्नों में कैद जिंदगी की शुरुआत। झाड़ियों में मिली नवजात बच्ची सुबह अखबार की सुर्खी बन गई थी। चाय का प्याला हाथ में लिए मैं तो जैसे बर्फ बन गई। अब क्या होगा, उस बच्ची का कोई ना कोई उम्मीदवार जरूर आधमकेगा, फिर मेरी सुनी गोद का क्या होगा? नीरो, ऊपर वाले ने मेरी सुनी गोद भर दी थी, झाड़ी में पड़ी वो बच्ची ऊपर वाले ने मेरे लिए ही तो भेजी थी ना। नीरो, ये बच्ची तो अपने लिए जंगल में कोई छोड़ गया था। चलो चलो जल्दी चलते हैं अस्पताल, वरना कोई भी उस बच्ची को अपना उम्मीदवार बताकर उठा ले जाएगा। चलो चलो जल्दी चलते हैं। देखा है ना, यहां तो हर चीज का व्यापार होता है। वाक्य पूरा होते तक मेरी आवाज कांप गई थी, दिल कलप गया था, जैसे उस नन्ही जान से मेरा बरसों का नाता हो। क्या वो खिलौना है जो अस्पताल से कोई उठा ले जाएगा? अरे वैसे हमने अडॉप्शन के लिए आवेदन तो पहले ही कर रखा है, ये कागजी कार्रवाई होगी और वो बच्चे हमें मिल जाएगी। नीरो ने मुझे दिलासा दी थी। अस्पताल की खिड़की से अंदर झांकते ही मेरे कदम जैसे रुक गए थे। नन्ही सी देह, नींद में सिकुड़ा हुआ चेहरा, वो जैसे कोई अधूरी कविता लग रही थी। मेरा आंचल एक बार फिर ममता से भर गया। ऐसा लग रहा था एक बार फिर मेरी छाती में दूध उतर आया हो। नीरो, यही हमारी बेटी है, यही है हमारी बेटी। मेरी आवाज कांप रही थी लेकिन आंखों में अविश्वास के बादल थे। नीरो ने धीरे से मेरा हाथ थामा, पर उनके भीतर भी वही प्रश्न उमड़ा, क्या सचमुच बच्ची हमें मिलेगी? कहीं कानूनी झंझट में उलझकर इसकी उंगली हमसे छूट न जाए। सपना जैसे पास खड़ा था लेकिन छूते ही ओझल हो जाने का डर मेरे साथ था। बच्ची को घर लाना इतना आसान नहीं था। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, अदालत, कागजात, पूछताछ, हर जगह शक की नजरें थीं। तो क्या आप बाज हैं? क्यों चाहते हैं बच्चा? क्या गारंटी है कि आप उसका भविष्य बिगाड़ेंगे नहीं? आप सही तरीके से इस बच्चे को माता पिता का प्रेम दे पाएंगे, ये हम कैसे यकीन करें? ये सवाल मुझे भीतर तक छलनी कर देता था। कई रातें मैंने रोते रोते गुजारी, पर हर सुबह वही दृढ़ वाक्य दोहराती, नीरो, उस बच्ची ने कांटों सी जिंदगी पाई है, हमें उसके लिए कांटों का ये रास्ता भी पार करना होगा। आप सीधे गोद नहीं ले सकते बच्ची को, आपको सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्सेज अथॉरिटी की प्रक्रिया से गुजरना होगा। आप इंतजार कीजिए, थोड़ा सब्र रखिए, डॉक्टर ने सख्त स्वर में समझाया था। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, दस्तावेज, पूरी जांच, ये सब होने के बाद ही आपको बच्ची मिल सकती है। मेरी आंखें फाइल से हटकर बच्ची पर टिक गई थी। कागजों से बड़ी है उसकी सांसें, सोचते हुए मेरा मन थोड़ा उदास हुआ था। घर लौटते ही मैंने वो फॉर्म भरा, जिसे पूरा करने के बाद वो दुधमुंडी

ही मासूम मुझे मिल जाएगी, जिसकी अधबुंदी आंखें अपनी मां को देखने को आतुर होंगी। आधार कार्ड की कॉपी, आयकर रिटर्न, बैंक स्टेटमेंट, परीक्षा के प्रश्न पत्र की तरह न जाने कितने तरह के प्रश्न थे उसमें, जिनके उत्तर देकर मुझे और नीरो को भरने पड़े वो फॉर्म। प्रत्येक कॉलम भरते हुए मुझे लगता जैसे कोई अदृश्य दीवार खड़ी हो गई हो और मैं दीवार पार कर रही हूं। हर दस्तावेज पर कलम चलाते हुए आंखों के सामने उस प्यारी बच्ची का चेहरा आ जाता, उसकी निरीह आंखें, नन्ही नरम हथेलियां, उसकी निर्बल सांसें, उसकी अकेली पहचान। कल तक जो मेरे लिए कोई नहीं थी, आज वो मेरे दिल की धड़कन बन गई, मेरी सांस, मेरी दुनिया है वो बच्ची, मेरे जिगर का टुकड़ा बन गई थी। क्या मां बनने के लिए इतना सारा हिसाब किताब करना जरूरी है? मां बनने के लिए इन सारे हिसाब का जवाब देना जरूरी है? मैं खुद से ही सवाल कर रही थी।

कानून का इंतजार करना होगा। 60 दिन तक हम देखेंगे कि असली माँ बाप सामने आते हैं या नहीं। वकील मिस्टर सेठी ने यही तो कहा था। बाद में ये 4 से 6 महीने मेरे और नीरव के लिए सदी से भी लंबे थे। हर दिन एक ही चिंता होती, कहीं ये बच्ची किसी और को सौंप न दी जाए। कानून को हमें अपनी ममता क्यों साबित करनी पड़ रही है? कभी अस्पताल के बाहर खड़े होकर हम सोचते, अपनी उस अबोध बच्ची तक पहुंचने के लिए हमें और कितनी दीवारें पार करनी होंगी। कानूनी कागजात के साथ साथ हमारी और भी तरह से जांच हुई। एक दिन एक सोशल वर्कर घर आई। उन्होंने एक एक करके सब देखा, रसोई, कमरा और वो झूला जिसे मैंने पहले ही सजा रखा था। एक जासूस की तरह उन्होंने मेरे घर का मुआयना किया। अगर बच्ची अपनी असली माँ बाप के बारे में पूछेगी तो आप क्या बताएंगे? उनके ये सवाल मुझे बहुत परेशान कर रहे थे, बेहद चुभने वाले थे ये सवाल। हम उन्हें सच बताएंगे, लेकिन ये भी कि माँ बाप वही होते हैं जो बच्चे को अपनाते हैं, जो बच्चे का पालन पोषण करते हैं। वो माँ बाप नहीं होते हैं जो पैदा करके झाड़ी में फेंक देते हैं, नीरो ने दृढ़ स्वर में कहा था। फिर पुलिस हमारे घर आई, पड़ोसियों से सवाल जवाब किए, फिर शुरू हुआ हमारे कोर्ट के चक्कर काटना। क्या आप जानते हैं, दत्तक संतान के अधिकार असली संतान के समान ही होते हैं। तो क्या आप तैयार हैं इस सब बातों के लिए? जज ने अपनी फ्रेंच कट दाढ़ी पर

हाथ फेरते हुए सख्ती से पूछा था, जज साहब यही हमारी सबसे बड़ी चाहत है, मुझे बच्ची चाहिए, बच्ची को मां का गोद चाहिए, मेरी सुनी गोद ऊपर वाले ने भर दी है, आप ये बच्ची मुझसे मत छीनिए, लरजते स्वर में मैंने कहा था। फिर अदालत के आदेश पर अखबार में नोटिस निकाला गया, यदि किसी को इस बच्चे पर दावा करना हो तो 30 दिनों के भीतर अदालत में उपस्थित हो। महीने भर डर के साए में जीती रही मैं, कहीं कोई उस बच्ची का उम्मीदवार न प्रकट हो जाए, पर ऊपर वाले ने सुन ली, कानून की कलम हमारे हिस्से में आई। और जब कानून की कलम हमारे हिस्से में आई तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, मेरी आंखों से आंसू का झरना फूट पड़ा था। मैं खुश थी लेकिन मेरी आंखों की नदी रुकी नहीं रही थी। हमारी सारी भाग दौड़, सारी थकान, सारी बेचैनी उस क्षण पिघल कर एक आनंद की बूंद बन गई थी, जब रुई के गुलाबी फाहे सी नरम नरम वो बच्ची मेरे गोद में आई थी। नीरो भी पिता बनकर निहाल हो गया था। घर का दरवाजा खुला, सर्दियों से सूना आंगन जैसे जीवन से भर गया हो, छोटे छोटे कपड़े टंगे, दूध की खुशबू, खिलौनों की खनक, सब में एक नई रोशनी थी। घर का हर कोना जैसे नन्ही सांसों की आहट से भर गया। झूले में ऊपर की ओर टंगी चक्री गोल गोल घूमने लगी और बच्ची की आंखें भी गोलाई में गोल गोल घूमने लगी। मैं उसे देख देख कर मुस्कुराती रही, नीरो देखो ना कितनी प्यारी लग रही है, ये पहली बार हंसी है ये। मुझे अपने गाल पर नमकीन पानी का ठंडक महसूस हुआ था, मेरे होठों पर जैसे किसी ने गुलाब की पंखड़ी धर दी हो। नीरो चुपचाप खड़ा देखता रहा, उसकी आंखों में नमी और चेहरे पर सुकून था, खुशी थी। उसने बच्ची की हथेली पर अपनी उंगली रखी और उस नन्ही पकड़ में उसे अपना भविष्य, अपनी विरासत, अपना पूरा वजूद महसूस हुआ। उस मासूम की एक मुस्कान, एक किलकारी जैसे उनके जीवन का सबसे मधुर संगीत बन गई थी। अगली सुबह की पहली रोशनी खिड़की से छन कर कमरे में आई। नन्ही बच्ची ने आंखें खोली और अचानक मासूम सी हंसी बिखेर दी। उसके रोने और उसकी किलकारी से पूरा घर जैसे जगमगा उठा। उस बच्ची की आवाज ही मेरी सुबह की घंटी है, मेरी पूजा की आरती है। मैंने जैसे ही अपनी उंगली उसकी ओर बढ़ाई, नन्ही बच्ची ने कसकर पकड़ ली। उस पकड़ में बड़ी ताकत थी। शाम को आंगन में झूला डाला गया, रात को बच्ची सोती तो मैं धीरे धीरे लोरी गाती। नीरो पास बैठकर मुझे और उस बच्ची को देखता रहता।

मीरा मुन्ना वापिस घर को आएगा। चंदा मामा दूर के सोए पकाए भूर के, ओ चंदा मामा दूर के सोए पकाए भूर के, आप खाए थाली में सुनने को थे प्याली में, आप खाए थाली में सुनने को थे प्याली में।

कितना अजीब है, कल तक ये चेहरा अजनबी था, ये बच्ची मेरे लिए अजनबी थी, आज इसकी सांसें हमारी रूह में बस गई। इसकी किलकारियों ने घर की हर दीवार पर नई धड़कन लिख दी थी। रात को जब बच्ची रोती, मैं नींद से उठकर दूध की बोतल तैयार करती, थकी होती पर उसे लगता जैसे उसकी थकान ही बच्ची की मुस्कान में घुलकर गायब हो जाती है। नीरो दफ्तर से लौटकर सीधे बच्ची की उंगली पकड़ लेता, दिन भर का तनाव उसी पल मिट जाता। रीना, हमने उसे अपनाया नहीं है, इसने हमें अपनाया है, हमारी जिंदगी को इसने अपनाया है, इसने खुशी दी है हमें, नीरो ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा था। मैंने बच्ची को सीने से लगाते हुए आंखें बंद कर ली। मेरे भीतर का अटूट मातृत्व समुद्र में तब्दील हो गया था। तब महसूस हुआ कि मां बनना कितना कठिन होता है, लेकिन मातृत्व का सुख पाना भी किसी नियामत से कम नहीं। वो बरसात की भोर थी, आंगन की मिट्टी में ताजी महक फैली हुई थी, पेड़ों की पत्तियों से टपकते मोती जैसे कण हवा में चमक रहे थे। मैंने खिड़की खोली तो भीतर तक ठंडी बयार आ गई। झूले पर बैठी नन्ही काया ताली बजा बजा कर बारिश की बूंदों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, जैसे बादलों से बातें कर रही हो। उसी क्षण

0: समय दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने एक कमजोर थकी हुई स्त्री खड़ी थी। उसके चेहरे पर पीड़ा थी। मैं इसकी जन्म देने वाली मां हूं, मेरी प्रश्नवाचक निगाहों को भांपते हुए उसने धीमे स्वर में कहा, जैसे धरती हमारे पैरों तले खिसक गई हो। इतनी मुश्किलों के बाद तो हमारी मुराद पूरी हुई, फिर यह अचानक ये मुसीबत कहां से आ गई? मेरे होठ बुदबुदाए, लेकिन स्त्री ने अनुष्का को देखकर अपने कांपते हाथ जोड़े। मैं इसे अपने पास नहीं रख सकी, हालात ने मुझे बेबस कर दिया, अब मेरे पास समय नहीं बचा है। मैं चाहती हूं कुछ समय के लिए मैं इसे अपने घर ले जाऊं। वैसे तो तुम्हारी गोद ही इसकी सच्ची दुनिया है। उसने अपने आंचल से अपनी आंखें पोंछी, फिर उसने अनुष्का की मासूम हथेली छू ली और बच्ची के शरीर में एक निशान भी बताए। बच्ची ने बिना सोचे उसकी उंगली पकड़ ली और अगले ही पल खिलखिला उठी। उसकी मुस्कुराहट की खनक ने मेरे भीतर से वीरान सन्नाटा भर दिया। अनुष्का के बगैर जीने की कल्पना मात्र से मैं सिहर गई। मैंने उसे अपनी बाहों में कसकर भर लिया। कभी कभी अजनबी चेहरा ही रूह का सबसे बड़ा टुकड़ा बन जाता है। जिंदगी ने हमें ऐसे दोराहे पर ला खड़ा किया जहां से रास्ता नहीं नजर आ रहा था। वो औरत जिसने मां बनने का दावा किया है, वो कैंसर की मरीज है, वो भी सेकेंड स्टेज में। उसने वो सारे कागजात सामने रखे हैं जिससे उसे अनुष्का को सौंप दिया जाना चाहिए, लेकिन दिमाग और दिल की लड़ाई में दिल को ही हथियार डालना पड़ता है। फिर से अदालत की सीलन भरी दीवारें, बोझिल हवा और कोनों में सिसकते सन्नाटे, जज का फैसला, जन्म देने वाली मां को कैंसर है, उसकी स्थिति गंभीर है, इसलिए बच्ची का अधिकार उसी के पास रहेगा। हालांकि इस सब प्रक्रिया में कई बरस बीत गए। अनुष्का के जन्मदात्री मां भी और ज्यादा कृशकाय हो चुकी थी। इस दौरान उससे कई मर्तबा मुलाकात हुई। उसकी तकलीफ दे हालात के बारे में जानकर अनुष्का को उन्हें उनकी बची खुची जिंदगी के लिए सौंप देना ही इंसानियत थी। उसकी आंखें बुझती लौ जैसी थी। वो मेरे जीवन की सबसे बोझिल रात थी। रात हौले हौले जा रही थी, लेकिन सुबह की कोई आमद नहीं नजर आ रही थी। उसमें भीगी पेड़ों की शाखें उदास हो गई थी। अनुष्का का घर में आने का समय पता ही न चला, लेकिन उसे कुछ समय के लिए ही सही, उसके जाने का लम्हा सदी बन गया था। अनुष्का बहुत बोलती थी, बहुत प्यारा बोलती थी, लेकिन उस रात जब उसे इस घर से उस घर यानी उसकी मां के पास ले जाया जा रहा था, तब वो जैसे बेजान गुड़िया में तब्दील हो गई थी। उसे तब तक पता चल चुका था कि जहां जा रही है वही उसकी असली मां है। मेरी तो वो दत्तक पुत्री है। मेरे भीतर तूफान कुलाचे मार रहा था, नीर और निर्विकार भाव से इस नियत को स्वीकार कर रहा था। मेरे कानों में सिर्फ अनुष्का की किलकारियों की गूंज रह गई। वो लम्हे जब पहली बार उसने मां पुकारा था, वो रातें जब बुखार में हमने जाकर उसके माथे पर ठंडी पट्टियां रखी थी, वो मासूम मुस्कान जो उनके जीवन का एकमात्र संगीत थी, सब कुछ ऐसे पल भर में स्मृतियों की तिजोरी में रख उठे थे। अनुष्का ने मासूम निगाहों से मेरी ओर देखा। हम सब ने अपनी सुविधा अनुसार अनुष्का का घर तय कर दिया, लेकिन अनुष्का के नजरिए से किसी ने नहीं सोचा। वो अपनी मां के घर जब पहुंची तो उसके रोने का सिलसिला रुका ही नहीं।
1: जब वो रुका तो उसकी सुनी आंखें मेरा आंचल तलाशती रही। मैं उससे जब मिलने जाती मेरा आंचल पकड़ लेती, मुझे आने ही नहीं देती थी। ऐसे कसकर लिपट जाती जैसे मैं ही उसके जन्म देने वाली मां हूं। वक्त ने उसे जल्दी समझदार और बड़ा बना दिया था। उसकी सूनी आंखों में सपनों की जगह इंतजार ठिठक गया था। घर में रखे खिलौनों को हाथ न लगाती, खामोशी उसकी सदा बन गई थी। उसे जैसे

किताबों के ऊंचे रैक से एक मोटी किताब गिरी और मैं जैसे यादों के ऊंचे पहाड़ से धम से नीचे आ गिरी। पर इस बार पहाड़ से नीचे आने पर अनुष्का जैसी प्यारी फूल मेरे सामने है। उसने दरवाजा पकड़ रखा था जैसे ये आखिरी सहारा हो। उसकी आंखें कह रही थीं, माँ तुमने मुझे झाड़ी से उठाया था, पर क्या सचमुच माँ की जगह भर सकोगी? अनुष्का, अनुष्का, उस दिन तुम झाड़ी में मिली थी अकेली और डरी हुई। मैंने तब तुमसे एक वादा किया था, तुम्हें मैं कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी और मैं उस वादे को हमेशा निभाती रहूंगी। कहते हुए मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया। अनुष्का के होंठ कांपे। याद आया कि उस दिन उसने पहली बार किसी अनजानी बाहों में अपने दर्द को ढक लिया था। उस औरत की छाती पर सिर रखकर रोई थी और फिर अब वही छाती फिर से उसके लिए स्तंभ थी। धीरे धीरे अनुष्का की उंगलियां चौखट से ढीली हो गईं। उस पल दोनों के बीच एक पुल बन गया, बीते हुए दर्द और आने वाली उम्मीद के बीच का पुल। घर के भीतर हल्की सी रोशनी बिखरी हुई थी। शाम की धूप खिड़की से छनकर कमरे में उतर रही थी, मानो वर्षों से बंद पड़े सन्नाटे को सहलाने आई हो। दीवारों पर समय की धूल थी, पर उस धूल में भी ममता की डोर थी। अनुष्का धीरे धीरे कमरे में चली आई।

उसकी उंगलियां दीवार से छू गईं, जहां पहले मां ने तस्वीर टांगी थी। तस्वीर अब वहां नहीं थी, सिर्फ कील बाकी थी। वो कील मानो उसकी अपनी जिंदगी का प्रतीक थी, अधूरा खाली इंतजार करता हुआ कील। उसकी आंखें भर आईं, पर ये आंसू मातृत्व की कमी के नहीं थे, बल्कि अपनी यात्रा की थकान के थे। उसने अपनी मां की तस्वीर पर माला पहनाते हुए धीमे स्वर में कहा, मां तुमने मुझे जन्म दिया और छोड़ दिया, फिर लौटकर मुझे पाया और खो दिया, लेकिन मैं अब तुम्हारी अधूरी छाया में नहीं रहना चाहती, मैं अपना जीवन खुद लिखूंगी। अनुष्का के शब्द हवा में गूंजे, मानो घर की दीवारें भी सुन रही हो। अनुष्का की पलकों पर आंसू की बूंद ठहर गई। उसने खिड़की खोली, सूरज की किरणें भीतर उमड़ आईं, कमरा अचानक उजाले से भर गया, जैसे अंधेरे की परतें टूटकर बिखर गई हों। उसने एक लंबी सांस ली और दरवाजे की तरफ पलट कर देखा। वही चौखट जो उसकी अनचाही शुरुआत की गवाह थी, अब उसी चौखट पर खड़े होकर उसने दृढ़ स्वर में कहा, मैं अब किसी की छोड़ी हुई बच्ची नहीं, मैं अब एक मां की बेटी हूं। यही घर अब मेरी पहचान बनेगा। अब मैं इस घर से कहीं और नहीं जाऊंगी। अनुष्का की आंखों में उदासी की धूसर बादल की बजाय पहली बार इंद्रधनुष चमका था, एक नई शुरुआत का। उस पल मानो वर्षों की वेदना धूप की तरह पिघल गई। बाहर आकाश में ढलता सूरज सुनहरी छटा बिखेर रहा था।

0: एक वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
1: जो हीट का प्रॉब्लम है बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आपको लैस भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए, बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से गौस से करना चाहिए, इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमिडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो, अप्रोक्सीमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली, आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है, आपका बीपी चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमिडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उसका आपको IV लगाना पड़े या ORS आपको ओरली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े, डिपेंड्स अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इससे बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।
2: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली OG कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम। ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5 बजे हैं, आइए सुनते हैं युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी।

युववाणी सुनने वाले सभी युवा साथियों को आपकी दोस्त मनीषा का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों आज है विश्व रेड क्रॉस दिवस। जी हाँ, ये प्रतिवर्ष जो है 8 मई को मनाया जाता है। यूं कहें कि ये

दिन जो है हमें मानवता और करुणा के मूल्यों को याद करने और समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी को समझने के लिए प्रेरित भी करता है। क्योंकि अगर रेड क्रॉस की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका मुख्य कार्य ही है कि प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत कार्य करना, युद्ध के दौरान घायल सैनिकों और नागरिकों की रक्षा करना, ब्लड बैंक, रक्तदान शिविर, इन सभी का आयोजन करना और तो और स्वास्थ्य, शिक्षा और आपातकालीन चिकित्सा सहायता भी उपलब्ध कराना। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रेड क्रॉस दिवस के बारे में, तो इसके संस्थापक और पहले नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हेनरी डुनेंट, इनकी जयंती के अवसर पर युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं में निस्वार्थ भाव से मानव सेवा करने वाली स्वयं सेवकों को ये दिन जो है समर्पित है। दोस्तों, इस दिन का उद्देश्य यही है कि स्वास्थ्य सुविधाओं की जो कमी है या फिर युद्ध महामारी आपदाओं के दौरान जो घायल हो जाते हैं, असहाय लोग जो होते हैं, उनकी सहायता करना, निस्वार्थ सेवा के सिद्धांतों को बढ़ावा देना। और अगर इसके इतिहास पर अगर नजर डालें तो इसकी शुरुआत दोस्तों 1863 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुई थी। पहला आधिकारिक विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई 1948 को भी मनाया गया था। दोस्तों, ये संस्था जो है इसका बहुत महत्व है क्योंकि ये बिना किसी भेदभाव यानी कि जाति, धर्म, राष्ट्रीयता के अलावा जो है यूं कहें कि मानवीय सहायता जो है वो प्रदान करती है। और हर वर्ष जो है इसमें एक थीम रखी जाती है यानी कि इसका एक विषय होता है कि किसके ऊपर जो है इसे मनाया जाता है। तो इस वर्ष यानी कि 2026 की जो थीम है वो है मानवता को जीवित रखना। जी हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के अंदर की जो मानवता है वो समाप्त होती नजर आती है, लोग देखकर भी अनदेखा कर लेते हैं। तो लोगों को जागरूक करना कि किस तरीके से जो है आप एक निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा कर सकते हैं, तो स्वयं सेवकों के निस्वार्थ भाव को सराहा भी जाता है इस थीम के जरिए। क्योंकि अब जो है समय आ गया है कि हम अपनी मानवता को फिर से जीवित करें। क्योंकि कई बार लोग जो है किसी गलत कार्य को देखते हुए भी अनदेखा करके वहां से चले जाते हैं। अगर किसी का एक्सीडेंट हो रहा है तो आप तुरंत जो है अगर उसे अस्पताल पहुंचाते हैं, उसकी मदद करते हैं, तो ये भी एक निस्वार्थ भाव का प्रेम ही है और सहायता ही है। तो इसीलिए इस दिन को जो है मनाया जाता है। और जैसा कि हमने बताया कि इसके संस्थापक हेनरी डुनेंट, जिनका जन्म 8 मई 1828 को हुआ था, उन्हीं के जो है जन्मदिवस को विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्योंकि इन्होंने जो है मानव सेवा, करुणा और स्वयं सेवा के प्रति समर्पण को इन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया, जो संकट के समय निस्वार्थ भाव से जीवन बचाने का संदेश देता है, वही तो रेड क्रॉस दिवस में मनाया जाता है। तो दोस्तों, जरूरतमंदों की मदद करना, रक्तदान को बढ़ावा देना, सेवा भाव अपनाना, ये सभी तो इस दिन को मनाने का यूं कहें कि एक उद्देश्य है। और मेन जो अगर इसमें फोकस की बात करें तो वैश्विक रेड क्रॉस जो रेड क्रिसेंट नेटवर्क की मानवीय भूमिका को मान्यता देना है। और ये दिन दोस्तों हमें शांति और निस्वार्थ सेवा के लिए प्रेरित भी करता है। तो इसीलिए रेड क्रॉस दिवस जो है वर्ल्ड रेड क्रॉस दिवस मनाते रहिए और लोगों की सेवा करती रहिए और मानवता जो आप में है उसको हमेशा जो है जीवित रखिए, कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव। चलिए दोस्तों, अब हम ले रहे हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में अकेले हम अकेले तुम फिल्म का ये गीत। दोस्तों आज है संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह। जी हाँ, 8 मई से 14 मई 2026 तक जो है ये मनाया जा रहा है और इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए जागरूकता बढ़ाना है और सुरक्षित सड़कों की वकालत करना है। दोस्तों ये अभियान मुख्य रूप से सुरक्षित पैदल चलने और साइकिल चलाने पर केंद्रित है और जैसा कि हमने बताया कि ये सप्ताह है यानी कि संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह, तो ये पूरे हफ्ते चलता है, पूरे 1 वीक चलता है और इसका उद्देश्य भी जैसे हमने बताया कि सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना है। विशेष रूप से अगर हम देखते हैं कि जो पैदल यात्री होते हैं या साइकिल चालक होते हैं उन सब की किस तरीके से जो है सुरक्षा की जाए, यानी कि आपको जेब्रा क्रॉसिंग पर चलना है या फुटपाथ पर चलना है, साइकिल जो ट्रैक बना होता है उसी के ऊपर आपको साइकिलिंग करनी है, तो ये चीज़ें जो है अगर अगर हम ध्यान रखते हैं तो दुर्घटनाओं से जो है बचा जा सकता है। और दोस्तों ये अभियान जो है सरकारों, नागरिक समाज और संगठनों को मिलकर काम करने के लिए प्रोत्साहित भी करता है। वैसे तो अगर हम देखें तो जो सड़क सुरक्षा सप्ताह है वो कई बार मनाया जाता है। जी हाँ, भारत में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह जो है वो उसका आयोजन 1 से 31 जनवरी तक किया गया था और आमतौर पर जो है 11 से 17 जनवरी तक भी इसे मनाया गया। सप्ताह के रूप में अगर हम देखें, महीने के रूप में देखें तो जनवरी माह पूरा था और राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह जो है वो 11 से 17 जनवरी 2026 तक मनाया गया। और वैसे दोस्तों ये सड़क सुरक्षा के लिए बहुत से उपाय जो हैं वो बहुत ज़रूरी है, यानी कि जितने भी सेफ्टी रूल्स जो हैं उन्हें फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। जैसे गति सीमा की अगर हम बात करें कि आपको किस स्पीड में जो है गाड़ी चलानी, तो शहरी क्षेत्रों में गति सीमा को 30 किलोमीटर प्रति घंटे तक सीमित करना और उसके अलावा सुरक्षित बुनियादी ढांचा यानी कि पैदल यात्रियों और साइकिल चालकों के लिए जो है एक सुरक्षित पथ बनाना चाहिए ताकि दुर्घटना से बचा जा सके। और इसके अलावा जो है जागरूकता बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि सड़क सुरक्षा जो है नायक बनना सीखे, जैसे संदेशों के साथ जो है जागरूकता फैलाएं, यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि इसे मनाने के पीछे मेन जो मकसद या यूँ कहें कि उद्देश्य यही है कि जितनी भी दुर्घटनाएं होती है सड़क के द्वारा, सड़क पर जो जितनी भी दुर्घटनाएं होती है बड़ी बड़ी गाड़ियों की या पैदल यात्रियों की, साइकिल चालकों की या फिर दोपहिया वाहन चला रहे हैं, चार पहिया वाहन चला रहे हैं, बड़ी बड़ी बसेस हैं, तो ये एक्सीडेंट्स ना हो, तो इसके लिए जितने भी जो रूल्स जो हैं वो फॉलो करें ताकि हर किसी की, कहते ना कि सबकी जान तो बहुत ज़्यादा कीमती होती है, तो अपनी जान की अगर हर कोई सोचने लग जाए तो हम अगर खुद से शुरुआत करते हैं तो हम दूसरे के बारे में भी सोचेंगे। तो इसीलिए आप सारे नियमों का पालन करें, सारे रूल्स का पालन करें और जहाँ तक हो सके जितने भी सड़कों की बात है वहाँ पर फुटपाथ होने बहुत ज़रूरी है, एक साइकिल ट्रैक जो है वो होना बहुत ज़रूरी है जहाँ पर आप साइकिल के द्वारा जा सकें और अपनी गाड़ी की स्पीड जो है वो धीरे रखें, स्पीड ब्रेकर जहाँ आ रहे हैं वहाँ ध्यान रखें। इसके अलावा हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, वहाँ पर हॉर्न ना बजाएं, वहाँ पर गाड़ी धीरे चलाएं। तो ये जितने भी नियम जो है, जैसे मोड़ आ रहा है अगर तो आपको इंडिकेटर देना है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो अगर आप फॉलो करना शुरू कर देंगे, ध्यान रखना शुरू कर देंगे, तो फिर जितनी भी दुर्घटनाएं होती है सड़क के ऊपर तो वो सब जो है कम हो जाएगी और धीरे धीरे पूरी तरह से बंद हो जाएगी। तो अगर सभी जो है इसके नियमों का पालन करेंगे तो हम यूँ कह सकते हैं दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। चलिए दोस्तों, हम फिर से ले रहे हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक।

0: AIR at 90.
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है बॉस। रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
2: तो चलिए दोस्तों, हम फिर से चल रहे हैं फिल्म संगीत की दुनिया में और सुन रहे हैं ये गीत।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे कायली और सोनू निगम की आवाजों में ब्लू फिल्म का ये गीत। दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में। जी हाँ, पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को 3 लाख रुपए तक का कोलेट्रल फ्री यानी कि बिना गारंटी लोन 5% की रियायती ब्याज दर पर मिल रहा है। तो ये योजना कौशल प्रशिक्षण यानी कि प्रतिदिन जो है 500 रुपये वजीफा और इसके अलावा 15,000 रुपये की टूल किट सहायता और पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र प्रदान करती है जो कि 2027-28 तक लागू रहेगी। दोस्तों ये अगर इस योजना की बात करें तो इसका उद्देश्य है कि कारीगरों को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। जी हाँ, कारीगरों को आत्मनिर्भर बनाना और 18 पारंपरिक व्यवसायों जैसे कि अगर बढ़ई है, लोहार है, सुनार है, कुम्हार है, तो इन सबको आर्थिक सहायता देना। और जैसे लोन की हमने बात की तो उसमें पहले चरण में 1 लाख और दूसरे चरण में 2 लाख तक का ऋण जो है वो सहायता के रूप में दिया जाता है। और ट्रेनिंग यानी कि 5-7 दिन की बेसिक ट्रेनिंग भी होती है और 15 दिन की एडवांस ट्रेनिंग के दौरान 500 रुपये प्रतिदिन का स्टाइपेंड भी यानी कि वजीफा भी मिलता है। और इसके अलावा टूल किट प्रोत्साहन यानी काम के लिए आधुनिक उपकरण खरीदने के लिए 15,000 रुपये तक की सहायता राशि मिलती है। और इसकी जहां तक पात्रता की बात है तो 18 वर्ष से अधिक आयु के पारंपरिक कारीगर जो परिवार आधारित कार्य कर रहे हों वो इसमें पात्र हैं। और इसके अलावा अगर हम pmvishwakarma.gov.in पर CSC के माध्यम से

सीधे ऑनलाइन जो है आवेदन भी कर सकते हैं। दोस्तों फरवरी 2026 तक जो है लगभग 2.72 करोड़ से भी ज्यादा आवेदन जो है वो प्राप्त हो चुके हैं और 30 लाख से भी लगभग अधिक रजिस्ट्रेशन सफल भी हुए हैं। और दोस्तों इसके लिए अगर हमने बात करें तो दिल्ली में 18 से 31 जनवरी 2026 में जो है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा हाट का आयोजन भी किया गया था, जिसका उद्देश्य यही था कि कारीगरों को मार्केट लिंकेज जो है वो प्रदान किया जा सके। और जैसे अगर इसमें आप आवेदन भरना चाह रहे हैं तो आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, बैंक खाता विवरण है, आय और जाति प्रमाण पत्र है, ये सब चीजें आपके लिए उसके आवश्यक दस्तावेज रहेंगी। और इसके अलावा जैसे हमने आपको बताया कि इसका जो आधिकारिक पोर्टल है उसमें जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं। और आप अगर एलिजिबल है, 18 वर्ष से अधिक हैं, और दूसरा जैसे कि हमने बताया कि आप ट्रेंड भी होने चाहिए, ट्रेंड नहीं है तो आपको ट्रेंड करेंगे, लेकिन आप पारंपरिक कारीगर जो होते हैं उनके परिवार से हो तो बेहतर रहता है, ताकि आपको हर जो काम जो सिखाया जा सके, जो आपका होना है उसे पूरी तरह से विकसित किया जा सके। अगर आप सुनार हैं, अगर आप गहनों का काम करना चाह रहे हैं तो आपको वहाँ पर ट्रेनिंग भी दी जाएगी और ट्रेनिंग के पैसे भी मिलेंगे। और तो और जैसे हमने आपको बताया कि जितने भी आधुनिक उपकरण हैं उसकी भी सहायता के लिए आपको राशि दी जाएगी। तो इसीलिए अधिक से अधिक जो है पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ उठाएं। चलिए दोस्तों अब हम फिर से ले रहे हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक।

0: में आए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
0: सहकार किसान
2: दोस्तों, अब हम बात करें अगर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, तो 7 मई 2026 यानी कि कल जो है इसकी पहली वर्षगांठ मनाई गई। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर जिसे कोई भी नहीं भुला सकता है, क्योंकि ये भारत की एक ऐसी यूं कहें कि जीत थी जो पाकिस्तान के अंदर स्थित आतंकी ढांचे पर भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा की गई एक सफल और सटीक सर्जिकल स्ट्राइक की याद दिलाता है। दोस्तों, ये कार्रवाई जो है हम सब जानते हैं पहलगाम में हुए आतंकी हमले का प्रतिशोध थी, और ऑपरेशन सिंदूर की जो पहली वर्षगांठ यूं कहें कि इसे मनाई गई कल, तो 6 और 7 मई 2025 को भारत ने पाक अधिकृत कश्मीर और पंजाब में 6 से 9 स्थानों पर आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, और पूरा एक वर्ष हो गया है यानी कि कल जो है 7 मई 2026 को इस ऐतिहासिक ऑपरेशन को एक साल पूरा हुआ, और देश ने शहीदों को नमन भी किया, भारतीय सेना के शौर्य को भी याद किया गया। और तो और इसके साथ साथ हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो है इस अवसर पर एक विशेष डॉक्यूमेंट्री भी जारी की, जिसमें अंतरिक्ष आधारित संपत्ति यानी कि इसरो और साइबर ऑपरेशंस की भूमिका को उजागर किया गया। दोस्तों, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव खई ने इसे सिर्फ शुरुआत बताया और कहा कि ये ऑपरेशन देश की रक्षा नीति की ताकत को दर्शाता है। दोस्तों, ये ऑपरेशन यूं कहें कि 1971 के बाद से पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़े सैन्य हमलों में से एक माना गया है, क्योंकि इसमें 100 से भी अधिक आतंकवादी जो है वो मारे गए थे। तो ये एक तरह से तो जैसे पहलगाम का जो हमला, आतंकवादी हमला जो हुआ हम पर, तो वो एक हम कह सकते हैं कि हमारे लिए बहुत ही दुखद दिन था। लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ और जिसमें पूरी तरह से जो है बदला लिया गया पाकिस्तान से, तो इसे हम एक सफलता के रूप में देखते हैं। और एक वर्ष पूर्ण होने पर जो है इसकी कल वर्षगांठ भी मनाई गई, और जैसा कि हमने बताया कि डॉक्यूमेंट्री जो है और वो भी इस पर बनाई गई, यानी कि ये एक बहुत बड़ी सफलता जो है भारत ने हासिल की, और इसे एक सुनहरे अक्षरों में जो है लिखा गया है। चलिए दोस्तों, अब हम चल रहे हैं फिल्म संगीत की दुनिया में और सुन रहे हैं ये गीत।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे सुनिधि चौहान की आवाज में धूम फिल्म का ये गीत। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि कितनी ज्यादा भीषण गर्मी जो है वो चल रही है। जी हाँ, और इस भीषण गर्मी में जो है लू यानी कि हीट स्ट्रोक जो है, इससे बचने के लिए हम सबको बहुत जरूरी है कि अपने शरीर को हाइड्रेटेड रखें, यानी कि खूब सारा पानी पिए और सीधे धूप के संपर्क में आने से बचें। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों, अगर आप सही खान पान ले रहे हैं और खूब पानी पी रहे हैं, अपने हाइड्रेशन का ध्यान रख रहे हैं, शरीर का मतलब आपको प्यास नहीं लग रही है, फिर भी आप थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहते हैं, तो आप जो है अपने शरीर को पूरी तरह से यूँ कहें कि डिहाइड्रेट रखते हैं, यानी कि आपके शरीर में पानी की मात्रा अच्छी रहेगी तो आपको गर्मी यानी कि लू नहीं लगेगी। और जितना भी आप दिन भर की अगर दिनचर्या की अगर हम बात करें, तो अगर आप खाना खा रहे हैं तो भोजन के बाद जो है छाछ यानी कि मट्ठा जो है वो लें। इसके अलावा अभी सीजन के जो फ्रूट्स होते हैं, तरबूज है, खरबूजा है, खीरा ककड़ी है, ये सब चीज़ें इनमें भरपूर मात्रा में जो है यूँ कहें कि पानी होता है, तो इसीलिए ये इन सब फ्रूट्स का जो है, फलों का जो है सेवन करें। अपनी जो आपकी थाली लग रही है, जो आपका भोजन हो रहा है, उसका पूरा ध्यान रखें, यानी कि तला भुना ज़्यादा ना खाएं, क्योंकि उससे आपको बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होगी, एसिडिटी और ये सब समस्याएं आएगी। और इसीलिए अपने खाने में ऐसी ऐसी चीज़ें रखें जिससे आप हेल्दी अपने आप को फिट रख सकें और पूरी तरह से अपना ध्यान रखें। जैसे कच्चा प्याज जो है, अगर उसकी बात करें, तो कच्चा प्याज जो है वो गर्मी में खाना चाहिए, क्योंकि उसको खाने से या फिर यूं जेब में रखने से लू से बचाव जो है वो हो जाता है। और कच्चे आम का पन्ना जो है यानी कि उसका जो शरबत होता है वो बहुत ज़्यादा दोस्तों फायदेमंद होता है। तो जितने भी तरल पदार्थ जो है ना, तरल पदार्थ का मतलब है कि नींबू पानी है, छाछ है, बेल का शरबत है, नारियल पानी है, और इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें, कच्चे आम का जो पना है ये सब। और इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ है ORS। जी हाँ, ORS का जो घोल है, ORS का सेवन जो है वो आप ज़रूर करें, तो उससे आपके शरीर में शरीर जो है आपका हाइड्रेट रहेगा और आपको लू नहीं लगेगी। यानी कि खूब पानी जो पी रहे हैं वो तो आप पीते ही रहिए, उसके अलावा जो है लिक्विड्स में, तरल पदार्थों में ये सब पेय

पदार्थ जो हैं वो आप लें। और जैसे फल सब्जियों की हमने बात कर दी, तो जिसमें भी पानी की अधिकता होती है वो सब फल, तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, ये सब चीजें जो है वो आप खाएं। और जब भी आप बाहर निकल रहे हैं, अगर आप, पहली बात तो बहुत ज्यादा गर्मी है तो आप बाहर ना निकले 12 बजे से शाम 4 बजे तक का समय जो है वो, उसमें बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत रहती है। तो इस समय आप बाहर ना निकले, बाहर जाने से बचें। लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको बाहर जाना है, बहुत अर्जेंट काम है, तो अपना जो सिर है उसको ढक लें, क्योंकि धूप में निकलते समय सिर पे सीधी गर्मी पड़ती है, तो वो हमें लू का एक बहुत बड़ा कारण होता है। तो इसीलिए टोपी है, छाता है, इसका उपयोग करें, या फिर गमछा जो है उसका उपयोग करें, यानी कि अपने आप सिर को जो है वो एक आप कवर कर लें। और सबसे जरूरी, आप कपड़े जो है उसका चयन सही करें, सूती होने चाहिए कपड़े, क्योंकि गर्मी के अनुसार हो, और एक हल्के रंग के, ठंडे ठंडे रंग जो होते हैं, यूं कहें कि सफेद रंग है, हल्का गुलाबी है, हल्का नीला है, मतलब हमारी आंखों को जो सुहाते हैं वैसे जो कलर्स जो होते हैं उनका उपयोग करें आप। तो अगर आप हल्के कपड़े पहन रहे हैं, ढीले ढाले सूती कपड़े पहन रहे हैं, तो जो किरणें जो हैं सूरज की, हीट वेव्स जो हैं, यूवी किरणें जो हैं, वो सीधी आपके ऊपर नहीं आएगी, उससे भी आपको बचाव मिल जाएगा अगर आपको जाना बहुत जरूरी है तो दोस्तों। और इसके अलावा धूप का जो चश्मा, यानी कि सन ग्लासेस जो हैं, वो जरूर लगाएं, ताकि आपकी आंखों में जलन ना हो, और ऐसे गर्म हवा जो है, लू है, वो ना लगे। और सनस्क्रीन का अगर आप उपयोग करते हैं तो वो और भी अच्छी बात है, उसका इस्तेमाल करें, ताकि आपकी स्किन जो है वो बर्न ना हो, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही है दोस्तों। हम सब जानते हैं कि 45 44 45 के अबो ही रह रहा है जो अभी देखें अगर तापमान। तो अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है, अपना, बुजुर्गों का, बच्चों का, ये स्पेशली बच्चे और बुजुर्ग जो हैं इनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कि बच्चों को कहें कि आप गर्मी है तो इसीलिए धूप में, यानी कि 12 से 4 के समय जो है वो बाहर ना खेलें, क्योंकि बच्चों को जो है बहुत जल्दी लू लग जाती है। तो इस चीज का ध्यान रखें। और बच्चों को, जैसे स्कूल्स या कॉलेजेस वाले बच्चे हैं, तो वो अगर घर आ रहे हैं तो घर आते ही सबसे पहले जो है उन्हें थोड़ा पसीना सूखने के बाद में उनको पानी पिलाएं, और जहां तक हो सके मटकी का पानी पीना चाहिए दोस्तों। और ठंडा पानी जो है वो नुकसान भी करता है, तो इसीलिए मटके का पानी खूब पिए, और फ्रिज का पानी जो है वो कम पिए, पीने से बचें, ताकि जो है उससे नुकसान भी बहुत होता है। और इसके अलावा घर जो अगर आपका है, तो घर में भी बचाव बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर घर गर्म रहेगा तो वैसे ही गर्मी चढ़ जाएगी। तो इसीलिए दिन में खिड़की, पर्दे सब बंद रखें, और शाम के समय जो है आप वो खोलें, ताकि बाहर की जो ठंडक है वो अंदर आए। और दिन में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, इसीलिए सब कुछ बंद रखें। शाम के समय आप अपनी छत पर जो है पानी का छिड़काव कर सकते हैं, पानी थोड़ा बहुत छिड़कने से उससे गर्मी कम हो जाती है, घर में ठंडक आती है। और इसके अलावा दोस्तों, हम यूं कहें कि दिन में 1-2 बार ठंडे पानी से नहा लें, यानी कि सुबह आप नहा ही रहे हैं, इसके अलावा शाम को या रात को जो है आप फिर से नहाएं ठंडे पानी से, तो इससे भी गर्मी जो है वो शरीर की कम हो जाती है। और इसके अलावा दोस्तों, अगर जैसे हमने कहा कि बहुत जरूरी है तो ही बाहर जाना है, और बाहर जा रहे हो तो एक तो सबसे पहले खाली पेट घर से बाहर नहीं जाना है, क्योंकि कई बार जो है अगर हम भूखे ही घर से बाहर निकल जाते हैं, अगर हमने कुछ खाया नहीं है तो पानी की भी इच्छा नहीं होती है। तो इसीलिए खाली पेट घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उस समय हमारी इम्यूनिटी जो है वो बहुत कम हो जाती है, तो गर्मी लगने के, यानी कि लू लगने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा शराब है, चाय, कॉफी, या फिर कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हैं, इन सबसे बचना चाहिए, क्योंकि ये शरीर में पानी की कमी को बढ़ाते हैं। जी हाँ, ये अगर हम ये सोच के पी रहे हैं कि ये भी लिक्विड है, तरल पदार्थ है, तो दोस्तों ये हमारी गलत फहमी है, क्योंकि ये पीने से हमारे शरीर में पानी की कमी होती है, पानी की पूर्ति नहीं होती है। तो इसीलिए जो है हमारे शरीर को जैसे पानी की पूर्ति जो करनी है, अगर पानी की कमी को कम करना है, तो इसके लिए हमने जैसे आपको पहले ही बता दिया कि नींबू पानी, छाछ या बेल का शरबत है, या फिर कच्चे आम का है, नारियल पानी है, ORS है, ये सब चीजें पिए। और हर थोड़ी थोड़ी देर में, जैसे हमने आपको पहले भी बता दिया है, फिर से कह रहे हैं कि अगर आपको प्यास नहीं भी लग रही है,
फिर भी आप थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहें। कई बार बच्चे जो हैं इस चीज़ का ध्यान नहीं रख पाते हैं, तो ये बात हम बड़ों से कहना चाहेंगे कि आपके घर में अगर बच्चे हैं छोटे, तो हर थोड़ी थोड़ी देर में आप खुद से ले जा कर के जो है उन्हें पानी पिलाइए, ताकि क्या है उन्हें पानी की कमी महसूस ना हो। क्योंकि बच्चे खुद से उठ करके जो है कई बार पानी नहीं पी पाते, क्योंकि प्यास नहीं लगती है तो बच्चे खुद से पानी नहीं पीते हैं। अगर आप चला करके बच्चों को पानी पिलाएंगे तो वो पी लेंगे, तो इसलिए आप जो है बुजुर्गों का बच्चों का ध्यान रखें। और इसके अलावा कई बार जो है ऐसी घटनाएं सुनने में आती है कि भाई गाड़ी बंद थी, अंदर बच्चा बैठा था और उसका दम घुट गया, गर्मी बहुत ज्यादा थी, वो बीमार हो गया, अंदर एक जानवर था। यानी कि कई लोग जो है शौक होता है इनको जानवर पालने का, कुत्ते बिल्ली, तो वो भी कहीं बाहर जाते हैं तो उन्हें साथ ले जाते हैं, खुद शॉपिंग पर चले जाते हैं और उन्हें गाड़ी के अंदर बंद कर देते हैं। तो इसीलिए दोस्तों बंद खड़ी गाड़ियों में बच्चों को या पालतू जानवरों को बिल्कुल भी न छोड़ें, तो उससे भी जो है उनकी तबीयत खराब हो सकती है। इसके अलावा जैसे अगर बाई चांस ऐसा कहीं कुछ हो जाता है कि लू लग जाती है किसी को, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी जैसे प्राथमिक उपचार की अगर हम बात करें फर्स्ट एड की, कि हम शुरू में क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो व्यक्ति को जो है वो तुरंत ही छायादार और ठंडी जगह पर लेकर जाएं, और उसके बाद उसके कपड़े जो हैं उसे ढीले कर दें, अगर उनके बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहन रखे हैं। इसीलिए जैसे हमने पहले भी कहा कि आप अगर बाहर जा रहे हैं तो ढीले ढीले कपड़े पहने और हल्के रंग के पहने, और उसके बाद जो है एक गीला कपड़ा ले, उसके शरीर को पोंछें, उन्हें ठंडे पानी से नहलाएं, और उसके बाद जो है उन्हें जब अच्छा महसूस होने लग जाए, अगर वो मतलब बेहोश नहीं है होश में है, तो उन्हें नींबू पानी दें तुरंत, और ORS का जैसे हमने जिक्र किया वो दें, पानी पिलाएं, इलेक्ट्रोल्स दें, तो ये सब चीज़ें दें। और अगर वो मूर्छित है, बेहोशी की हालत में है, तो दोस्तों उस समय आप तुरंत जो है डॉक्टर के पास ही उन्हें ले जाएं, ताकि उनका सही समय पर और सही उपचार जो है वो शुरू किया जा सके। तो हम सब जानते हैं कि अभी जो है हीट वेव, ही स्ट्रोक जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो इसीलिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए, अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, अपने दोस्तों का ख्याल रखिए, और सबको इस बारे में जानकारी दीजिए कि कितनी ज़्यादा गर्मी है, इसमें आप घर से बाहर ना निकलें, 12 से 4 का समय जो है अपने घर में ही बिताएं और घर को भी ठंडा रखें। जैसे हमने पहले भी बता दिया, खिड़की पर्दे सब लगा के रखने हैं, कूलर वूलर चालू रखना है, बच्चों को बाहर बिल्कुल नहीं भेजना है, बुजुर्गों का भी पूरी तरह से ख्याल रखना है, बच्चे बुजुर्ग परिवार के सभी सदस्यों को। और ऐसे में बच्चे क्या है कि बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि नहीं हमें बाहर जाना है खेलने, तो आप घर पर ही सब मिल करके जो है इंडोर गेम्स जो है कैरम, लूडो, इस तरीके के गेम्स जो है वो बच्चों के साथ खेलें, तो बच्चों का एंजॉयमेंट भी हो जाएगा। और कहते हैं कि एक जो मी टाइम, जो बच्चों का जो समय होता है वो भी उन्हें मिल जाएगा। आप बच्चों के साथ रहकर आपको खुशी मिलेगी, और बच्चों को भी अपने माता पिता के साथ, अपने दादा दादी के साथ समय बिताने को मिलेगा, अपनी बातें बताएंगे बच्चे। आप इस समय में बच्चों से बहुत सारी बातें कर सकते हैं, बहुत से गेम्स खेल सकते हैं, ताकि बच्चा बोर ना हो, और हर थोड़ी थोड़ी देर में तरह तरह की शरबत जो है वो बना बना करके जो है आप खुद भी पिए और अपने बच्चों को, अपने परिवार के सभी सदस्यों को पिलाएं, तो इससे आप गर्मी से पूरी तरह से बच सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये तो हमने आपको बता दिया कि भाई लू चल रही है और किस तरीके से आप उससे अपना बचाव कर सकते हैं। चलिए अब हम फिर से चल रहे हैं फिल्म संगीत की दुनिया में और सुन रहे हैं ये गीत। उससे पहले हम ले रहे हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे सुनिधि चौहान की आवाज में डॉन फिल्म का ये गीत। समय हो चला है आपसे विदा लेने का। अपनी दोस्त मनीषा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी। ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:01 हुए हैं। आज आइए सुनते हैं आज की सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा।

आज शाम को 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या को और रात्रि के 9 बजे समय रहेगा न्यूज़ एट 9 का, जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

रात्रि के 11 बजे आप सुन सकेंगे हिंदी में समाचारों को और 11:05 पर समय रहेगा अंग्रेजी में समाचारों का, जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से ही रिले करेंगे।

शाम के 6:30 पर हमारे श्रोता सुन सकेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचारों को। 6:40 पर समय रहेगा जिले की चिट्ठी का और 6:45 पर आप सुन सकेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचारों को। इन्हें हम जयपुर केंद्र से रिले करेंगे। शाम के 6:15 पर हमारे श्रोता सुन सकेंगे भजनों के कार्यक्रम वंदना को। शाम के 7 समय रहेगा ग्रामीण भाइयों के कार्यक्रम ग्राम जगत का। शाम के 7:30 पर आप सुन सकेंगे राजस्थानी लोक गीतों का कार्यक्रम राजस्थानी लोक संगीत। रात्रि के 9:30 पर समय रहेगा राजस्थानी लोक गीतों के कार्यक्रम लोक संगीत का ही।

शाम के 8 बजे हमारे श्रोता सुन सकेंगे फिल्मी गानों के कार्यक्रम फिल्म संगीत को। फिल्म संगीत कार्यक्रम को हमारे श्रोता एक बार फिर से सुन सकेंगे रात्रि के 9:15 पर और रात्रि के 10 बजे। शाम के 8:30 पर समय रहेगा गजलों के कार्यक्रम सुगम संगीत का। और अब से कुछ ही देर में यानी कि 6:05 पर आप सुन सकेंगे रामचरितमानस गान। ये थी आज की सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है FM बैंड 101.8 MHz पर। शाम के 6:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं रामचरितमानस गान एपिसोड नंबर 60।

वन में भटकते हुए प्रताप भानु को एक आश्रम दिखाई दिया जिसका निवासी एक ऐसा राजा था जिसे युद्ध में प्रताप भानु ने कभी परास्त किया था और वो अब मुनि के कपटी वेश में अज्ञातवास कर रहा था। उसने प्रताप भानु की खूब आव भगत की।

आपन अति असमय अनुमानी गय नगृह मन बहुत गलानी मिलन राज अभिमानी त्रिसौर मा

जानत हूँ कछु भल हो कह मुनि तात भयउ अंधियारा जो जन सत

ज सुख दुखित अराती अव अनल इव सुन गई छाती। सरल बचन लुप के सुनिकाना बयर संभ

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान। ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:16 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम वंदना, और आज हम आपको सुनवाएंगे भजन अनूप जलोटा के गाए।

भजन में भक्त ने भगवान के साथ ऐसे सुंदर सुंदर संबंध जोड़े कि ना तो भक्त भगवान से दूर रह सकते हैं, ना भगवान भक्त से दूर।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदना और हम आपको सुनवा रहे हैं अनूप जलोटा के गाए भजन। तो लीजिए सुनिए ये अगला भजन।

एक विशेषता है भजन में, भगवान राम और भगवान कृष्ण दोनों का वर्णन एक साथ प्रत्येक पंक्ति में किया गया है।

संग राज, एक जाननी संग विराज। चाहे सीता राम कहो, चाहे सीता राम कहो या बोलो राधे श्याम, चाहे कृष्ण कहो या राम।

हल्की से मध्यम बरसात होने की संभावना। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार कृषि और उससे जुड़े विभिन्न विभागों का एक क्लस्टर बनाकर काम कर रही है ताकि किसानों को तकनीक और निवेश का पूरा लाभ मिल सके। वे आज हैदराबाद में ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 के तहत आयोजित इन्वेस्टर मीट को संबोधित कर रहे

0: मुख्यमंत्री ने कहा कि ड्रोन तकनीक, फूड प्रोसेसिंग और टिकाऊ खेती के मॉडल राजस्थान की कृषि भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। श्री शर्मा ने हैदराबाद को आईटी और एग्रीटेक नवाचारों का बड़ा केंद्र बताते हुए वहां के निवेशकों और उद्यमियों को 23 से 25 मई तक जयपुर में होने वाले ग्राम में शामिल होने का निमंत्रण दिया।
1: हम एग्रीटेक स्टार्टअप को बढ़ावा दे रहे हैं, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन और किसानों को मार्केट से सीधे जोड़ने की पहल भी हम कर रहे हैं। राजस्थान में हम बीज उत्पादन, ऑर्गेनिक फार्मिंग, एग्री प्रोसेसिंग के बड़े हब विकसित करना चाहते हैं। अगर आपकी एक दो यूनिट यहाँ लग रही है तो एक राजस्थान में भी लगाएं। इसलिए आपसे मेरा आग्रह है कि आप नई तकनीकी के आधार पर, नए विचारों के आधार पर पधारो हमारे देश।
0: इससे पहले मुख्यमंत्री ने आज जयपुर में महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में भाग लिया। समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर ब्लॉक में सावित्रीबाई फुले ई लाइब्रेरी खोली जाएंगी। श्री शर्मा ने कहा कि सभी जिलों में महात्मा ज्योतिबा फुले आदर्श विद्यालय और 16 नए छात्रावास बनाए जाएंगे। साथ ही बूंदी के हिंडोली में महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले की जीवनी पर आधारित पैनोरमा और पुस्तकालय भी बनाया जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC ने उपनिरीक्षक और प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा 2021 को निरस्त कर दिया है। अब ये परीक्षा नए सिरे से आयोजित की जाएगी। आयोग के अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू ने बताया कि परीक्षा इस वर्ष सितंबर में होना संभावित है। इस परीक्षा में केवल वे ही 3,83,097 अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे जो पूर्व में आयोजित दोनों प्रश्न पत्रों की लिखित परीक्षा में बैठे थे। नए आवेदकों को इसमें मौका नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को उनके आवेदन पत्रों में सुधार के लिए 16 मई से 30 मई तक का समय दिया गया है। इस दौरान मोबाइल नंबर, ईमेल और पत्राचार का पता अपडेट किया जा सकेगा। कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्रसूताओं की मृत्यु के मामले की जांच के लिए कमेटी गठित की गई है। संभागीय आयुक्त अनिल कुमार अग्रवाल ने बताया कि इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। इस बीच अस्पताल प्रशासन ने आज 4 महिलाओं की किडनी फेल होने की पुष्टि की है जिनका डायलिसिस किया जा रहा है। वहीं आज राज्य के ड्रग कंट्रोलर अजय फाटक ने अस्पताल का दौरा कर वार्डों और ऑपरेशन थिएटर में स्टेरिलाइजेशन व्यवस्था का निरीक्षण किया। औषधि नियंत्रण विभाग की ओर से दवाओं और फ्लूइड के 23 नमूने लिए गए हैं। एहतियात के तौर पर संबंधित दवाओं के इस्तेमाल पर पूरे प्रदेश में तत्काल रोक लगा दी गई है। गौरतलब है कि इस घटना में अब तक 2 प्रसूताओं की मृत्यु हो चुकी है। उपमुख्यमंत्री और महिला तथा बाल विकास मंत्री दिया कुमारी ने कहा है कि सरकार प्रदेश में बच्चों और मातृशक्ति के बेहतर स्वास्थ्य, पोषण तथा सर्वांगीण विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। वे आज जयपुर में विभाग के अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रही थी। उन्होंने आंगनवाड़ी केंद्रों पर निर्धारित मानकों के अनुसार गुणवत्तापूर्ण और पौष्टिक आहार समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उपमुख्यमंत्री ने पोषाहार वितरण में पारदर्शिता और स्वच्छता सुनिश्चित करने पर जोर देते हुए कहा कि इससे स्वस्थ और सशक्त राजस्थान का संकल्प साकार होगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू LPG की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना नहीं करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें। सचिव ने बताया कि मार्च से अब तक 6 लाख से अधिक PNG कनेक्शन चालू किए जा चुके हैं।
2: अभी तक 6.5 लाख से अधिक PNG कनेक्शंस को गैसीफाई किया गया, ये मार्च से अब तक के आंकड़े मैं आपको बता रही हूँ। इसके अलावा 2,66,000 से अधिक नए कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है। 7 लाख से अधिक ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने अपने आप को PNG कनेक्शन के लिए रजिस्टर किया है।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR News और फेसबुक AIR News Rajasthan पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश भर में कल इस साल की

0: दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से सभी अदालतों, उपभोक्ता मंचों और राजस्व न्यायालयों में राजीनामा योग्य मामलों का निपटारा किया जाएगा। इसमें आपसी सहमति से ट्रैफिक चालान, चेक बाउंस, बैंक ऋण और पारिवारिक विवादों को सुलझाया जाएगा। सवाईमाधोपुर जिले में लोक अदालत के लिए कुल 10 बेंचों का गठन किया गया है। झुंझुनू जिले में करीब 15,000 मामलों को राजीनामा के लिए चिन्हित किया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव डॉक्टर महेंद्र के सिंह सोलंकी ने बताया कि लोक अदालत में मामलों का निस्तारण आपसी समझ और सहमति से किया जाता है।
1: पार्टीज के मध्य समझौता कराने का प्रयास किया जाता है। समझौते के आधार पर दोनों पक्षों में जब राजीनामा हो जाता है, अंतिम रूप से प्रकरण का निस्तारण हो जाता है। इसके लिए पूरे जिले में 11 बेंचों का गठन किया गया है। मेरा निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा लोक अदालत में पधारें और अपने जो समझौते वाले जो प्रकरण है उनका राजीनामा के द्वारा अधिक से अधिक निस्तारण करवाएं। समाधान नाम से एक पोर्टल है जिससे ऑनलाइन के माध्यम से भी इनका निस्तारण करवाया जा सकता है।
0: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में भाजपा विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को विधायक दल का नेता चुना गया। नई भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। 21 जून को मनाए जाने वाले 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सिलसिले में इन दिनों प्रदेश भर में काउंटडाउन योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज सवाईमाधोपुर में आयुर्वेद विभाग की ओर से दशहरा मैदान में योग शिविर लगाया गया। इसमें पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने लोगों के साथ योगाभ्यास किया और करो योग रहो निरोग का संदेश दिया। कोटपुतली बहरोड के पावटा और पाली के कोलीवाड़ा में भी स्कूली विद्यार्थियों के लिए योग शिविर आयोजित किए गए। और अब मौसम। प्रदेश में आज ज्यादातर स्थानों पर मौसम शुष्क बना हुआ है। पश्चिमी राजस्थान में तेज गर्मी और लू से जनजीवन प्रभावित है। बाड़मेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां चिलचिलाती धूप से लोगों की दिनचर्या पर असर हुआ है। अस्पतालों में लू और तापघात के मरीजों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे बाड़मेर संवाददाता।
2: जिले में चिलचिलाती धूप और लू के थपेड़ों के चलते लोग बेहाल हैं। गर्मी और लू की गंभीरता को देखते हुए तापघात और अन्य ताप जनित बीमारियों के मरीजों के इलाज के लिए विशेष बंदोबस्त किए गए हैं। जिला अस्पताल में 18 बेड आरक्षित रखने के अलावा 2 विशेष टीमों का गठन किया गया है। भामाशाहों के सहयोग से अस्पताल परिसर में प्याऊ और वाटर कूलर स्थापित किए गए हैं। जसवंत सिंह डूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर।
0: पाली में भी तेज गर्मी को देखते हुए चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को कड़ी धूप में नहीं निकलने और सूती कपड़े पहनने का परामर्श दिया है। मौसम विभाग ने जोधपुर और बीकानेर संभाग में तापमान में और बढ़ोतरी की संभावना व्यक्त की है। वहीं आज नागौर, ब्यावर, अजमेर, जयपुर तथा टोंक जिलों में धूल भरी तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बरसात होने की संभावना है। इन स्थानों पर कहीं कहीं ओले भी गिर सकते हैं। वहीं सवाईमाधोपुर और बूंदी में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बरसात का येलो अलर्ट दिया गया है। सवाईमाधोपुर जिले में टीबी मुक्त भारत 100 दिवसीय अभियान के तहत विशेष स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। आज बामनवास के भावरा और खंडार के बलवन खुर्द में शिविर लगाए गए। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर अमित कुमार गोयल ने बताया कि यह अभियान 12 मई तक जिले के विभिन्न गांवों में जारी रहेगा। इन शिविरों में टीबी से जुड़ी विभिन्न जांचें निःशुल्क की जा रही हैं। पाली के व्हीलचेयर क्रिकेट खिलाड़ी भरत पवार का चयन भारतीय टीम में हुआ है। वे श्रीलंका में 25 से 28 मई तक आयोजित होने वाली इंटरनेशनल व्हीलचेयर क्रिकेट T20 सीरीज में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। भरत पवार ने साल 2019 में इस खेल की शुरुआत की थी और वे साल 2022 में राजस्थान व्हीलचेयर क्रिकेट टीम के कप्तान भी रहे। क्रिकेट के साथ साथ उन्होंने पैरा स्विमिंग में स्वर्ण और राष्ट्रीय स्तर पर व्हीलचेयर रग्बी में रजत पदक हासिल किया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भारतीय वायुसेना ने सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया है। ये भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में

0: बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर कल ओडिशा तट पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, राज्य सरकार किसानों को नई कृषि तकनीकों और नवाचारों से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध। आरपीएससी की ओर से एसआई भर्ती परीक्षा 2021 फिर से आयोजित की जाएगी। इस साल की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत कल प्रदेश की सभी अदालतों, उपभोक्ता मंचों और राजस्व न्यायालयों में राजीनामा योग्य मामलों का निपटारा किया जाएगा। और पश्चिमी राजस्थान में गर्मी के प्रकोप से एक ओर जनजीवन प्रभावित, वहीं कुछ जिलों में आंधी के साथ हल्की से मध्यम बरसात होने की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप ऋतिका गुप्ता से उदयपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख हरीश पालीवाल ने तैयार किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पिछले दिनों उदयपुर का दौरा किया। उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें सड़क, पानी, बिजली और सरकारी योजनाओं की धरातल पर प्रगति पर चर्चा की गई। उन्होंने उदयपुर में पर्यटन को विकसित करने संबंधी दिशा निर्देश भी दिए। विशेष रूप से उदयपुर के मैरिज डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री इसके बाद प्रतापगढ़ के भंभोरी गांव के लिए रवाना हुए। इससे पहले डबोक हवाई अड्डे पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। उदयपुर में स्वास्थ्य विभाग की ओर से की गई हालिया कार्रवाई में गड़बड़ियों के कारण दो निजी आईवीएफ सेंटरों का पंजीयन निलंबित किया गया। राज्य सरकार ने प्रदेश में चलाए जा रहे आईवीएफ सेंटर्स में पारदर्शिता, वैधानिक अनुपालन और नैतिक मानकों को सुनिश्चित करने के लिए कड़ा रवैया अपनाया है। इन नियमों का उल्लंघन करने वाले दो सेंटरों का पंजीकरण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। चिकित्सा विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि इन सेंटर्स में बड़ी गड़बड़ियां पाई गई। राज्य स्तर पर जांच के लिए सरोगेसी के नोडल अधिकारी की अध्यक्षता में टीम का गठन किया गया है। साथ ही जिले में पंजीकृत सभी आईवीएफ सेंटर्स की सघन जांच के लिए अलग अलग टीमें बनाकर औचक निरीक्षण किया गया। इन्होंने 28 केंद्रों का निरीक्षण किया। प्रमुख शासन सचिव ने कहा कि एआरटीवी नियमन अधिनियम 2021 के प्रावधानों का उल्लंघन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उदयपुर के आरएनटी मेडिकल कॉलेज के अधीन चलाए जा रहे महाराणा भोपाल राजकीय चिकित्सालय के ईएनटी विभाग ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर नवनीत माथुर ने बताया कि विशेषज्ञ चिकित्सकों ने क्षेत्र में पहली बार बिना किसी बाहरी चीरे के मुंह के रास्ते से थायराइड ग्रंथि का ऑपरेशन करने में सफलता हासिल की है। ऑपरेशन में अत्याधुनिक अल्ट्रासोनिक डिवाइस का प्रयोग किया गया और एंडोस्कोपी की मदद से स्क्रीन पर देखते हुए ये ऑपरेशन हुआ। इससे मरीज को दर्द भी कम होता है और रक्तस्राव भी कम होता है। जिले में इन दिनों ग्राम रथ अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत उदयपुर ग्रामीण, मावली, वल्लभनगर, गोगुंदा और खेरवाड़ा क्षेत्र के गांवों में ये रथ पहुंचा। इस दौरान कला जत्थों की ओर से आकर्षक प्रस्तुतियों के माध्यम से सरकारी योजनाओं के बारे में बताया गया। जगह जगह ग्रामीणों ने रथ का पूजन कर स्वागत किया। गौरतलब है कि इस अभियान के तहत 13 विभागों की जानकारी घर घर पहुंचाई जा रही है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पिछले दिनों उदयपुर प्रवास पर रहे। उन्होंने बड़गांव की बाटी ग्राम पंचायत में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के नए भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा और शिक्षा विभाग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। शिक्षा मंत्री ने बेदला में भी राजकीय विद्यालयों के नवनिर्मित भवनों का लोकार्पण किया। वाटी में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने विद्यार्थियों से मेवाड़ के महापुरुषों से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से जर्जर विद्यालय भवनों को ध्वस्त कर नए विद्यालय भवन बनाने की कार्रवाई तेजी से की जा रही है। श्री दिलावर ने गांवों में नियमित साफ सफाई के भी निर्देश जारी किए। वहीं बेदला में आयोजित कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री ने शौर्य चक्र विजेता मेजर मुस्तफा और प्रकाश खटीक की माताओं का सम्मान किया। राज्य सरकार की ओर से उदयपुर, बांसवाड़ा और सिरोही में चंदन वन विकसित करने को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। वन मंत्री संजय शर्मा उदयपुर पहुंची। उन्होंने पिछोला झील के पास कालका माता वन क्षेत्र का जायजा लिया। वन मंत्री ने अधिकारियों से चंदन वन विकसित करने की योजना पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि चंदन के पेड़ आर्थिक, औषधीय और पर्यावरण की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से कल से होने वाली प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा के लिए जिले में व्यापक तैयारियां की गई हैं। ये परीक्षा जिले में 189 केंद्रों पर होगी, जिसमें करीब 59,300 से ज्यादा अभ्यर्थी हिस्सा लेंगी। ये परीक्षा 2 दिनों में अलग अलग विषयों के लिए होंगी। प्रशासन की ओर से सुचारू और पारदर्शी परीक्षा के आयोजन के लिए पूरी तैयारी की गई है। इसके साथ ही उदयपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
2: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो, राज्य सरकार किसानों ने नवी तकनीक और नवाचाराओं जोड़ वो तय किनो। राजस्थान लोक सेवा आयोग री ओर एसआई भर्ती परीक्षा 2021 उजू ली जावेला। प्रदेश में ई साल री दूजी राष्ट्रीय लोक अदालत काल लगाई जावेला। राज्य रा तुणी हलका में जबरदस्त गर्मी, दूजा हलका में कठे कठे बरसात रा आसार। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार, किसानों ने तकनीक और निवेश रो पूरो फायदो दिरावन सारू राजस्थान सरकार खेतीबाड़ी और वाऊ जुड़िया महकमा रो एक जोड़ बनार काम कर रही है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 रा सिलसिला में आज हैदराबाद में राखी जिया निवेशक सम्मेलन में आ जानकारी दीनी। वह हैदराबाद ने आईटी और एग्रीटेक नवाचारा रो मोटो केंद्र बताता था का कहो के ड्रोन तकनीक, फूड प्रोसेसिंग और टिकाऊ खेती रा मॉडल राजस्थान रा कृषि भविष्य सारु खास है। वह राज्य में चल रही ERCP और यमुना जल समझौता से रेखी मोटी परियोजनाओं रो जिक्र करता था का कहो के सरकार किसानों ने जरूरी तादाद में पानी और साधन मुहैया कराने तय किनो है। श्री शर्मा निवेशक और उद्यमियों ने 23-25 मई ताई जयपुर माई फेवन वाला खास ग्राम सम्मेलन में शामिल फेवन रो न्योतो दिनो।
3: हम एग्रीटेक स्टार्टअप को बढ़ावा दे रहे हैं, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन और किसानों को मार्केट से सीधे जोड़ने की पहल भी हम कर रहे हैं। राजस्थान में हम बीज उत्पादन, ऑर्गेनिक फार्मिंग, एग्री प्रोसेसिंग के बड़े हब विकसित करना चाहते हैं। अगर आपकी 1-2 यूनिट यहाँ लग रही है तो एक राजस्थान में भी लगाएं। इसलिए आपसे मेरा आग्रह है कि आप नई तकनीकी के आधार पर, नए विचारों के आधार पर पधारो हमारे देश।
2: इनु पहले मुख्यमंत्री महात्मा ज्योतिबा फुलेरी 200वीं जयंती रा सिलसिला में जयपुर में राखी जिया कार्यक्रम में शामिल थिया। श्री शर्मा कहो कि प्रदेश रा हर ब्लॉक में सावित्री बाई फुले ई लाइब्रेरी खोली जावेला और सगला जिला में महात्मा ज्योतिबा फुले आदर्श विद्यालय खोलिया जावेला और 16 नुआ छात्रावास बनाया जावेला। श्री शर्मा कहो कि बूंदी जिला रा हिंडौली में महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले री जिंदगी रो दर्शाव करण वालो पैनोरमा और लाइब्रेरी ही बनाया जावेला। राजस्थान लोक सेवा आयोग पुलिस उप निरीक्षक और प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा 2021 निरस्त करतीनी है। राज्य सरकार री सिफारिश पाछे निरस्त करी जी आ परीक्षा अब नुआ सिराओं पाछी ली जावेला। आयोग रा अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू आ जानकारी दीनी। वे बतायो कि सितंबर 2026 माय संभावित ई परीक्षा माय पहली लेरी जी लिखित परीक्षा रा दोनों पेपर देवन वाला 383,097 उम्मीदवार ही शामिल है सकेला। नुआ उम्मीदवार आ परीक्षा नहीं दे सकेला। उम्मीदवार ने अर्जिया माय सुधार सारू 16-30 मई ताई रो टेम दियो चियो है। इन माय मोबाइल नंबर, ईमेल और चिट्ठी पत्री रो पतो अपडेट करियो जा सकेला। बदलाव पहली वन टाइम रजिस्ट्रेशन रातेत KYC प्रक्रिया पूरी करनो जरूरी फैला। कोई बदलाव नहीं करण री सूरत माई पोर्टल माथा जार फोटो और दस्तखत काम लेवन सारू सहमति देवनो अर्जी फाइनल सबमिट करनो जरूरी फैला। कोटारा न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जापा वाली लुगाइया री मौत रा मामला री जांच सारू समिति बनाती।

0: बीची है। संभागीय आयुक्त अनिल कुमार अग्रवाल आचानकारी दीनी। इन बीच अस्पताल प्रशासन जापा वाली चार महिलाओं रे किडनी फेल भजावन री आज पुष्टि कर दीनी। आरो डायलिसिस करियो चाचियो है। कजरा ड्रग कंट्रोलर अजय फाटक अस्पताल रो दौरो कर वार्डा और ऑपरेशन थिएटर माय साफ सफाई री व्यवस्था रो जायजो लीनो। औषधि नियंत्रण विभाग री ओरू दवाइयां और फ्लूइड रा 23 नमूना लिया चिया है। इन बीच जयपुर बुलाई चिया डॉक्टरों री टीम ही मरीजों रा इलाज रा काम मथा नजर रख रही है। एहतियातन सरकार संबंधित दवाइयां काम लेवन पर पूरा राज्य माय तुरंत रोक लगाती नी है। ध्यान जोग है कई घटना माय हाल ताई जापा वाली दो लुगाइया री मौत वे की है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी कहो है कि राज्य सरकार बच्चा और मायड़ा रा बेहतर स्वास्थ्य पोषण और पूरा विकास सारू पूरा मन काम कर रही है। वे आज जयपुर माय महिला और बाल विकास विभाग रा एहलकारा सागर राखी जी मीटिंग माय बोल रही ही। दिया कुमारी पोषाहार वितरण माय साफ कोई और साफ सफाई तय करने माथे जोर देता थका कहो कि इनु स्वस्थ और मजबूत राजस्थान रो सपनो साचो भेला। देश में एक घरेलू रसोई गैस रिपूर्ति आसानियों करी जा रही है और कठिन हुई पूर्ति में कमी रा कोई समाचार नहीं है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय रे सचिव सुजाता शर्मा आज नई दिल्ली में कहो कि सरकार ग्राहकों ने गैस की कमियों बचावन और इनरा मूल में थरता राखन सारू सगला जरूरी जतन कर रही है। वे बतायो कि मार्च महीना हाल ताई 6 लाख बत्ता PNG कनेक्शन चालू कर दिया गया है।
1: अभी तक 6.5 लाख से अधिक PNG कनेक्शंस को गैसिफाई किया गया है। ये मार्च से अब तक के आंकड़े मैं आपको बता रही हूँ। इसके अलावा 2,66,000 से अधिक नए कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है। 7 लाख से अधिक ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने अपने आप को PNG कनेक्शन के लिए रजिस्टर किया है।
0: समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रदेश में आए काल इस साल री दूजी राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जावेला। इन तेत राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण री ओर सगली अदालतां उपभोक्ता मंचां और राजस्व अदालतां में गाड़ियां रा चालान चेक बाउंस वेवन बैंक लिया जिया कर्ज रा चुकारा और घरेलू झगड़ा सरीखा राजीनामाओं निपटाया जावन वाला मामला रो निपटारो करो जावेला। सवाई माधोपुर जिला में लोक अदालत सारू 10 बेंच बनाई ची है। जिला मुख्यालय माथा 4 और गंगापुर सिटी माय 2 बेंच सुनवाई करेला। इनके अलावा बौनली खंडार बामनवास और चौथ का बरवाड़ा माई 1-1 बेंच लगार मामला निपटाया जावेला। झुंझुनू जिला माय लोक अदालत निपटारा सारू ले जाया जावन वाला करीब 15,000 मामला ने पिछाण करी ची है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रा सचिव डॉक्टर महेंद्र के सिंह सोलंकी बतायो के लोक अदालत माय मामला रो निपटारो समझाइश और आपसी सहमतियों करियो चावे है।
2: पार्टीज के मध्य समझौता कराने का प्रयास किया जाता है। समझौते के आधार पर दोनों पक्षों में जब राजीनामा हो जाता है अंतिम रूप से प्रकरण का निस्तारण हो जाता है। इसके लिए पूरे जिले में 11 बेंचों का गठन किया गया है। मेरा निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा लोक अदालत में पधारें और अपने जो समझौते वाले जो प्रकरण है उनका राजीनामा के द्वारा अधिक से अधिक निस्तारण करवाएं। समाधान नाम से एक पोर्टल है जिससे ऑनलाइन के माध्यम से भी इनका निस्तारण करवाया जा सकता है।
0: भारतीय जनता पार्टी रा आला नेता सुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल रा नुआ मुख्यमंत्री बनेला। आज कोलकाता में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह री मौजूदगी में हुई भाजपा विधायक दल री मीटिंग में माना दल रा नेता चुनी चिया। श्री अधिकारी बंगाल में भाजपा री पहली सरकार रा मुखिया फैला। पश्चिम बंगाल में पहली दफा भाजपा रा राज में मंत्रिमंडल में शामिल करया जावन वाला ने काल कोलकाता रा ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ दिराई जावेला। 21 जून ने मनाया जावन वाला 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस रा सिलसिला में राज्य में आई जागरूकता कार्यक्रम रखा जा रहा है। सवाई माधोपुर में आयुर्वेद विभाग री ओर 50 दिन रो काउंटडाउन योगाभ्यास कार्यक्रम चलायो जा रो है। वचे पहली वाला सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया दशहरा मैदान माए लोगा सागे योग रो अभ्यास कीनो और करो योग रहो निरोग रो संदेश दीनो। कोटपुतली बहरोड जिला रा पावटा और पाली जिला रा कोलीवाड़ा माई स्कूली विद्यार्थियां सारू योग शिविर लगाई चिया। टीबी मुक्त भारत बनावन रा 100 दिन।

0: माथे असर पड़ियो है। माना बाड़मेर खबर नवीस बतायो कि जिला में पड़ रही जोरदार गर्मी का कारण जिंदगी माथे असर पड़ियो है और अस्पताल में लू रा मरीजा रा इलाज सारू खास व्यवस्था करी ची है।
1: जिले में चिलचिलाती धूप और लू के थपेड़ों के चलते लोग बेहाल हैं। गर्मी और लू की गंभीरता को देखते हुए तापघात और अन्य ताप जनित बीमारियों के मरीजों के इलाज के लिए विशेष बंदोबस्त किए गए हैं। जिला अस्पताल में 18 बेड आरक्षित रखने के अलावा 2 विशेष टीमों का गठन किया गया है। भामाशाहों के सहयोग से अस्पताल परिसर में प्याऊ और वाटर कूलर स्थापित किए गए हैं। जसवंत सिंह रूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर।
0: बालोतरा जिला में जसोलरी लड़कियां री सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आज मतदाता जागरूकता कार्यक्रम रखी चियो। इन तेज टाबरियां जागरूकता रैली निकाली। रैली में नारा लगार वोट देवन रा महत्व री जानकारी दी री ची। ये मौके विद्यार्थियों ने वोट देवन री प्रक्रिया और लोकतांत्रिक अधिकार माथे आधारित नानी फिल्म बताई ची। शिक्षा मंत्रालय री ओर एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल रा तेज छठो युवा संगम राख्यो चाहियो है। इनरो मकसद न्यारा न्यारा राज्यों और केंद्र राज वाला प्रदेशों रा नौजवानों में सांस्कृतिक एको बधावन सागे लोगों बीच संपर्क मजबूत बनावनो है। इन कार्यक्रम रा तहत देश भर उ चुनी जा युवा प्रतिभागी काम करण रा बेहतर तरीका रा न्यारा न्यारा पहलुआ री समझ हासिल करण सारू सहयोगी राज्यों और केंद्र राज वाला प्रदेशों रो दौरो कर रिया है। पाली रा दिव्यांग व्हीलचेयर क्रिकेट खिलाड़ी भरत पवार इंटरनेशनल व्हीलचेयर क्रिकेट T20 सीरीज सारू भारत री टीम माई चुनी चिया है। आहोर श्रीलंका माई 25-28 मई ताई राखी जावेला। भरत पवार साल 2022 माई राजस्थान व्हीलचेयर क्रिकेट टीम रा कप्तान ही रहा। आखिर माई खास समाचार एक फिर सुन ले रहो। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो राज्य सरकार किसाना ने नवी तकनीक और नवाचारों जोड़ वो तहकीनो। राजस्थान लोक सेवा आयोग री ओरू SI भर्ती परीक्षा 2021 पाछी ली जावेला। प्रदेश में ई साल री दूजी राष्ट्रीय लोक अदालत का लगाई जावेला। और राज्य रा तुनी हल्का माए जबरदस्त गर्मी दूजा हल्का माए कठे कठे बरसात रा आसार। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। मानो आगलो समाचार बुलेटिन काल सवारे 9 बजे हिंदी में प्रसारित करियो चावेला। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं गोल्डन सिटी चैनल FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7 बजे हैं, आइए सुनते हैं ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: ग्राम देखो सुना रहा सगला भाई ने सुबह रहा और
1: मनोज भाई रहा कहाँ घना रोंग रोंग
0: मनोज भाई को तबीयत भी ठीक है। टाबरी भी राजी खुशी है
1: बढ़िया है। विशु भाई देखो मौसम गर्मी रहा है तो अपने
0: जोरदार
1: ताप तो
0: गर्मी
1: रही
0: पड़
1: है।
0: रही है। तापमान भैया 45 लेकिन बिपर है बाहर जाओ दिन लागी बढ़ जाती है शरीर।
1: देखो दोपहर तड़के आप बात करो तो दोपहर 1 से लेके शाम 6 बजे तक तो देखो है, अगर जरूरी कार्य नहीं हो आप घरे ही राखो टाबरों नो बूढ़ो नो और आप देखो ज्यादा जो को कई लोग देखो अलग अलग तरह का काम होगी। कई लोगों रे जो को है मार्केटिंग रो काम आया करे तो आप देखो आजकल कई दुकानों हैं वो भी दोपहर में लोग जो को है घर जाओ रहा या आप जो काम है उन्हें सुबह और शाम के टाइम ही निपटा हुए तो ये गर्मी ना देखते हुए थोड़ा सी ज्यादा ठीक रह से।
0: ये आपने विशेष रूप धारण करके जरूर गए तो माथे में गलनो है टोपी है चश्मा लगाया जावे।

0: और भी जो पानी बराबर पिए जिससे कि अपने शरीर में की पानी की कमी नहीं हुए, और जितो सके अपन जल है या छाछ है नींबू पानी है ये उपयोग ज्यादा करो। तली भरी चीजें थोड़ी इस समय में थोड़ी कम लिया करो,
1: सही बात है।
0: और ठंडी चीजें अपो सेवन करो जब इसके ऊपर ठंडा रहे। जो अपने को बुजुर्ग है या अपने को बच्चा है नहीं, ये ना पोनो विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा।
1: देखो आप जब ठंडी चीज बात करी तो ये मौसम में जो है तरबूज है, खरबूज है, ये भी जो है तो ये तरबूज तो सबसे ज्यादा उपयुक्त है। कारण की है, एक तो ठंडो भी रहा करे और साथ साथ पानी की कमी भी जो है वो पूरी कर दिया करे। तो
0: देखो अपना
1: जो
0: आप
1: है
0: ध्यान रखना, देखो अपोलो पशुधन है वो भी बराबर ध्यान रखना है। पशुधन वास्ते की एक तो सबसे पहली बात है बाड़े की व्यवस्था होनी चाहिए, पशु छाड़ी में रहे या पचे पेड़ पौधा गोडे रहे जिससे पशु पशुओं की एक शांत और स्वच्छ वातावरण मिलता रहे, ठंडकार मिले, पानी है जो बराबर पूरे अपनी खड़ी भरा के पड़ी,
1: सही
0: और
1: बात है।
0: टीकाकरण समय समय वहाँ है। और ये मौसम में अपनी जो जर्सी गाय है नहीं गर्मी में हफे पीगी, कभी कभी वास्तव कूलर भी लगाना पड़े, हफ्ते में 2 बार स्नान करावनी, खलना भिगो के देनो जिस की पशु में जो पानी की कमी हो बराबर पूरी होती रहे।
1: बहुत देखो विदेशी गाय है उम्र की तापमान इतने सहन करने जो है शक्ति कौन है। देखो आप थार पार कर गाय है वो तो ये तापमान आसानी से झेल ले, लेकिन पानी की कमी अगर हो से तो उन्हें भी तकलीफ हो से। तो आए अपनी बात बहुत सही है कि समय समय में जो को पानी है पूरा अपना बदलाव करते तो रहना चाहिए, पानी की कमी नहीं आवे, ये चीज़ पर अपना विशेष कर ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो भाई हमें सुन से एक बढ़िया राजस्थानी लोकगीत अल्लाह जिला भाई की आवाज़ में मुमल और चर्चा जारी।

0: मनोज भाई बढ़िया जो लोकगीत सुनियो और आपको बात करें तो अपने देखो पशुधन नहीं पशु और कृषि ने एक दूसरे का पूरक है।
1: बहुत सही बात बताई आप।
0: तो
1: देखो
0: अगर आपको खेती बाड़ी कर रहे हो उस साथ में अगर अपनों पशुधन पशु बड़े धन जोड़े जिसकी जो रोकड़ा पैसा भाई
1: देखो
0: उर की सही चाकरी करो नहीं तो उस चीज को दूध है अपन खेत जिसको खाद खेत में आ जाओ।
1: देखो दुधारू पशु तो आप और देखो उम्र वास्ते आप विशेष कर ध्यान रखना भी जरूरी है। उम्र चारो है चाहे उम्र खान पान जो और भी दरियो है ये चीज में आपने एक विशेष ध्यान रखना पड़े। देखो आपने जब ध्यान पड़ जाओगे आप और पशु हमें जो है देखो गाय ब्याहन वाली हो गई ना तो वो टाइम भी खान पान ब्याहन के बाद जब गाय आप जो है दूध देना शुरू करे तो बाद भी वो खान पान में विशेष ध्यान देना पड़े। और साथ साथ देखो आप जब पशुधन की बात करो विशु भाई तो एक चीज और बहुत ज्यादा जरूरी है कि पशु और टीकाकरण समयबद्ध तरीके से। देखो जब भी आप और पशु और टीकाकरण समय हो या जानकारी आपको करना चाहिए चाहे वो एक चार्ट रूप में हो चाहे आप उन्होंने जो है मोबाइल के जरिए आजकल जो है व्हाट्सएप में या और भी कोई सोशल नेटवर्क के जरिए आप उन्हें एक दूसरे के साथ परिवार सदस्यों के साथ शेयर कर सकें कि ये तारीख में ये पशु जो है टीकाकरण का समय निश्चित किया गया
0: एक्चुअली टीकाकरण बहुत जरूरी है था देखिए जो रिड बकरी है नहीं अपनी वो रखी है छीटो बेगो छूटे नो कोई बुखार उखार भी बेगो आवे तो अगर जी सही समय मतलब टीकाकरण से तो अपना पशु भी सुरक्षित रहे। तो टीकाकरण जो खुरपा का रोग भी जैसा देखिए अवश्य कई प्रकार का रोग है उन्हें टीका लगाया करे जब देखो 30 40 आजकल गाँव में भी 50 50 60 60 हज़ार ही हुई अगर जितने वो टीकाकरण समय मतलब नहीं करा सो पच्चे पछताओं
1: सही
0: तो
1: बात
0: अपन अगर टीकाकरण सुविधा है तो टीकाकरण कराऊं प्राथमिक उपचार अपन आना चाहिए छोटो मोटो जो बीजो की एक देखो मैं तो की पशु बड़ा धन जोड़ो है अपने देखो किसान भाई है अगर वो पशु है तो उस आप डेयरी फार्म लगा सके दूध दही पनीर मक्खन पूरी खपत भी ठीक हुई और पैसों थोड़े गोटे रोकड़ो आसे तो जी में हो रही हो सके ना यार थोड़ा जोखम ले लो खेती बाड़ी में किए 6 8 महीने पैसों है काला मौसम खराब हो जाए सही भंडारण नहीं हुए की भी हो सके यार लेकिन पशुधन में नहीं तो उसकी अपने सारो लागे बराबर जिसकी अपन आदमी आत्मनिर्भर धीरे धीरे बनते जावे।
1: बहुत बहुत बढ़िया जानकारी देखो आप दी है कि पशुधन लेके आपको जो है सजग रहना जरूरी है। समय समय में तो टीकाकरण भी कराना चाहिए और साथ साथ और भी कोई अगर जो आप रूटीन चेकअप पर बात करें क्योंकि देखो पशु चिकित्सालय आप आस पास उपलब्ध हुई चिकित्सक जो है पशु चिकित्सक उससे सलाह लेके क्योंकि अगर पशुओं में भी समय समय में आप टीकाकरण नई नई बीमारियों जो आया करे तो पूरे बारे में आप पहले से जानकारी सरकार द्वारा अपन प्राप्त होती रही कि हाँ जो है ये मौसम है बीमारी ज़्यादा फैल रही है तो पूरा की लक्षण है ये आपने जानकारी होनी चाहिए पूरा की उपाय है ये बारे में आपने जानकारी होनी चाहिए। अगर आपने लक्षण

0: दिख रहा है जो आप कहने के हाल ही में जो बीमारी अगर कोई चल रही है पशुओं में और अपन कोई पशुधन उड़ा लक्षण दिख रहा है तो अपन सचेत हो गए। सबसे पहले काम एक ही करना उन दूसरे पशुओं से अलग करना, उर बाद जो है चिकित्सक सलाह पशु चिकित्सक या जो भी पशु चिकित्सालय द्वारा उचित उपचार लेके और वो पशुधन जो है वापस सुरक्षित अपन स्वस्थ रूप से अपन दूसरे पशुओं के साथ जोड़ना।
1: सही बात है। अगर जी एक पशु संक्रमित हो तो उस सफर पूरी छोंग संक्रमित हो सके। घनी बार अपन की पशु कोई कारण हो सके जो मृत्यु हो जावे नहीं तो उन्हें खड्डो खोन के बूर देना चाहिए। यह भी
0: सही
1: कौन
0: बात
1: बहुत जरूरी चीज की है। बाकी जो पशु है उन्हें चाट के या हड्डी ना चाट के या कुछ उस संक्रमित नहीं हुए। तो छोटी छोटी चीजें जगह अपन पूरी जानकारी रखनी चाहिए। आप कार्यक्रम आगे जारी रखना लेकिन पहले सुना पहले सीख लो की।

Yeah,

डबे डबे मा

后面我们拿的呀，那里托你啦，托你啦的，后面有你啦，托你啦。

में मौड़ी नाटी, अरे राघोड़ी राघोड़ी मुझे मार दी, अरे माधो ने।

ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು.

अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम ग्राम जगत। ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:30 हुए हैं। समय हुआ है कार्यक्रम राजस्थानी लोक संगीत का, और आज हम आपको सुनवाएंगे हसन खान जैसलमेरी और साथियों की आवाज़ में कुछ लोकप्रिय लोकगीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम राजस्थानी लोक संगीत। ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 8 बजे हैं, समय हुआ है कार्यक्रम फिल्म संगीत का। तो लीजिए सुनिए ये गीत। फिल्म का नाम है अनाड़ी, जिसे गाया है मुकेश और लता मंगेशकर ने।

क्या क्या नगर इनमें बसते हुए पलकों की गलियों में चेहरे बाहरों के हंसते हुए।

श्रोताओं, अभी आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में चिराग फिल्म का ये गीत। आइए आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में ये अगला गीत। फिल्म का नाम है दिल अपना और प्रीत पराई।

पसंद, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके ना हम।

नहीं होता तुम मेरे पास होते हो, कोई दूसरा नहीं होता। ओ मेरे शाह खुदा, ओ मेरी जान जनाना, तुम मेरे पास होते हो, कोई दूसरा नहीं हो।

कब ख्यालों की धूप ढलती है, हर कदम पर क्षमा सी ढलती है, मेरा साया जिधर भी जाता है तेरी तस्वीर साथ चलती।

दिल से जा तुम हो आरज़ू तुम हो, मैं किसी यार का तो क्या जानूं मेरी उल्फत की।

0: मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, मेरे महबूब तुझे।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत, ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुगम संगीत, जिस और आपको सुनवाएंगे गजलें गुलाम अली की।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, आईयूएमएल, वीसीके और वामपंथी दलों का समर्थन मिला, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा। भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझा करने में तेजी लाने पर सहमत। और चीन में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को चुना गया और श्री अधिकारी को निर्विरोध विधायक दल का नेता चुना गया।
2: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
1: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
2: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद है। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
1: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्शों पर राज्य का विकास करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: संकेत मिल गया था कि भवानीपुर में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनाव में शिकस्त देने वाले शुभेंदु अधिकारी बंगाल की अगले मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे बड़े उम्मीदवार हैं। आखिरकार वही आजकल सच साबित हुए। परिषदीय दल के नेता चुने जाने के बाद शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ लेकर लोक भवन गए। उनके साथ दिलीप घोष, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सहित दल के कई केंद्रीय और राज्य नेता मौजूद थे। वहाँ राज्यपाल आरएन रवि के पास शुभेंदु ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। संवैधानिक परंपरा के पालन करते हुए बहुमत का दावा पेश किया गया और इसके साथ ही कल ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए राज्यपाल को औपचारिक निमंत्रण भी दिया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच दिन रात एक करके वहां तैयारी के काम चल रहा है। आकाशवाणी के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य।
1: तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, आईयूएमएल, वीसीके और वामपंथी दलों का समर्थन मिल गया है। वे कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 51 वर्षीय जोसेफ विजय ने आज तीसरी बार राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर से भेंट कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। एक रिपोर्ट।
4: दो दिनों तक चली बैठकों के बाद तमिल के वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, विदुथलाई चिरुथिगल काची, वीसीके और आईयूएमएल से समर्थन पत्र प्राप्त हो गए हैं। पार्टी ने सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 विधायकों का समर्थन हासिल कर लिया है, जिससे उसे स्पष्ट बहुमत मिल गया है। अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय अब राज्य के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उनका शपथ ग्रहण समारोह जल्द ही चेन्नई में आयोजित होने की संभावना है। चेन्नई जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में निर्णय राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार मंगलवार को शपथ लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध कराया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ टॉल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है, राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। न्यायालय की पीठ ने हाल ही में मादक पदार्थों की लत के कारण एक महिला के पांचों बेटों को खोने की घटना का संज्ञान लिया। पीठ ने कहा कि मादक पदार्थों के खतरे से निपटने के लिए केंद्र सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक हो गया है। मुख्य न्यायाधीश ने राज्य और केंद्र की एजेंसियों से मादक पदार्थों के खतरे को जड़ से खत्म करने को कहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA द्वारा जांच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालयों का गठन एक महीने के भीतर किया जाना चाहिए। मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए शीर्ष न्यायालय ने निर्देश दिया कि कोई अन्य मामले विशेष न्यायालय को नहीं सौंपे जाएंगे और सुनवाई प्रतिदिन के आधार पर की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का सशक्तिकरण और सुरक्षा केवल सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज, पर्यावरण और नागरिकों की सुरक्षा से भी जुड़ी है। नई दिल्ली में तिरंगा पर्वतीय बचाव दल के 10 वर्ष होने पर एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने दल के कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया।
2: तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू के लोग वो हैं जिनकी उपस्थिति हमारी सेनाओं को संबल प्रदान करती है। आपने सैनिकों के मनोबल को बढ़ाया है। आपने हिमालयी क्षेत्र में रहने वाले समुदायों को यह एहसास कराया है कि वे अकेले नहीं हैं। TMR जैसे संस्थानों का कार्य केवल रेस्क्यू तक सीमित नहीं है। आप इनडायरेक्टली बॉर्डर स्टेबिलिटी, कम्युनिटी कॉन्फिडेंस और नेशनल रेजिलियंस को भी मजबूत कर रहे हैं।
1: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा वायुसेना ने ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल परीक्षण किया है। यह अत्याधुनिक कम लागत वाली प्रणालियों का उपयोग करने वाला पहला ग्लाइड हथियार है। एक रिपोर्ट।
3: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित DRDO की रिसर्च सेंटर इमारत ने DRDO के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि को भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में भूमि संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण की समीक्षा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि आधुनिकीकरण के प्रयासों से भूमि संबंधी सेवाओं को पारदर्शी, कुशल और परेशानी मुक्त बनाया जाएगा। इससे नागरिकों और राजस्व अधिकारियों की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने बताया है कि पिछले वर्ष अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे की अंतिम जाँच रिपोर्ट एक महीने में जारी होने की संभावना है। गुजरात में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि विमान दुर्घटना जाँच ब्यूरो पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से जांच कर रहा है।
4: एक साल पूरा होने वाला है और वो इन्वेस्टिगेशन अभी बहुत ही सक्षम से चालू है। जब भी ये इन्वेस्टिगेशन होता है और खास करके इंटरनेशनल वाला फ्लाइट था, इसको कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। जो रिपोर्ट आता है इट विल बी अप फॉर स्क्रूटनी, कोई भी देश कर सकता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन देश का कर सकता है। तो हमें बहुत ही सीरियसनेस के साथ, फेयरनेस के साथ, ट्रांसपेरेंट नेचर के साथ हमें इन्वेस्टिगेशन करना है।
1: सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू LPG की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें।
5: पिछले दो दिन में भी तो हमने लगभग 97 लाख घरों को LPG सिलेंडर पहुंचाए और इसके अगेंस्ट जो बुकिंग थी लगभग 87,66,000 थी। जो हमारी कमर्शियल सप्लाई है अभी भी वो 70% पर है, लेकिन पिछले दो दिन में 15,400 टन से अधिक कमर्शियल LPG की सेल हुई है। पिछले दो दिन में 1,11,000 से अधिक 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई।
1: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात का आधिकारिक दौरा किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत और सिंगापुर ने रणनीतिक साझेदार के रूप में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर बल दिया। आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए गठित संयुक्त कार्य समूह की पांचवी बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। संयुक्त कार्य समूह ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करते हुए उसे कतई बर्दाश्त न करने की नीति दोहराई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और ट्रिनिडाद टोबैगो के संबंध इतिहास, मानवीय संपर्क और साझा आकांक्षाओं का अनूठा संगम है। ट्रिनिडाद टोबैगो के अखबार में एक लेख में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और पिछले 5 वर्षों में ये लगभग दोगुना होकर अब $35 करोड़ तक पहुंच गया है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को आयोजित इस पर्व में शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
6: वर्षा इस आयोजन के प्रमुख आकर्षण रहेंगे। आध्यात्मिक अनुष्ठानों के पश्चात प्रधानमंत्री प्रभास पाटन के सद्भावना मैदान में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बार बार हुए विनाशकारी हमलों के बावजूद सोमनाथ मंदिर आज भी स्वाभिमान और साहस के प्रतीक के रूप में अडिग खड़ा है। गौरतलब है कि 75 वर्ष पहले 11 मई को ही भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने इस पुनर्निर्मित मंदिर का उद्घाटन किया था। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: गृह मंत्री अमित शाह रविवार को बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता नई दिल्ली में करेंगे। बैठक में बाढ़ के पूर्वानुमान और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ आपदाओं, विशेष रूप से बाढ़ और लू के चुनौतियों से निपटने की तैयारियों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं

0: विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया एक डॉलर की तुलना में 24 पैसे कमजोर होकर 94 रुपए और 48 पैसे के स्तर पर बंद हुआ।
1: चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में रिकर्व तीरंदाज सिमरनजीत कौर और कंपाउंड तीरंदाज साहिल जाधव व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। सिमरन ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की फोंग यू जू को और साहिल ने शूट ऑफ में ऑस्ट्रिया के निको विनर को हराया। भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। उधर दिल्ली में IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 18 ओवर में 5 विकेट पर 126 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, VCK, IUML और वामपंथी दलों का समर्थन मिला, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा। भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझा करने में तेजी पर सहमत। और चीन में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आपने पाकीजा फिल्म का ये गीत सुना। आइए आपको सुनाते हैं किशोर कुमार की आवाज में ये अगला गीत, प्रेम पुजारी फिल्म से।

की सरगम धड़कन की बीना सपनों की गीतांजलि तू मन की गली में महके जो हरदम।

हो पश्चिम, उत्तर हो दक्षिण, तू हर जगह मुस्कुराए। जितना ही जाऊं मैं दूर तुझसे, उतनी ही तू पास आए। आधी ने रोका, पानी ने टोका, दुनिया ने हंस कर पुकारा। तस्वीर तेरी लेकिन लिए मैं कर आया सबसे किनारा। हाँ बादल बिजली।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 9:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं राजस्थानी लोक संगीत, जिसमें हम आपको सुनवाएंगे सीमा मिश्रा और साथियों की आवाज में लोकगीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम राजस्थानी लोक संगीत। ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 10 बजे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत, और ये आपको गीत सुनाते हैं अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज़ में। फिल्म का नाम है चलते चलते।

श्रोताओं, अभी आपने सुना ये गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में। फिल्म का नाम था धड़कन। आइए आपको सुनवाते हैं उदित नारायण और लता मंगेशकर की आवाज में दिल तो पागल है फिल्म से ये अगला गीत।

ओए लम्हो जरा ठहरो मैं भी तो चलता हूँ, जरा उनसे मिलता हूँ।

ओए लम्हो जरा ठहरो जरा ठहरो, मैं भी तो चलता हूँ, जरा उनसे मिलता हूँ।

श्रोताओं, अभी आपने रूप कुमार राठौड़ की आवाज में बॉर्डर फिल्म का ये गीत सुना। आइए आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत, बंटी और बबली फिल्म से, जिसे गाया है अलीशा, चिनॉय, शंकर, एहसान और लॉय ने।

0: अभी आपने सुना बादशाह फिल्म से अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज में ये गीत, आइए आपको सुनवाते हैं कुमार सानू की आवाज में दिल जले फिल्म का ये अगला गीत।
1: कुछ भी नहीं,
2: कुछ भी नहीं,
1: कुछ भी नहीं, गरन में वो नहीं।
2: वो है कौन?
3: कप्तान साहब, उस लड़की का कोई नाम तो होगा।
1: नाम?

श्रोताओं, आइए आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत में ये अगला गीत। लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज में फिल्म का नाम है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को निर्विरोध चुना गया।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
1: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद है। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
0: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्श पर राज्य का विकास करेगी। उधर तमिलनाडु में एनडीए गठबंधन के सहयोगी एएमएम के प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर से मुलाकात की और एआईएडीएमके महासचिव एडापाडी के पलानीस्वामी को सरकार बनाने के लिए अपना आधिकारिक समर्थन पत्र सौंपा। दिनाकरन ने राज्यपाल को सौंपे पत्र में स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी मन्नारगुड़ी से नवनिर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज के समर्थन के साथ पलानीस्वामी के दावे का समर्थन करती है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि समाचार चैनलों ने यह खबर फैला दी थी कि उनकी पार्टी टीवीके का समर्थन कर रही है। उन्होंने राज्यपाल से मामले की गहन जांच करने की शिकायत की है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने उन्हें आगे की कार्रवाई का आश्वासन दिया है। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए हैं। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटों के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध करा दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरों पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। न्यायालय की पीठ ने हाल ही में मादक पदार्थों की लत के कारण एक महिला के 5 बेटों को खोने की घटना का संज्ञान लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए द्वारा जांच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालय का गठन 1 महीने के भीतर किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पेरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुगता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें। भारत की महिला फुटबॉल टीम एएफसी अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2025 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में रिकर्व तीरंदाज सिमरनजीत कौर और कंपाउंड

0: cultural and heritage traditions. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा यहीं समाप्त होती है। कल दिन के 11:55 पर हमारी अगली प्रसारण सभा में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।